नमस्कार, ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 9 तारीख, तदनुसार 30 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है। सभी श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं।

0: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की है।
2: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: गृह मंत्री ने ड्रोन, रडार, निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन आंग आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। म्यांमा के राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि कल तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एजआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। और खेलों में IPL क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: FM 107.2 MHz पर आप सुन रहे विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वंदन वार विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
1: यह है विविध भारती।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन, आचार्य चाणक्य का कथन है, सुख की इच्छा करने वाले को विद्या को त्याग देना चाहिए और विद्या अर्जन करने वाले को सुख को त्याग देना चाहिए, क्योंकि सुखार्थी को कहां से विद्या प्राप्त होगी और विद्यार्थी को कहां से सुख प्राप्त होगा। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

107.2 MHz पर आप सुन रहे विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आइए अब आपको बता दें आज कौन कौन से कार्यक्रम आज आप इस फ्रीक्वेंसी पर सुन सकते हैं। सुबह 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। 7 बजे पेश किया जाएगा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर आप सुन सकते हैं हम है राही प्यार के कार्यक्रम। 8:15 आप सुन सकते हैं सुबह 8 बजे। 8:15 का समय रहेगा कार्यक्रम त्रिवेणी का। 8:30 पर चित्रलोक कार्यक्रम पेश किया जाएगा। 9:30 का समय रहेगा कार्यक्रम आज का अखबार का। और 10 बजे आप सुन सकते हैं हिंदी समाचार। दोस्तों सुबह 10:05 पर आप सुन सकते हैं सफर सुरीला सा कार्यक्रम। 10:30 पर पेश किया जाएगा पॉप

सुबह 11 बजे आप सुन सकते हैं कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टा फेस। 12 बजे का समय रहेगा हिंदी समाचार का। 12:05 पर पेश किया जाएगा कार्यक्रम यादों की महफिल। दोपहर 1:05 पर आप सुन सकते हैं प्रादेशिक हिंदी समाचार। 1:10 पर पेश किए जाएंगे प्रादेशिक पंजाबी समाचार।

1:15 का समय रहेगा फिल्म संगीत का। 1:30 पर सुरीला सफर आप सुन सकते हैं। हिंदी समाचार। 2:30 पर सदाबहार नगमे कार्यक्रम पेश किया जाएगा। साथ ही 3:00 आप सुन सकते हैं मन चाहे गीत। 3:30 का समय रहेगा नाट्य तरंग का। और शाम 4:00 आप सुन सकते हैं पिटारा में आज बॉम्बे टॉकीज़।

शाम 5 बजे आप सुन सकते हैं हिंदी समाचार। 5:05 पर फिल्म संगीत पेश किया जाएगा। 5:20 पर आप सुन सकते हैं प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। और 5:30 का समय रहेगा सुहाना सफर आकाशवाणी के संग कार्यक्रम का।

शाम 6 बजे हिंदी समाचार पेश किए जाएंगे। 6:05 पर आप सुन सकते हैं गैर फिल्म संगीत और 6:10 पर आप सुन सकते हैं प्रादेशिक हिंदी समाचार और 6:20 पर प्रादेशिक पंजाबी समाचार पेश किए जाएंगे। शाम 7 बजे का समय रहेगा विशेष जयमाला कार्यक्रम का। 7:45 पर आप सुन सकते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार। 7:47 पर पंजाबी गीत पेश किए जाएंगे। 8 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम हवा महल का। 8:15 पर आप सुन सकते हैं चित्रलोक।

0: रात्रि 8:45 पर आप सुन सकते हैं समाचार। संध्या 9 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम आपके लिए का। 9:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम आज के फनकार और 10 बजे छाया गीत कार्यक्रम पेश किया जाएगा। 10:30 पर आप सुन सकते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार और सुर सांझ कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात्रि 10:32 पर। तो श्रोताओं, ये तो हैं वो तमाम कार्यक्रम जो आज आप इस फ्रीक्वेंसी पर सुन सकते हैं। और अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस विविध भारती के मुंबई केंद्र से। कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने श्री रामचरित मानस गान भाग 204।

भरद्वाज ऋषि से आशीर्वाद और आज्ञा प्राप्त कर भरत जी दल बल समेत चित्रकूट की दिशा में चल पड़े हैं। राह में असंख्य जड़ चेतन जीव जिन्हें पहले श्री राम के दर्शन हुए थे अब भरत का साक्षात्कार पाकर मानो परम पद प्राप्त कर रहे हैं। किंतु भरत का प्रभाव देख देवराज इंद्र ये सोचने लगते हैं कि कहीं भ्रातृप्रेम के वशीभूत श्री राम अयोध्या न लौट जाएं और इस तरह पनी बनाई बात बिगड़ न जाए। उनकी चिंता देख देवगुरु बृहस्पति उन्हें सीख देते हैं कि श्री राम की भक्त वत्सलता और उदारता की महिमा को ध्यान में रखकर मन से इस प्रकार की कुटिलता निकाल

देनी चाहिए। जो भी श्री राम के भक्तों का अपराध करता है वो उनकी क्रोधाग्नि में भस्म हो जाता है, और इस बात को दुर्वासा से अधिक और कौन जान सकता है।

0: श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में आजकल आप सुन रहे हैं शकुंतला नरसिम्हन द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम, जिसमें कर्नाटक संगीत पद्धति में स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों की चर्चा की जा रही है। आज प्रस्तुत है राग भैरवी।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं महाराजा स्वाति तिरुनाल के हिंदी रचनाओं के बारे में कहती आती रही हूँ। आज इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी है और इसका समापन मैं राग भैरवी में एक बंदिश से करूं तो बहुत ही उचित होगा। कल भी मैंने भैरवी में महाराजा स्वाति तिरुनाल की एक रचना सुनाई थी जो भजन के रूप में था। आज जो भैरवी कृति सुना रही हूं वो दादरा ताल में है और ज़्यादा प्रचलित है। मैंने पिछले अंक में कहा था कि श्री पद्मनाभ अर्थात विष्णु

राजा स्वातित्रनाल के कुल देवता माने जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि वे शिव पूजा से दूर रहते थे। ये जो कृति मैं गाने जा रही हूँ न केवल काशी विश्वनाथ जी के बारे में है। स्वाति तिरुनाल कहते हैं, चलो मन तुम काशी, जहाँ सुंदर और पवित्र गंगा नदी बहती है, पंडित और साधु लोग पूजा पाठ में मग्न रहते हैं, और जहाँ त्रिभुवन पालक श्री विश्वनाथ जी विराजमान हैं। विष्णु भक्त हो या शिव भक्त, स्वाति तिरुनाल कहते हैं, भजले इन दो स्वरूप, रहिए अविनाशी। तो श्रोताओं सुनिए महाराजा स्वाति तिरुनाल की भैरवी राग में रचना विश्वेश्वर दर्शन कर।

श्रोताओं, अब मैं भैरवी के दो स्वरूप दिखाती हूँ आपको, एक कर्नाटक शैली में और उसके बाद हिंदुस्तानी शैली में। तो सुनिए पहले कर्नाटक शैली में भैरवी।

श्रोताओं, पिछली कड़ियों में मैं आपको कर्नाटक रागों के बारे में और स्वाति तिरुनाल महाराजा की कृतियों के बारे में कुछ बातें बताती आई हूं। तो इस श्रृंखला का समापन यहां करते हुए मैं आपसे विनती करती हूं कि ये श्रृंखला आपको कैसी लगी, ज़रूर लिख के बताइएगा। अब सुनिए एक फिल्म संगीत।

0: राग भैरवी पर आधारित ये गीत था। फिल्म दूज का चांद से आवाज थी मन्ना डे की। स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों की चर्चा के अंतर्गत ये था राग भैरवी।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वजरदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: को वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर और गीता दत्त की आवाज़ों में। पंचायत फिल्म के गाने के साथ शकील नोमानी हैं, गीतकार और संगीतकार हैं इकबाल कुरैशी।

0: कहिए सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।

0: रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में बड़ा भाई फिल्म का गाना। गीतकार थे एहसान रिजवी और संगीतकार थे नाशाद। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए 12 o'clock फिल्म का गाना, जिसे गाया है गीता दत्त ने, लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत से संवारा है ओपी नैयर ने।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
3: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
4: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
4: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
5: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
6: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
5: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में चलती का नाम गाड़ी फिल्म से। मजरू सुल्तानपुरी हैं गीतकार और संगीतकार हैं SD बर्मन।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में चलती का नाम गाड़ी फिल्म से। मजरू सुल्तानपुरी हैं गीतकार और संगीतकार हैं एसडी बर्मन।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में चलती का नाम गाड़ी फिल्म का गाना। इस गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हमें राही प्यार के इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में जाने अनजाने फिल्म के गाने के साथ। हसरत जयपुरी हैं गीतकार और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में रखवाला फिल्म का गाना। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। आइए अब सुना जाए मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में मेला फिल्म का गाना। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है हम है राई प्यार के। लीजिए अब सुनिए हरे रामा हरे कृष्णा इस फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं। आनंद बख्शी हैं गीतकार और संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

0: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।
1: ख्याल हो कर यूं ही टूलिया किसी
2: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
3: जाने दिन लोग किया करते हैं।
2: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आन मिलो सजना इस फिल्म से। इसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

देश और दुनिया का ताजा हाल जानने के लिए आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र समाचार प्रभात के लिए। कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइन 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
4: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, भारत सरकार ने excise duty कम की, so these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies को workout करने के लिए कहा है कि LPG का जो reserve है, that should be minimum 30 days with them, and they are working on it. And similarly for crude also, we are working.
3: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है।

0: उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
1: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारी पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6 चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमा और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
2: म्यांमा के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
0: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमा के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
3: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा

0: एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, शिरोमणि अकाली दल एसएडी को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वो भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
2: गोवा में आज आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य की पिछले 4 दशकों की उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा की अलग पहचान को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कोंकणी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाले निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonir.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद कनक। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी, आज के अनेक

0: अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने सीबीएसई की 12वीं की आंसर शीट भी डिजी लॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखता है, यहीं से करा सकेंगे रीवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इंकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, समय सीमा एक साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए टीईटी पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है, डीके शिवकुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धरमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है, कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, उसे भारतीय लोकतंत्र की जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से हवाई किराया 30% तक बढ़ने का समाचार दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी भी कई अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, अटका मॉनसून 7 दिन के बाद देगा दस्तक, 10% कम होगी बारिश। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, बेवफा मॉनसून। दैनिक भास्कर लिखता है, इस साल सूखे का खतरा। हालांकि पत्र ने बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर पूर्व में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 107.2 MHz पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम त्रिवेणी विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
3: आइए सुने त्रिवेणी।

दोस्तों नमस्कार। आज की त्रिवेणी में बातें होंगी आशा की, उम्मीद की। आशा क्या है? वैसे तो इसे परिभाषित करना या इसका वर्णन करना कठिन है, लेकिन आशा को हम तब पहचानते हैं जब हम इसे महसूस करते हैं और जब हमें इसकी जरूरत होती है। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि आशा है अपने लिए एक बेहतर भविष्य की कल्पना करना और उसे पाने की कोशिश करना। हम सभी के जीवन में आशा का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि ये निराशा से बचाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये एक सकारात्मक भावना है जो विपरीत परिस्थितियों में भी हमें जीवन का अर्थ, उद्देश्य और धैर्य प्रदान करती है। आशा कठिन समय में मानसिक शक्ति बनकर हमें लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। आशा एक भावना है और सोचने का एक तरीका भी। कई बार जब हम हर तरफ से थक हार चुके होते हैं, हमें आशा की कहीं कोई एक किरण कहीं ना कहीं से किसी बाहरी कारण से भी मिलती है, तब हम फिर से ऊर्जा से भर जाते हैं। मुश्किल हालातों से उबरने में आशा की ज्योत जलाए रखना बेहद जरूरी है। आशा को हमें एक इच्छा शक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमें मंजिल तक पहुंचने में मदद करती है। आशा एक भावना है, एक मानसिकता है, जिसके जरिए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिर चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन और प्रतिकूल क्यों ना हो, आशा एक विश्वास ही तो है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा।

आशा का अर्थ है आगे बढ़ते रहना, हिम्मत बनाए रखना और जीवन के अर्थ के साथ हर मुश्किल से उबरने का रास्ता खोजना। आशा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन के बहुत कठिन समय में भी सहारा दे सकती है। यदि हम किसी विपरीत परिस्थितियों में भी आशा का अनुभव करते हैं तो इसका मतलब यही है कि हम सकारात्मक निर्णय लेने की अधिक संभावना रखते हैं। कभी कभी हमारे दिलो दिमाग पर भय और निराशा आशा से कहीं अधिक आसानी से हावी हो जाती है। ये डर हमारे आशा के भाव को कमजोर करने लगते हैं। हालांकि हम अक्सर आशा को व्यक्तिगत स्तर पर देखते हैं, लेकिन आशा को सामूहिक रूप से भी अनुभव किया जा सकता है। राष्ट्र पर जब कोई संकट का समय आता है तब आशा और विश्वास का दामन थामे रहना आगे बढ़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है। आशा हमें भविष्य के लिए बेहतर कल्पना करने और उसे पाने का प्रयास करने के लिए प्रेरित करके जीवन को खूबसूरत बनाए रखती है, जिससे निराशावादी सोच दूर रहती है।

दोस्तों, विपरीत परिस्थितियों का सामना करते समय यदि मन में आशा हो तो मस्तिष्क अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करता है और हम भी बेहतर महसूस करते हैं। आगे बढ़ते रहने की ये इच्छा शक्ति, जिसे हम उम्मीद या आशा कहते हैं, ये जीवन को गति प्रदान करती है। इसीलिए आशा को बनाए रखने पर बल दिया जाता है। आशा रखने से मन मस्तिष्क बेहतर ढंग से कार्य करता है और हम भी बेहतर महसूस करते हैं। लेकिन याद रखिए कि आशा अपने आप नहीं मिलती, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है और इसे बनाए रखने के लिए हमें स्वयं से परे भी जुड़ना पड़ता है। आशा स्वास्थ्य के लिए एक शक्तिशाली औषधि भी हो सकती है। इसीलिए चाहे हम किसी भी कठिनाई से गुजर रहे हों या चुनौतियों से जूझ रहे हों, पहले से कहीं अधिक आशा की जरूरत है ताकि हम मजबूती से टिके रह सकें। आशा की एक किरण जीवन की मुश्किलों, असफलताओं और बीमारियों से लड़ने की शक्ति देती है, जिससे व्यक्ति हार नहीं मानता। आशावादी दृष्टिकोण से जीवन में बदलाव आते हैं और हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। आशा हमें जीवन का उद्देश्य खोजने में मदद करती है। आशा ही जीवन की वो धुरी है जिस पर सुखद भविष्य की कल्पना टिकी रहती है। ये हमें विश्वास दिलाती है कि परिस्थितियां सुधर सकती हैं और आगे चलकर सब ठीक हो सकता है।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरील धड़कन चित्रलोक। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार,

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं 14 फेरे इस फिल्म के गाने के साथ।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे राजीव वल्ला, रिया दुगल और राशि हरमलकर की आवाजों में 14 फेरे फिल्म का गाना। गीतकार और संगीतकार थे राजीव वल्ला। आइए अब सुना जाए छलांग फिल्म का ये गाना, केयर नहीं करता।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुनिए उदित नारायण एक और मनाली ठाकुर की आवाजों में शबीर अहमद का लिखा और तनिष्क बागची का संगीत बद्ध किया गाना। फिल्म का नाम है कुली नंबर 1।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। आइए सुनते हैं सोनू निगम और पलक उछाल की आवाजों में बॉर्डर 2 फिल्म का गाना।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 30 मई को गोवा राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसी दिन सन 1987 में गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया था। इससे पहले गोवा एक केंद्र शासित प्रदेश था। गोवा लगभग 450 वर्षों तक पुर्तगालियों के अधीन रहा। 19 दिसंबर सन 1961 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया था। गोवा अपनी प्राकृतिक सुंदरता, स्वच्छ समुद्र तटों, सांस्कृतिक विविधता तथा पर्यटन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। गोवा राज्य की स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आपको सुनवा रहे हैं पुष्पा फिल्म का।

सूट साड़ी लहंगा व रेमंड सूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा सारीज नियर रेलवे स्टेशन अंबाला शहर। फोन 8950633222।

0: अभी आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह की आवाज में लापता लेडीज फिल्म का गाना। गीतकार थे दिव्य निधि शर्मा और संगीतकार राम संपत। आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए
2: वो भी ऐप से,
3: अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में।

चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। ये प्यारा सा गाना भी आप सुन रहे थे कलर टू फिल्म से, विशाल मिश्रा, नीति मोहन और साथियों की आवाजें, गीतकार थे सईद कादरी और संगीतकार मिथुन। दोस्तों आज है इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो यानी अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस। इसका उद्देश्य आलू के पोषण, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा में उसके महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। आलू विश्व की प्रमुख खाद्य फसलों में से एक है, ये हर आय वर्ग के भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। भारत सहित अनेक देशों में आलू की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, ये किसानों की आय बढ़ाने में भी सहायक है। आलू से अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं जैसा कि हम लोग रोज खाते भी हैं।

इसलिए इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। आलू की खेती और उससे बनने वाले नाना प्रकार के व्यंजन आजीविका का महत्वपूर्ण साधन उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए इस वर्ष की थीम ही शायद यही बात कह रही है। इस वर्ष की थीम है वेयर पोटैटोज ग्रो लाइवलीहुड्स फ्लरिश। तो चलिए चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ा जाए और आपको सुनवाते हैं ये गाना।

0: अभी आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान की आवाज में पिंटू की पप्पी फिल्म का गाना। रमन रघुवंशी ने लिखा इसे और संगीत से संवारा डॉक्टर निट्स ने। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगर।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए रश्मि रॉकेट फिल्म का गाना। आवाजें हैं भूमि त्रिवेदी और साथियों की, कौशल मुनीर के बोल और तर्ज अमित त्रिवेदी की।

0: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुनिए एआर रहमान और हीरल विरदिया की आवाजों में महबूब का लिखा और एआर रहमान का संगीतबद्ध किया गाना फिल्म का नाम हीरोपंती टू।
1: The fucker, dil jo bole,

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं। सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लूं।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।
2: भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश देहाती डिस्को फिल्म से विवेक कुमार की आवाज प्रणव वत्स ने लिखा इसे और संगीतबद्ध किया है गणेश आचार्य ने।

0: 107.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
0: FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। वक्त है कार्यक्रम आज का अखबार का।
4: आज का अखबार।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम आज का अखबार में मैं हूं आपके साथ रतीश कुमार। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? नहीं पता, कोई बात नहीं, हम आपको लेकर चलते हैं लगभग 200 साल पीछे, उस दौर में जब हिंदी पत्रकारिता का पहला सूरज उगा था। दोस्तों, तारीख थी 30 मई सन 1826, स्थान था कलकत्ता, जिसे आज हम कोलकाता के नाम से जानते हैं, और इसी दिन प्रकाशित हुआ हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड। इसकी स्थापना और संपादन किया था पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने। उदंत यानी समाचार और मार्तंड यानी सूर्य, अर्थात समाचारों का सूर्य, मानो ज्ञान और जागरूकता का सूरज पहली बार हिंदी भाषी समाज के आकाश में उदित हुआ हो। दोस्तों, कल्पना कीजिए, ना इंटरनेट, ना मोबाइल, ना टीवी, और ऐसे में एक व्यक्ति सोचता है कि देश के आम लोगों तक उनकी अपनी भाषा में समाचार पहुंचने चाहिए, और यही सोच हिंदी पत्रकारिता की नींव बनी। स्वतंत्रता की लड़ाई में हिंदी पत्रकारिता जन जागरण का माध्यम बनी। लोगों में आत्मविश्वास, राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता की भावना यही जगा रही थी। यही कारण है कि पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। अब समाचार केवल समाचार पत्रों तक सीमित नहीं, बल्कि इसका स्वरूप बदल चुका है। लेकिन एक चीज नहीं बदली, और वो है सत्य की खोज, जो पत्रकारिता का दायित्व है। हिंदी पत्रकारिता दिवस हमें उन सभी पत्रकारों को याद करने का अवसर देता है जिन्होंने अपनी कलम से समाज को सही दिशा दी थी।

केंद्र सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किए।

वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 1.5% आई गिरावट। रिजर्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में बैंक और वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी के कुल मिलाकर 10,114 मामले किए गए दर्ज। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की जारी रिपोर्ट अनुसार भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण और वित्तीय सुरक्षा में की उल्लेखनीय प्रगति। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों को निलंबन सीमा को बढ़ाया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन 1 जून से होगा शुरू। सुप्रीम कोर्ट ने 1 से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य की। परीक्षा पास करने की समय सीमा 31 अगस्त 2028 तक बढ़ाई। और भारतीय महिला हॉकी टीम ने पर्थ हॉकी स्टेडियम में खेले गए 4 मैचों की मैत्रीपूर्ण श्रृंखला के तीसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आज बस इतना ही।

म्यांमार के राष्ट्रपति श्री यू मिन आंग हैलांग आज भारत 5 दिन के दौरे पर आएंगे। ये उनकी वर्तमान पद पर भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है।

पंजाब के निकाय चुनाव में आपने 8 में से 5 पर जीत हासिल की, 2 पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस ने की हासिल जीत। पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक आज चंडीगढ़ में की जाएगी। बैठक में अहम प्रस्तावों, प्रशासनिक मामलों और जनहित के मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। मौसम विभाग ने आज पंजाब में आंधी तूफान और बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट किया जारी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर पंजाबी का अंतिम संशोधित परीक्षा किया घोषित। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने प्रदेश के 23 जिला अस्पतालों में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार क्लिनिक किए शुरू। हरियाणा सरकार ने कैबिनेट की मंजूरी के बाद नई ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी की अधिसूचना की जारी। हरियाणा सरकार ने भूजल दोहन के बोरवेल निर्माण की अनुमति सेवा को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के दायरे में ला दिया। अब बोरवेल निर्माण की एनओसी या अनुमति आवेदन मिलने के 45 दिन में मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान होगा आज। और हिमाचल प्रदेश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 13 जून को भारत और अफगानिस्तान के बीच

मोहाली से चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए 31 मई से खुलेगा वैकल्पिक मार्ग। केंद्र सरकार ने जारी की नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में 48.5 पुरुष मोटापे के शिकार, देश में दूसरे नंबर पर। चंडीगढ़ प्रशासन ने इंडस्ट्रियल एरिया को लेकर एक मेजर चेंज मास्टर प्लान 2031 में प्रस्तावित संशोधनों में किया शामिल। नगर निगम ने शहर के सेक्टर 17, 35 सी और 22 बी के पार्किंग रेट बढ़ाने पर की चर्चा। ट्रिब्यून फ्लाईओवर के लिए हाईकोर्ट ने कहा, मास्टर प्लान के खिलाफ नहीं हो सकता निर्माण, अंडरपास पर हो सकता है विचार।

और दिल्ली अंबाला रेल सेक्शन के विस्तार कार्य के चलते चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों से चलने वाली शताब्दी, वंदे भारत समेत कई प्रमुख ट्रेनें 31 मई से 6 जून तक रद्द रहेंगी या रूट बदले जाएंगे। स्थानीय समाचारों में फिलहाल बस इतना ही।

0: इस गीत के साथ अब रतीश कुमार को कार्यक्रम आज का अखबार समाप्त करने की दीजिए इजाजत।
1: आज का अखबार।
0: FM 107.2 MHz पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लयान 5 दिन की भारत यात्रा पर आज बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी शामिल होगा। राष्ट्रपति के रूप में ओ मिन आउ लयान की यह पहली भारत यात्रा है। म्यांमा के राष्ट्रपति गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमा के राष्ट्रपति कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का LPG भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
3: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko work out karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them. And they are working on it. And similarly for crude also we are working.
2: सुश्री सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी LPG वितरक केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव वसीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। पोत पत्तन परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस कोरोस हुरमुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। इस पोत पर लगभग 270,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि गोवा न केवल अपने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार अतिथि सत्कार के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि शिक्षा, प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप और सतत विकास में उल्लेखनीय प्रगति के लिए भी जाना जाता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह अवसर उन सभी को याद करने का है जिन्होंने राज्य की प्रगति और पहचान के लिए अथक परिश्रम किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पत्रकारों, लेखकों और हिंदी भाषा के लिए समर्पित प्रबुद्ध व्यक्तियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने सामाजिक चेतना जगाने, लोकतंत्र को सुदृढ़ करने और लोगों की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के सशक्त माध्यम के रूप में कार्य किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने जन जागरूकता को बढ़ावा देने, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय एकता मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये

0: पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम विधायक दल की बैठक बुलाई है, उसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। नए नेता के चुने जाने तक उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का निर्देश दिया गया है। सभी 136 कांग्रेस विधायकों को बैठक में उपस्थित रहने को कहा गया है। ओडिशा में आज मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। एक महीने तक चलने वाले निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी। और खेलों में हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 8 पदक जीत लिए हैं। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल है। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। वहीं IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस फाइनल में पहुंच गया है। न्यू चंडीगढ़ में कल उसने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 MHz पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
2: सूट साड़ी लहंगा व रेमंड सूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा साड़ीज ने रेलवे स्टेशन अम्बाला शहर। फोन 8950632224।
1: श्रोताओं आपके लिए लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम सफर सुरीला सा। आगाज करते हैं कार्यक्रम का लव फिल्म के गीत के साथ। आवाजें SP बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की। गीत के बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं, संगीत आनंद मिलिंद का।

दोस्तों खिलाड़ी फिल्म का आपने गीत सुना, कुमार सानू और आशा भोसले की आवाजों में। गीत के बोल महेंद्र देहलवी के थे और संगीत से सजाया था जतिन ललित ने। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कोयला फिल्म से उदित नारायण व साथियों की आवाजों में। इंदिवर के बोल है संगीत राजेश रोशन का।

0: थाना पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: कार्यक्रम सफर सुरीला सा का आप आनंद उठा रहे हैं और कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं पत्थर के फूल फिल्म से गीत लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में। गीत के बोल लिखे हैं रविंद्र रावल ने, संगीत से सजाया है राम लक्ष्मण ने।

संगीत के साथ कार्यक्रम सफर सुरीला सा यही होता है समाप्त। एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। वक्त है कार्यक्रम पॉप टाइम का।

0: टाइम प्रोग्राम सुनने वाले सभी दोस्तों को रमेश कपूर का प्यार भरा नमस्कार।
1: हेलो मेरे आइसक्रीम जैसे ठंडे मिठे पाजी।
2: हेलो पिंके, हो गए आते ही शुरू।
1: हाँ जी पाजी, आप क्या चाहते हैं कि मैं आइसक्रीम की तरह खोर जाऊं? मेरा मतलब है पिघल जाऊं टी करके।
2: पिंके, मेरे कहने का मतलब था,
1: सब जानता हूँ आपका मतलब। हाँ, एक तो गर्मी ने मेरे वट कर दिए हैं, ओए होए, ऊपर से आपका ये मतलब किसी दिन मेरी जान कट देगा टी करके।
2: पिंके कैसी बातें करते हो, सुधर जाओ सुधर।
1: भाई पहले फटाफट एसी तो चलाओ ना यार, जरा हम भी अपने कलेजे में ठंड पाले टी करके।
2: ये लो पिंके, कर दिया एसी ऑन।
1: हाय, हूं आई मेरी जान में जान। भाई अब इस ठंडक में एक वधिया सा गाना सुना दो, नहीं तो श्रोता फिर कहेंगे बातें ही करते रहते हैं, बातें ही करते रहते हैं, गाना तो सुनाते नहीं टी करके। भाजी एसी को चलता रहने दे, कलेजे में

0: पिंके आज शनो जी फिर नहीं आई?
1: हाँ जी भाजी नहीं आई। आपने कौन सी यहाँ पर शकवंजवी बना रखी है भैया नींबू पा के?
0: क्या मतलब?
1: ओए होए पाजी, आप तो हर बात में अपना कोई ना कोई मतलब ढूंढते हैं यार। ये नहीं कि बंदा इस सड़ती धूप में प्यासा आया है, कोई ठंडा शंडा पिलाओ, कोई लस्सी शस्सी पिलाओ, कोई नींबू शकवंजवी पिला दो मेरे कंजूस पाजी।
0: हाँ हाँ पिंके क्यों नहीं, बस प्रोग्राम के बाद बाहर जाकर पियेंगे, है ना?
1: पाजी क्यों मुझे बीमार करने पर तुले हैं? हैं? बाहर की कोई गंदी मंदी चीज बुला के? और पाजी आप मेरे दोस्त है या दुश्मन? टी टी टी करके।
0: ठीक है पिंके, हम नींबू यहाँ पर लाकर नींबू पानी बनाकर पियेंगे, ठीक है?
1: ओए होए पाजी, इस गर्मी में आपको क्या तकलीफ देनी यार। आप ऐसा करो 5 किलो नींबुओं के पैसे दे दो टी टी टी करके।
0: 5 किलो नींबू के पैसे? पर इतने नींबू करोगे क्या?
1: पाजी हर 10 मिनट बाद मैं और शन्नो जी आपका नाम लेके नींबू पानी बना बना के पियेंगे। और क्या, नींबुओं का हार बना के मैंने अपने गले में पहनना है टी टी टी करके।

0: Bước thứ bước dư Bị cơ
1: Lô A ghét chứ càm ca mà rì Xong chứ càm
0: के तुम्हारा ही दोस्त है ना सोहन
1: पाजी ऐसे जुकाम दोस्त से तो तंदुरुस्त दुश्मन चंगा टीडी टी करके ओ आजा भाई सोहन खुला ही है दरवाजा मिच्छी मेल का आजा अंदर चीक मार के
0: दबस्ते बच्ची पाजी हेलो पिक्के एक तो इस जकाब दे बेरा दासी बार दिया है
1: ओए सोन इतनी कड़क के कि गर्मी में तेरा जकाम अभी तक सुखा नहीं टीड़ी टी करके
0: पिंके सोहन बेचारा अभी अभी पहुंचा ही है और तुम लगे उसे सताने
1: पाजी मैं कहां सता रहा हूँ सोन को तो 12 महीने सता रहा है जकाम टीड़ी टी करके वैसे मेरे स्कीमी पाजी मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश ना करो हाँ और जल्दी से 5 किलो नींबूओं के पैसे दे दो टीड़ी टी करके
0: 5 किलो नींबू
1: ओए सोन इस गर्मी में पाजी ने मुझे सलाह दी है कि ज्यादा से ज्यादा नींबू पानी पियो टीड़ी टी करके क्यों पाजी
0: हाँ हाँ पिंके पर यार पिक्के भी अच्छी पाजी तो सलाह हमेशा मुझे देते है ना
1: ओए सोन पाजी तेरे सलाह की कार है ओए होए जाके अपना जुकाम ठीक करवा टीड़ी टी करके वैसे कहते हैं अगर नींबूओं को सूंघो ना तो जुकाम ठीक हो जाता है टीड़ी टी करके
0: यार पिक्के सच
1: ओए मोचे

0: मेची पाजी, इस सौन जकाम के चक्कर में मैं आपसे एक बात कर रहा था, भूल ही गया।
1: हाँ पिंके, तो अब कर लो ना।
0: पाजी, आजकल अपनी गड्डी शड्डी में किसी दूसरे शहर जाते हो ना, तो बड़े ध्यान से जाया करो। हाँ, ना ज्यादा सवेरे ना ज्यादा रात में।
1: क्यों यार पिंके, रास्ते में भूत होते हैं?
0: भूत नहीं, यमदूत होते हैं, जो बेचारे भोले भाले लोगों को हाईवे से गड्डी समेत अगवा करते हैं, फिर उन्हीं के घर में आके उनको लूट के तितर हो जाते हैं।
1: हाँ पिंके, हाईवे लुटेरों का गिरोह आजकल सरगर्म है। बेची पाजी, तो फिर इन लुटेरों को अपना सर ठड्डा रखना चाहिए इस शीशे सीधे। भाई ठड्डी हवा शवा खाए।
0: क्यों नानके है ये ग्रह? इनको तो पुलिस पाजी ही खिलाएंगे हवा और लात। हवा लात में।
1: पिंके, पता नहीं ये भटके हुए लोग कब मेहनत करना सीखेंगे।
0: पाजी, आप क्या समझते हैं कि ये चोर लुटेरे डाकू मेहनत नहीं करते? बहुत मेहनत करते हैं, उल्लुओं की तरह रात रात भर जागते हैं, और जैसे ही हाईवे पर कोई गड्डी देखी बस उनको लूट के तितर हो जाते हैं। और जब ये चोर लुटेरे डाकू पकड़े जाते हैं तो पुलिस पाजी इनको ऐसे धोते हैं जैसे पुराने जमाने में जनानियां कपड़े धोती थी थापी से।
1: बेची पाजी, एक तो उस जकाब ने मेरा दास ही मार दिया है। एक बात
0: ओए सोन,
1: पिंके सोहन को भी तो अपनी बात कहने दो ना।
0: हाँ सोन, कह दे अपनी बात निच्छ मार के।
1: बेची पाजी, अभी मैं आपके पास आने के लिए ना रिक्शे का इंतजार कर रहा था।
0: अरे बड़ा जहाज का इंतजार कर रहा था तू, जुकाम के मरीज।
1: पिंके तुम चुप करो ना, सोहन को बोलने दो। बेची पाजी, मैं रिक्शे का इंतजार कर रहा था, इतने में एक बुद्धा मेरे पास आके खड़ा हो गया और सिगरेट पीने लगा। ओहो बेची पाजी, उस सिगरेट के धुएं से मेरा तो साह लेना मुश्किल हो गया।
0: ओए सोहन, तेरा तो साह लेना पहले ही बड़ा मुश्किल है, दाग जो तेरा बद रहता है हमेशा जुकाम से।
1: पिंके, अच्छा भला तंदुरुस्त आदमी परेशान हो जाता है इस तंबाकू के धुएं से।
0: हाँ जी भाई, फिर ये तो सोन बेचारा जुकाम का मारा टीडी टी करके।
1: सोहन, तुमने उस आदमी को कुछ नहीं कहा?
2: भी अच्छी पाजी, एक तो उस जुकाम ने मेरा दास ही मार दिया है। बेची पाजी, मैंने उस आदमी को समझाया भाई ये तंबाकू इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ओ भाई साहब, क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हो? पता कितनी खतरनाक बीमारियां होती है इस तंबाकू से, और क्यों अपनी कीमती जान गवारे पर तुले हो? है जरा अपने बच्चों का ध्यान करो, अपने घर परिवार का ध्यान करो, और कुछ नहीं रखा इस तंबाकू में सवाए बीमारियों के। भाई जान है तो जान है। हाँ।
1: वाह भाई सोहन, तुमने तो बड़ा अच्छा काम किया।
0: पर भाई सोहन ने फिर जुकाम का काम किया टीरी टी करके।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम पॉप टाइम।
1: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरे भरे वादियों तक,
1: घर घर जन जन तक चंडीगढ़ के साथ साथ देश के 5 राज्यों तक पहुंचने वाला चंडीगढ़ का एकमात्र रेडियो चैनल,
2: आपका अपना FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़,
1: जो चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी और उत्तराखंड में बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
2: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान।
3: नवा आँखियाँ रूहानी कहीं, नवा चेहरा नूरानी कहीं।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ दुनिया के हर कोने में पहुंचाए आपका ब्रांड।
3: जग खुना थारे जैसा ना कोई।
2: तो देर क्यों जनाब, अपने कारोबार की एडवर्टाइजमेंट बुक करवाएं।
1: चले आए आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846, चंडीगढ़ का STD कोड है 0172
2: और हमारा ईमेल आईडी है akashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: FM 107.2 MHz पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र, लेकर हाजिर हैं आपके लिए कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस।
1: म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला।
0: जी हाँ दोस्तों, ये है वो कार्यक्रम जिसमें आप अपने पसंद के गीत हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट AIR चंडीगढ़ पर लिखकर भेज सकते हैं और हम इस कार्यक्रम में प्ले करते हैं आपकी पसंद के वो गीत। और ये सिलसिला शुरू हो चुका है और हम तक आपकी रिक्वेस्ट पहुंची है। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखिंदर सिंह जौड़ा, सीटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, पवन साथ में राजिंदर सिंह ओबराय, पवन कनौजिया, वंदना कनौजिया, गरिमा कनौजिया, श्री आनंदपुर साहब से, ये सभी सुनना चाहते हैं सच्चा झूठा फिल्म का गीत। तो चलिए आपकी पसंद पर हम प्ले कर रहे हैं ये गीत।

यूं ही तुम मुझसे बात। कार्यक्रम में अगले गीत के लिए हम तक फरमाइश आई है नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्डा और अलका मिड्डा की। सप्रेम नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन लिखकर भेजा है। सुनना चाहते हैं मिलन फिल्म का गीत, तो चलिए आपकी पसंद पर हम प्ले कर रहे हैं ये गीत।

कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टा फेस का आप आनंद उठा रहे हैं और अगला गीत गंगा जमुना सरस्वती फिल्म से हम तक रिक्वेस्ट आई है, लिखकर भेजी है जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से, रूपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रत्येश संघई और पूरा संघई परिवार ये इस फिल्म का गीत सुनना चाहता है, तो आपकी फरमाइश पर हम प्ले कर रहे हैं आपकी पसंद का गीत।

कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टा फेस का आप आनंद उठा रहे हैं और हम प्ले कर रहे हैं आपकी पसंद के गीत जो आपने हमारे हैशटैग इंस्टा फेस अकाउंट पर आपने लिखकर भेजे हैं। दोस्तों अगला गीत सुनना चाहते हैं जानवर फिल्म से और फरमाइश करने वाले हैं राकेश भांबी और इंदु भांबी। इसके अलावा कोई भी गीत सुनने के लिए हम तक फरमाइश आई है नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा अमन वर्मा दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा की। तो चलिए आपकी पसंद पर हम ले कर रहे हैं जानवर फिल्म से ये गीत।

कार्यक्रम में अगली फरमाइश है परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा से इंजीनियर अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति ग्रोवर, पवनीत ग्रोवर और विक्रमजीत ग्रोवर सुनना चाहते हैं द ट्रेन फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में गीत। तो आइए आपकी फरमाइश पर हम प्ले कर रहे हैं ये गीत।

कार्यक्रम में अगली फरमाइश आई है मिस्टर आशिक मूवी से और सुनना चाहते हैं सहारनपुर से राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव, अभिषेक नामदेव और हर्षित शर्मा।

कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टा फेस का आप आनंद उठा रहे हैं और अगला गीत सुनना चाहते हैं लोफर फिल्म से रमेश गुलाटी, स्नेह गुलाटी, हिमांशु गुलाटी, देवांशु गुलाटी सेक्टर 9 पंचकुला से इन्होंने फरमाइश लिखकर भेजी है। साथ ही इसी फिल्म का गीत सुनने के लिए हम तक आई है फरमाइश मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद कादिर, मोहम्मद रफीद, मोहम्मद नसीर, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद अली हुसैन की सेक्टर 12A पंचकुला से। तो आपकी पसंद पर हम प्ले कर रहे हैं इस फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस का आप आनंद उठा रहे हैं। और अगला गीत जो सुनना चाहते हैं आंधी फिल्म से फरमाइश कर रहे हैं ललिता पाल, हुकुमचंद, ईशान पाल, निशांत पाल, दुधला मंडी, अंबाला, कैंट से।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस कार्यक्रम का आप आनंद उठा रहे हैं और अगला गीत जो सुनना चाहते हैं उसके लिए फरमाइश हम तक पहुंची है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी गोस्वामी जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी की सुनना चाहते हैं बलमा फिल्म का गीत। इसके अलावा इसी फिल्म का कोई भी गीत सुनने के लिए हम तक फरमाइश आई है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान मोहम्मद सलमान मोहम्मद इरफान मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून की। तो चलिए आपकी पसंद पर हम प्ले कर रहे हैं ये गीत।

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़।
1: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों तक,
0: घर घर जन जन तक चंडीगढ़ के साथ साथ देश के 5 राज्यों तक पहुंचने वाला चंडीगढ़ का एकमात्र रेडियो चैनल,
1: आपका अपना FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़,
0: जो चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी और उत्तराखंड में बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
1: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान।
2: ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं।
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ दुनिया के हर कोने में पहुंचाए आपका ब्रांड।
2: जग घूमने थारे जैसा ना कोई।
1: तब देर क्यों जनाब, अपने कारोबार की एडवर्टाइजमेंट बुक करवाए।
0: चले आए आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846, चंडीगढ़ का STD कोड है 0172
1: और हमारा ईमेल आईडी है akashwanichandigarh@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी चंडीगढ़।
3: कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टा फेस का आप आनंद उठा रहे हैं और कार्यक्रम का आखिरी गीत जिसके लिए फरमाइश आई है वो है हसीना मान जाएगी। फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं, फरमाइश करता है झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और रीता भाटिया, साथ ही कीर्ति वर्मा, सिद्धार्थ वर्मा, ऑल वर्मा फैमिली विलेज, बुर्ज हनुमानगढ़ नियर मंडी, अरनीवाला डिस्ट्रिक्ट फाजिलका से सुनना चाहते हैं इस फिल्म का गीत। तो आप सभी की रिक्वेस्ट पर हम प्ले कर रहे हैं इस फिल्म का

0: श्रोताओं, इसके अलावा और भी फरमाइश हम तक पहुंची थी जिनकी समय की कमी की वजह से हम फरमाइश नहीं पूरी कर पाए। उनमें नाम शुमार है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल वर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, साथ ही चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी, चंडीगढ़ सेक्टर 23 से विक्की, रेनू, बुलबुल, अक्षी की ओर से सभी को नमस्कार, और साथ ही पंचकुला सेक्टर 21 से मोहम्मद अनस, मोहम्मद अरहान, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा ने अपनी फरमाइश लिखकर भेजी थी। और इसके अलावा कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बाय हिमाक्षी और साथ ही दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नौखेलाल वर्मा की हम तक फरमाइश आई थी। तो दोस्तों, इस गीत के साथ अब रतीश कुमार को दीजिए इजाजत कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस यहीं समाप्त करने की।
1: म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस।
2: इंस्टाग्राम पर आपकी
3: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार

0: के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
0: सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में कहा कि देश में एलपीजी की कमी की कोई सूचना नहीं है। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यभार मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने के निर्देश दिए हैं। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा यह सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
2: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल NS राजासुब्रमणी उनका स्थान लेंगे। गुजरात टाइटंस IPL क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि गोवा न केवल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार आतिथ्य सत्कार के लिए प्रसिद्ध है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह अवसर उन सभी को याद करने का है जिन्होंने राज्य की प्रगति और पहचान के लिए अथक परिश्रम किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पत्रकारों, लेखकों और हिंदी भाषा के समर्पित प्रबुद्ध व्यक्तियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचे और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी है और आप सुन

0: रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
1: महफिल आज अभिनेता परेश रावल का जन्मदिन है, बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं उन्हें और उनकी फिल्मों के गाने आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे। भागम भाग इस फिल्म का गाना रेमो फर्नांडिस और सुजीन की आवाजों में, समीर की बोल, संगीत प्रीतम का।

ये गाना है उदित नारायण की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, बीजू शाह का संगीत, फिल्म का नाम रावण राज।

अंतराल के बाद अब आपको सुनवाने जा रहे हैं आंखें फिल्म का गाना, नितिन रायकवार आदेश और अरुण बख्शी की आवाजों में। नितिन रायकवार के बोल, संगीत है जतिन ललित का।

अगला गीत सुनते हैं कार्यक्रम का, ओ माई गॉड, इस फिल्म का गाना है, कैलाश खेर, मीत ब्रदर्स और अनजान की आवाजें, कुमार के बोल, मीत ब्रदर्स अनजान का संगीत है।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: ये है राजा फिल्म का गाना, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनूं।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत।

सिर्फ विविध भारती पर। यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये हंगामा फिल्म का गाना शान और साधना सरगम की आवाजों में। समीर की बोल है, संगीत है नदीम श्रवण का।

पिछड़े दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

यादों की महफिल ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अगला गाना गोलमाल, इस फिल्म का गाना शेखर और स्नेहा पंत की आवाजों में, विशाल दादलानी और कुमार का लिखा हुआ गाना, संगीत है विशाल शेखर का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अतिथि तुम कब जाओगे। इस फिल्म का गाना अनुपम आमोद की आवाज, इरशाद कामिल के बोल, संगीत है प्रीतम का।

0: आज का यादों की महफिल ये कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों तक,
1: घर घर जन जन तक चंडीगढ़ के साथ साथ देश के 5 राज्यों तक पहुंचने वाला चंडीगढ़ का एकमात्र रेडियो चैनल,
2: आपका अपना FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़,
1: जो चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी और उत्तराखंड में बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
2: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान।
3: ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ दुनिया के हर कोने में पहुंचाए आपका ब्रांड।
3: जग घूमे थारे जैसा ना कोई,
2: तो देर क्यों जनाब, अपने कारोबार की एडवर्टाइजमेंट बुक करवाएं।
1: चले आएं आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846, चंडीगढ़ का STD कोड है 0172,
2: और हमारा ईमेल आईडी है akashwanichandigarh@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी चंडीगढ़।

107.2 MHz पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए अब सुनिए अब से लेकर रात 11 बजे तक प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले 1:05 पर हिंदी में, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में। प्रादेशिक समाचार आप शाम को भी सुन सकते हैं, शाम 6:10 पर हिंदी में और 6:20 पर पंजाबी में। कुछ फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे 1:15 पर और शाम 5:05 पर। 1:30 पर सुनिए कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम त्रिवेणी प्रसारित किया जाएगा दिन में 2 बजे। 2:30 पर कार्यक्रम होगा सदाबहार नगमे। 4 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत सुनवाया जाएगा 3 बजे। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत आज सुनिए कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज। आज इस कार्यक्रम में अभिनेत्री साधना सिंह से बातचीत सुनवाई जाएगी। 9:00 कार्यक्रम में बाद दोपहर 3:30 पर नाटक अग्नि चक्र का पहला भाग प्रसारित होगा। 5:20 पर। 5:30 पर सुनिए कार्यक्रम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग। आज इस कार्यक्रम में साइक्लिस्ट रिपन कुमार से बातचीत प्रसारित होगी। कुछ पंजाबी गीत हम आपको सुनवाएंगे 6:30 पर, 7:47 पर और फिर सुरसांझ कार्यक्रम में 10:32 पर। कार्यक्रम विशेष जयमाला सुनिए 7:00। हवा महल कार्यक्रम होगा 8:00। कार्यक्रम चित्रलोक सुनिए 8:15। 9:00 सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम पार्श्व गायक के पर केंद्रित रहेगा।

0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले 1:05 पर हिंदी में हमारे केंद्र से, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई

0: में ये जानकारी दी। संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। किसी भी एलपीजी वितरक केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
1: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र को बाईपास परियोजना देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र के लिए ये बाईपास नहीं बल्कि सड़क मार्ग के रूप में जीवन रेखा है, जिसका कुरुक्षेत्र के नागरिकों को लंबे समय से इंतजार था। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 27 किलोमीटर 900 मीटर लंबा ये बाईपास कुरुक्षेत्र के दक्षिणी भाग से होकर निकाला जाएगा, जो कुरुक्षेत्र पिहोवा मार्ग पर ज्योतिसर के पास इंदम्बरी से शुरू होकर राज्य मुख्य मार्ग 6 एमडीआर 119 किरमिच रोड अमीन रोड व राष्ट्रीय मुख्य मार्ग 44 को जोड़ता हुआ गांव मथाना पर समाप्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से न केवल पिपली चौक पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा बल्कि कुरुक्षेत्र शहर को जाम से स्थायी राहत मिलेगी। इस परियोजना के पूरा होने पर दिल्ली यमुनानगर हरिद्वार समेत पंजाब व कैथल की और यातायात और भी आसान व सुरक्षित हो जाएगा। ब्रह्म सरोवर ज्योतिसर एवं अन्य धार्मिक स्थलों तक पहुंच आसान होने से कुरुक्षेत्र में पर्यटन व्यापार निवेश व रोजगार को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये ट्रिपल इंजन सरकार की विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। वैश्विक ताप वृद्धि की समस्या से निपटने व मां को सम्मान देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया था। इस अभियान के तहत आम लोगों ने बड़ी संख्या में न केवल अपनी मां के नाम पेड़ लगाए बल्कि उनका पोषण करने का कार्य भी किया। भिवानी जिला में शिक्षा विभाग के माध्यम से बीते वर्ष 2025-26 में जिला के 1178 प्राइवेट व सरकारी स्कूलों में 1,16,800 पौधे लगाए गए। इस अभियान से न केवल स्कूली बच्चे जुड़े बल्कि आम नागरिकों ने भी बड़ी संख्या में जुड़कर अपने अपने प्रांगण व सार्वजनिक स्थानों पर पौधे लगाए। भिवानी निवासी छात्रा आरोही राष्ट्रपति युवा अवार्डी अशोक भारद्वाज महंत चरणदास मोहनदत्त ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अभियान से प्रेरित होकर उन्होंने न केवल प्रांगण बल्कि विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी संख्या में पौधे लगाए। इससे न केवल उन्हें अपनी मां का सम्मान करने का अवसर मिला बल्कि इन पौधों से पर्यावरण का संरक्षण भी हुआ।
2: नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजादी से समिति जैसे अनेक संगठन जो हमारे साथ में जो रहे और उनके तहत हमने काम किया। हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पर जो हमने काम किया इसमें काफी बच्चे भी हमारे से जुड़े हैं, युवा भी जुड़े हैं, अनेक सामाजिक संगठन जुड़े हैं और सरकार और प्रशासन के जो डिपार्टमेंट से लोग हैं वो भी उनके साथ भी जुड़कर हमने काम किया। और हमने जो पौधा लगाया उसका संरक्षण भी करते, उनमें खाद पानी है समय समय पर देते रहते ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
0: हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कल यमुनानगर में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में अवैध कॉलोनियों, फर्जी रजिस्ट्रियों, अवैध कब्जों, प्रदूषण, कालीबाजारी तथा जन समस्याओं से जुड़े मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक के दौरान श्री विज ने अवैध कॉलोनियां काटे जाने के मामले में संलिप्त संबंधित रजिस्ट्रारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के निर्देश जारी किए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल से मुक्ति पाएं।
1: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।

जोड़ी नंबर वन इस फिल्म का ये गाना आपने सुना, इसमें संगीत हिमेश रेशमिया का, और बड़े दिलचस्प अंदाज में इन्होंने जो है जीवन का फलसफा वो सिखाने की कोशिश की गई है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आलू की टिक्की के साथ चटपटी इमली की चटनी ऊपर दही से डाल दे फिर खाने में स्वाद आ जाता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि व्रत में तो आलू बहुत इस्तेमाल किया जाता है, उबला आलू और दही का रायता, फ्राई में फिंगर चिप्स, हर हाल में आलू बहुत अच्छा लगता है, समोसे तो आलू के बगैर ही नहीं सकते। एक हमारी साथी लिख रहे हैं कि आज ही मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि आलू टमाटर की रसीली सब्जी बनाना, कहते हैं कि डायबिटीज वालों को लाल आलू खाना चाहिए और उबले हुए आलू को 12 घंटे फ्रिज में रखने के बाद खाना चाहिए, जिसमें से आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि कटक का आलू दम दही बड़ा जिस किसी ने खाया उसे कटक घूमने आने का मजा आया, विश्व प्रसिद्ध आलू दम दही बड़ा के स्वाद सभी मुसाफिर के पेट भरने के लिए ये याद किया जाता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि जब हमारे बच्चे छोटे थे तो उनकी फरमाइश होती थी कि फिंगर आलू बनाने हैं, तो सच कह रहे हैं हम बनाते बनाते थक जाते पर वो सब खाते जाते थे, और तो और एक दो दोस्त भी आ जाते, वो दिन भी क्या दिन थे। आजकल तो मम्मी आलू ज़्यादा नहीं खाने चाहिए ऐसा कहती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू तो हम लोगों के यहाँ पहले भी बोया जाता था और वो अगस्त सितंबर तक सब्जी का पूरा काम करता था, लेकिन धीरे धीरे जो है इसकी कम हो गया है। ये एक साथी लिख रहे हैं कि आलू भारतीय रसोई की रीढ़ है, इससे यदि इसे सही और संतुलित तरीके से जैसे कि उबाल कर या बेक करके पकाया जाए तो ये सेहत और स्वाद दोनों के लिए बेहतरीन है। आलू भारतीय रसोई का राजा है जिसके बिना हर घर का भोजन अधूरा माना जाता है। स्वाद, पोषण और उपयोगिता के मामले में भारतीय व्यंजनों में आलू का स्थान सबसे ऊपर है। आलू वाकई स्नैक्स का राजा है, ये इतना वर्सेटाइल है इसमें कोई भी लाजवाब डिश मिनटों में बनाई जा सकती है। तो फिलहाल अगला जो हम गीत सुनवा रहे हैं उसमें तो केवल आलू टमाटर का जो साग होता है उसे ही कितने इस तरीके से इसमें हम सुनेंगे इस गाने में कि भूख होती है तब तो वो चीज़ हमें और भी ललचाती है, लेकिन नहीं भी भूख हो तो बोलने का जो अंदाज़ है इस के बारे में सुनकर ऐसा लगता है कि हाँ आलू टमाटर का साग खा लिया जाए। संगीत किसका है बताइए हमें।

उजाला फिल्म का गाना हमने सुना, शंकर जयकिशन का इसमें संगीत है। और ये सही बात है कि जब हम पिकनिक पर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो सब्ज़ी या कुछ चीज़ बना के ले वो आलू की होती है। आलू की सब्ज़ी और पूरियां, या फिर मसाले वाली पूरियां, या फिर आलू के पराठे, या इस तरह की चीज़ें हम बना करके ले जाते हैं। या यहाँ तक कि हम जब सफ़र में जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो भी सबसे ज़्यादा जो सब्ज़ी आपको दिखाई पड़ेगी वो आलू की सब्ज़ी ही होगी। एक साथी लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद शहर के जो आलू होते हैं वो भारत में नंबर वन तरह के आलू होते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि पुराने ज़माने और आज तक आलू बैंगन की सब्ज़ी सबसे ज़्यादा गुजरात के घरों में खाई जाती है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि ज़्यादा खाओगे तो एसिडिटी करेगा। जी हाँ, कोई भी चीज़ हो उसे अति किसी भी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। एक साथी लिख रहे हैं कि छोटे छोटे आलू को जाड़े के दिनों में हर घर में तापने के लिए जो अलाव जलाते हैं उसमें भून कर बच्चे अक्सर कटोरी में नमक उसमें डाल करके खाते हैं। गर्म गर्म बड़ा टेस्टी होता है। पहले गन्ने की पेराई होती थी तो खोलते कढ़ाई में जब राब तैयार होने को होती थी तो छोटे छोटे आलू को धागे में गूंथ कर कढ़ाई में डाल देते थे। कितना मीठा और टेस्टी वो आलू के लिए जो है हम झगड़ा करते थे। अब तो गाँवों में गन्ने की पेराई बंद हो गई है तो मीठा आलू भी अब नहीं मिलता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आजकल लाल आलू बहुत मिल रहे हैं जिनमें कम मात्रा में स्टार्च होता है और भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू की भाजी, बैंगन का भरता, बोले जी बोलो तो क्या खाओगे, ये एक इस गाने के बारे में इन्होंने लिखा है। और एक साथी लिख रहे हैं कि सबसे सस्ता आलू है, जो सभी सब्जियों के भाव ज़्यादा हो जाते हैं तो केवल आलू, धनिया डालकर रसदार सब्जी चावल और रोटी के साथ खाने का जो मज़ा है वो बड़ा आता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आज आलू की बातें सुनकर हमारी बेटी ने भी फरमाइश कर दी कि अभी तो खाना बन गया है तो डिनर में आज मस्त आलू की रसेदार सब्जी जिसमें डाली हो थोड़ी सी केरी और उसके साथ हो जाए थोड़े से जीरा राइस, ऐसा इन्होंने लिखा। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू की बात हो रही तो मुझे चूल्हे की आँच में सेक कर आलू बहुत पसंद आते हैं। जब कभी लंबी यात्रा पर जाता हूँ तो मम्मी हमेशा ही आलू के पराठे और आलू

की चटनी ही रखती है जो सूखी रहती है और आसानी से हम ले जा सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब हम आलू की बातें तो हम कर रहे हैं, उससे चटपटे व्यंजन भी, लेकिन हो सकता है कि हमारे कई साथी हो जिन्हें कुछ मीठी चीज़ें भी पसंद हो, जैसे बर्फ़ी वगैरह, इस तरह की चीज़ें भी तो उन्हें पसंद आती है, या फिर आलू से भी हम आलू की बर्फ़ी भी बना सकते हैं। कई साथियों ने हमारे लिखा है कि आलू का हलवा बनाया जाता है, आलू की बर्फ़ी भी बनती है। तो चलिए एक गाना सुन लेते हैं, बर्फ़ी फिल्म का, स्वानंद किरकिरे के बोल, प्रीतम का संगीत है, आवाज़ किसकी है आप

मोहित चौहान की आवाज़ में ये गाना आपने सुना। हमारे एक साथी की बात है कि आज अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस है। आलू को हम सब्जियों का राजा कह सकते हैं, एक ऐसी सब्जी जिसके सहारे हम कोई भी उत्सव मना सकते हैं, कोई भी त्यौहार की शान बढ़ा सकते हैं। सब्जियों को खाने में मुंह बिगाड़ने वाले बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। गोभी आलू, मटर आलू, परवल आलू, कटहल आलू, टमाटर आलू, किसी भी कॉम्बिनेशन में सुपर हिट है आलू। समोसे में आलू, पराठे में आलू, पकौड़े में आलू। और एक साथी ने हमारी ये लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र ने आलू के महत्व को समझाने के लिए हर साल 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में घोषित किया है। इस साल की थीम है, जहां आलू उगते हैं वहां आजीविका फलती फूलती है। और ये थीम ग्रामीण अर्थव्यवस्था और छोटे किसानों को सहारा देने में आलू की भूमिका को रेखांकित करती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि माँ के हाथ के बने आलू के पराठों का स्वाद अब कहाँ मिलेगा, आज आपने माँ की याद दिला दी। और एक साथी लिख रहे हैं कि भंडार में आलू पूड़ी खाने का स्वाद तो खाने वाला ही जानता है। और एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि मेरी बेटी पूना के एक घर में रहकर पढ़ रही थी।

मैं कभी कभार 10-15 दिन के लिए जाती थी। उसकी सहेलियों को बहुत आलू के भरवा पराठे और दही का रायता बनाकर खिलाया था। आए दिन यही फरमाइश उनकी होती थी। चलिए धन्यवाद आपका। मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी इस फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं और देव कोहली के बोल हैं, अनु मलिक का इसमें संगीत है।

मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी फिल्म का ये गाना हमने सुना, और सचमुच जब समोसे की बात आती है तो ज़्यादातर उसमें आलू ही डाल करके बनाया जाता है। आलू के बगैर समोसे का मज़ा हमें तो नहीं आता है, हो सकता है बहुत सारे साथी हमारे इस बात से इत्तेफाक रखते हो। एक साथी हमारे लिख रहे हैं, उन्होंने आलू बोने का सबसे अच्छा तरीका जो है उसके बारे में बहुत विस्तृत विवरण लिखा है, पूरा तो हम आपको नहीं सुनाएंगे, लेकिन हाँ अगर आप चाहें तो ये बात आपके काम की हो सकती है कि उन्होंने लिखा है कि सबसे अच्छा तरीका यह कि खेत में 3-4 बार गहरी जुताई करके और मिट्टी को भुरभुरा और समतल बना ले, बुवाई से पहले बीजों को फफूंदनाशक जैसे कि कार्बेंडाजिम से उपचारित करें और बीज को मेड़ों पर 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई में रोपे, जहां लाइन से लाइन की दूरी सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी इतने सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बारे में बहुत विस्तृत विवरण इन्होंने लिखा है जो हो सकता है कि आपके काम का हो। एक साथी

ये भी लिख रहे हैं कि एक ही इबारत रहती है, ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसे किस नज़रिए से देखते हैं। किसी को इसमें बहुत कुछ अच्छा नज़र आता है और किसी को इसमें कुछ बिल्कुल नहीं भाता है। तो ये हमारी सोच पर निर्भर करता है कि अब गिलास पानी से आधा भरा है, इसे आधा भरा कहें या आधा खाली कहें, ये हमारी सोच पर है। वैसे सबसे जो अच्छी बात यह है कि इससे हमें बहुत सारे गानों के बारे में जानकारी मिलती। चलिए अब बात ऐसी है कि कई बार ऐसा होता है कि हमने अपने जीवन में वो चीज़ें खाई होती है और हमें अच्छी लगती है, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है जब हमें कोई बीमारी हो जाती है और डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, आपको आलू नहीं खाना है या मीठा नहीं खाना है या तला हुआ नहीं खाना है, और तब हमारे दिल में एक ही बात आती है कि हाय रे वो दिन क्यों ना आए कि जब आलू की इतनी स्वादिष्ट रेसिपी बनती। चलिए अनुराधा फिल्म का गाना सुनते हैं।

और अब एक बड़ी सुंदर बात, आलू का रस चेहरे पर लगाने से ग्लो आता है, ऑलराउंडर है आलू। ये हमारी एक साथी ने बात लिखी है और इसी के साथ कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार। आज की त्रिवेणी में बातें होंगी आशा की, उम्मीद की। आशा क्या है? वैसे तो इसे परिभाषित करना या इसका वर्णन करना कठिन है, लेकिन आशा को हम तब पहचानते हैं जब हम इसे महसूस करते हैं और जब हमें इसकी जरूरत होती है। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि आशा है अपने लिए एक बेहतर भविष्य की कल्पना करना और उसे पाने की कोशिश करना। हम सभी के जीवन में आशा का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि ये

निराशा से बचाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये एक सकारात्मक भावना है जो विपरीत परिस्थितियों में भी हमें जीवन का अर्थ, उद्देश्य और धैर्य प्रदान करती है। आशा कठिन समय में मानसिक शक्ति बनकर हमें लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। आशा एक भावना है और सोचने का एक तरीका भी। कई बार जब हम हर तरफ से थक हार चुके होते हैं, हमें आशा की कहीं कोई एक किरण कहीं ना कहीं से किसी बाहरी कारण से भी मिलती है, तब हम फिर से ऊर्जा से भर जाते हैं। मुश्किल हालातों से उबरने में आशा की ज्योत जलाए रखना बेहद जरूरी है। आशा को हमें एक इच्छा शक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमें मंजिल तक पहुंचने में मदद करती है। आशा एक भावना है, एक मानसिकता है, जिसके जरिए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिर चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन और प्रतिकूल क्यों ना हो, आशा एक विश्वास ही तो है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा।

आशा का अर्थ है आगे बढ़ते रहना, हिम्मत बनाए रखना और जीवन के अर्थ के साथ हर मुश्किल से उबरने का रास्ता खोजना। आशा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन के बहुत कठिन समय में भी सहारा दे सकती है। यदि हम किसी विपरीत परिस्थितियों में भी आशा का अनुभव करते हैं तो इसका मतलब यही है कि हम सकारात्मक निर्णय लेने की अधिक संभावना रखते हैं। कभी कभी हमारे दिलो दिमाग पर भय और निराशा आशा से कहीं अधिक आसानी से हावी हो जाती है। ये डर हमारे आशा के भाव को कमजोर करने लगते हैं। हालांकि हम अक्सर आशा को व्यक्तिगत स्तर पर देखते हैं, लेकिन आशा को सामूहिक रूप से भी अनुभव किया जा सकता है। राष्ट्र पर जब कोई संकट का समय आता है तब आशा और विश्वास का दामन थामे रहना आगे बढ़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है। आशा हमें भविष्य के लिए बेहतर कल्पना करने और

दोस्तों, विपरीत परिस्थितियों का सामना करते समय यदि मन में आशा हो तो मस्तिष्क अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करता है और हम भी बेहतर महसूस करते हैं। आगे बढ़ते रहने की ये इच्छा शक्ति, जिसे हम उम्मीद या आशा कहते हैं, ये जीवन को गति प्रदान करती है। इसीलिए आशा को बनाए रखने पर बल दिया जाता है। आशा रखने से मन मस्तिष्क बेहतर ढंग से कार्य करता है और हम भी बेहतर महसूस करते हैं। लेकिन याद रखिए कि आशा अपने आप नहीं मिलती, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है और इसे बनाए रखने के लिए हमें स्वयं से परे भी जुड़ना पड़ता है। आशा स्वास्थ्य के लिए एक शक्तिशाली औषधि भी हो सकती है। इसीलिए चाहे हम किसी भी कठिनाई से गुजर रहे हों या चुनौतियों से जूझ रहे हों, पहले से कहीं अधिक आशा की जरूरत है ताकि हम मजबूती से टिके रह सकें। आशा की एक किरण जीवन की मुश्किलों, असफलताओं और बीमारियों से लड़ने की शक्ति देती है, जिससे व्यक्ति हार नहीं मानता। आशावादी दृष्टिकोण से जीवन में बदलाव आते हैं और हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। आशा हमें जीवन का उद्देश्य खोजने में मदद करती है। आशा ही जीवन की वो धुरी है जिस पर सुखद भविष्य की कल्पना टिकी रहती है। ये हमें विश्वास दिलाती है कि परिस्थितियां सुधर सकती हैं और आगे चलकर सब ठीक हो सकता है।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन आउल लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा, अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की

0: सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
2: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री डिलेन एसेलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
3: म्यांमार के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्ट मंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
0: राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ऊ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
4: आज डी के शिव कुमार राज्यपाल थावर चंद गहलोत से मिले। स्वेरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के

0: बारे में चर्चा करने वैलोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण एसआईआर अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि उसके साझेदार टीसीएस की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की शुरुआत देरी से हुई। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3:00 के बजाय 4:00 से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बौद्धिक खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, स्मारक डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किए, पुरस्कार और नियुक्ति पत्र वितरित किए तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमरीका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद है। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा

था कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक को स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन

0: बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4,00,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
1: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ यह सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिन कर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंधु 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिंट नाउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आशिक फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अपना बना के देखो ये फिल्म का नाम है। आशा भोंसले और साथियों की आवाजें, SH बिहारी की बोल, संगीत है रवि का।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आजाद फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, श्री रामचंद्र का संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: बाजे घुंघरू फिल्म का ये गाना आपने सुना, मोहम्मद रफी, सबिता बनर्जी, सीता और साथियों की आवाजों में, शिवराज श्रीवास्तव का लिखा हुआ गाना, धनी राम का संगीत। अगला गाना बात एक रात की, इस फिल्म का गाना हेमंत कुमार और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है SD बर्मन का।
1: लगता है कुछ ऐसा

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवाते हैं, बगदाद की रातें। इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, प्रेम धवन के बोल, संगीत है डी दिलीप का।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, बनारसी ठग इस फिल्म का ये गाना है। लता मंगेशकर की आवाज, प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, संगीत है इकबाल कुरैशी का।

इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। इस कार्यक्रम में हम आपको वो गीत सुनवाते हैं जिसमें हमारे श्रोताओं ने पत्र लिख करके हमें उस गाने को सुनने की फरमाइश भेजी है। तो पहला जो गीत है ये दिल फिल्म का गाना उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में समीर का लिखा हुआ गाना आनंद मिलिंद का संगीत है। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है शमसुद्दीन की बाड़ी पूरा बीकानेर राजस्थान से। ये पत्र आया है हमारे पास मन्नत खान, समारा खान, मोहम्मद अनजान, सैफ अली, कमाल खान, मरियम बानो और मोहम्मद अली। आपकी पसंद का ये गाना सुनिए।

गीत कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये अपराध फिल्म का गाना किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाजों में इंदिवर के बोल हैं, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है ग्राम हीवरखेड़ तहसील तेल्हारा जिला अकोला महाराष्ट्र से विनोद कुमार अड़िया, भारती अड़िया, पारस पायल श्वेता और उर्वी बेन अड़िया ने।

0: जिला अहमदनगर बालम टाकली से नंद कुमार अदवंत, उर्मिला नीलेश मयूरी, कल्पेश और संगीता अदवंत। आपने जिस गाने की फरमाइश की है वो है मर्यादा फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने, धुन बनाई कल्याण जी आनंद जी ने।
1: तू भी आ जा के आ गई रुत।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला जो गीत है ये खानदान फिल्म का गाना आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में है। राजेंद्र कृष्ण के बोल है, संगीत रवि का। ये गीत सुनना चाहते हैं रामलीला मैदान सचेंडी से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी, मनु मनी, मीत, शिवांश, अनूप सिंह और अभिजीत सिंह। आपकी पसंद का ये गाना सुनिए।

अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कच्चे धागे फिल्म का गाना। 1999 की फिल्म है ये कच्चे धागे। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजें, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, नुसरत फतेह अली खान का संगीत है। इस गाने को सुनने के लिए फरमाइश हमारे जिन श्रोताओं ने लिख भेजी है वो हैं गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता, गोलू, नीलू, विशाल राज और वंशराज। आपकी पसंद का कच्चे धागे फिल्म का ये गाना।

मन चाहे गीत कार्यक्रम में अब जिन श्रोताओं के पसंद पर हम ये गीत सुनवा रहे हैं वो हैं रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया। आप सुनना चाहते हैं धर्मात्मा फिल्म का गाना मुकेश और कंचन की आवाजों में। इंदिवर के बोल हैं संगीत कल्याण जी आनंद जी का। आइए सुनते हैं धर्मात्मा फिल्म का गाना।

प्रस्तुत है नाट्य तरंग। नाट्य तरंग कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का पहला भाग। ये है मलयालम नाटक अग्निवलयम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सी एल जोस, रूपांतरकार पी जी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। सुनिए इस नाटक का पहला भाग।

0: हेलो
1: जी,
0: इस तरह टकटकी लगाकर आकाश की ओर क्या देख रही हो?
1: आप मेरी ओर क्यों देख रहे हैं?
0: ऐसे ही।
1: मैं भी बस ऐसे ही बाहर देख रही हूँ।
0: क्या नाम है आपका? मेरा मतलब है आप कौन हैं?
1: आप कौन हैं?
0: मैं जेल का अध्ययन करने आया हूँ।
1: और मैं जेल में सड़ने आई हूँ।
0: ये तो देखते ही मालूम हो गया था।
1: लेकिन आपको देखकर तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं हुआ। आप कौन हैं?
0: मैं एक नाटककार हूँ। मैंने मलयालम भाषा में कई नाटक लिखे। इस बार मैंने जेल की पृष्ठभूमि पर नाटक लिखने का निश्चय किया है। इसी सिलसिले में आपके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ।
1: आप दूसरे कैदियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं?
0: कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं।

0: मेरा नाम डेजी है।
1: डेजी?
0: क्या हुआ?
1: मुझे मुझे कुछ याद आ रहा है।
0: क्या?
1: कुछ महीने पहले मैंने अखबार में पढ़ा था डेजी नाम की युवती को सेशंस जज ने सजा दी थी। तुम आप वही डेजी है ना?
0: हाँ।
1: आपने हाई कोर्ट में अपील नहीं की?
0: अपील तभी की जाती है जब सजा पाने वाले को कोई शिकायत हो।
1: आपकी बातें बड़ी विचित्र लग रही हैं।
0: मेरी कहानी भी बड़ी विचित्र है।
1: क्या आप इस सब के लिए अपने को दोषी मानती हैं?
0: दोष परिस्थितियों का है या मेरे भाग्य का जिसने मुझे उन परिस्थितियों में डाल दिया, कह नहीं सकती।
1: आपकी कहानी जानने के लिए बहुत उत्सुक हो उठा हूं। क्या आप?
0: हाँ, मैं सुनाऊंगी आपको अपनी कहानी। एक साधारण देहात के गरीब घर में मेरा जन्म हुआ। मैं छोटी ही थी कि मेरे पिता चल बसे। खेतों में मजूरी करके और इधर उधर के छोटे मोटे काम करके मेरी माँ ने मुझे पाला पोसा, बड़ किया। हायर सेकेंडरी की परीक्षा मैंने फर्स्ट डिवीजन में पास की। मैं चाहती थी कि पढ़ाई जारी रखूं और कोई डिग्री या डिप्लोमा ले लूं। संयोग से तभी एक वैभव संपन्न युवक बेनी से मेरा परिचय हुआ। उन्होंने मुझसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। बेनी देखने में सुंदर नहीं थे, रंग भी उनका काला था, किंतु मन से वो बहुत सुंदर थे। हम दोनों का विवाह हो गया। बेनी ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया कि विधाता को जैसे मेरे सौभाग्य से ईर्ष्या होने लगी। एक दिन सहसा उनकी छाती में एक विचित्र ही प्रकार का दर्द उठा और वो बेहोश होकर गिर पड़े। जब उन्हें इस तरह के 2-3 अटैक और हुए तो उन्हें मर्सी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया।
2: ओह, डॉक्टर रामदास। गुड मॉर्निंग डॉक्टर।
3: गुड मॉर्निंग बेनी। गुड मॉर्निंग।
2: कौवी तबीयत कैसी है?
3: बीच बीच में कभी कभी सीने में थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन थकान बहुत है डॉक्टर।
2: चिंता की कोई बात नहीं। अब डॉक्टर लॉरेंस तुम्हें एग्जामिन करेंगे। वो आज छुट्टी से वापस आ रहे हैं।
3: क्या ऑपरेशन होगा डॉक्टर?
2: क्यों, ऑपरेशन से डर लगता है क्या?
3: नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था।
2: क्या करने से तुम्हें आराम होगा ये निर्णय वही लेंगे। उन्होंने विदेश में शिक्षा पाई है और सर्जरी में स्पेशलाइजेशन किया है। अरे ये क्या, गिटार? गुड, कितना मधुर स्वर है इसका। बेनी, इसे बजाना आता है क्या?
3: डॉक्टर, किसी गुरु से तो शिक्षा नहीं ली है, फिर भी थोड़ा बहुत बजा लेता हूं।
2: बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है।
3: एक तरह से इसमें मेरी जान बसती है।
2: अच्छा,
3: अपनी पत्नी के बाद मैं इसी को सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। पत्नी जीवन में प्रेम भर देती है और गिटार मधुरता।
2: तब तो दोनों ही दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हुए, क्यों?
4: नमस्ते डॉक्टर।
2: ओ नमस्ते,
3: कहाँ गई थी तुम?
4: सुना था कि डॉक्टर छुट्टी के बाद लौट आए हैं।
3: अच्छा, तो तुम जल्दी से उनका पता लगाने गई थी।
2: मेरी पत्नी जो ठहरी उत्कंठा हो सकती है। डेजी, ये टॉनिक किसके लिए लाई?
3: हम दोनों के लिए।
4: नहीं डॉक्टर, सिर्फ इनके लिए।
3: इसकी बात पर ध्यान ना दीजिए डॉक्टर, खाएंगे तो हम दोनों एक साथ ही खाएंगे, वरना।
2: अच्छा अच्छा, मैं जरा वार्ड हुआ हूं, फिर मिलेंगे।
3: अच्छा,
4: तुमने डॉक्टर रामदास को ये सब क्यों बताया कि हम एक साथ खाते हैं? हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं।
3: इसमें हर्ज क्या है? सच तो यही है ना?
4: सच होने पर भी अपनी बातों को दूसरों के सामने इस तरह खुल्लम खुल्ला क्यों कहते हो? मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी।
3: इसमें शर्म का है कि क्या मुझे ये कहना चाहिए था कि हम दोनों में झगड़ा रहता है? देखो डेजी, सत्य किसी के सामने किसी भी समय कहा जा सकता है।
4: अच्छा।

तब तो एक काम करें, इस कमरे के बाहर एक बोर्ड लटका दें, इस कमरे में रहने वाले पति पत्नी एक दूसरे के गहरे प्रेम में डूबे हुए हैं।

0: डेजी, कल डॉक्टर रामदास ने हमसे एक सवाल पूछा था, तुम्हें ख्याल है?
1: क्या?
0: हमारे बच्चे हैं या नहीं?
1: हाँ, ख्याल है।
0: मुझे याद है, ये सवाल सुनते ही तुम उदास हो गई थी।
1: नहीं तो?
0: नहीं?
1: हाँ, शायद। बेनी, बेनी तुम अच्छे हो जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। बेनी,
0: तुम्हें लगता है मैं ठीक हो जाऊँ?
1: हाँ बेनी, बिल्कुल ठीक हो जाओगे मेरे अच्छे बेनी।
0: ए, डेज़ी, इधर आओ ना।
1: बेनी, ये अस्पताल है।
0: तो क्या हुआ, आओ ना।
1: बेनी, बेनी, बेनी, क्या हुआ?
0: कुछ दर्द सा हो रहा है।
1: मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। ले जाओ बेनी, ले जाओ ना तुम। अरे, तुम्हारे तो चेहरे पर पसीना आ रहा है।
0: नहीं नहीं नहीं, फिक्र मत करो, जरा सी गिरी ना से चिंता की कोई बात नहीं।
1: नहीं नहीं, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ।
0: ठीक जी।
1: बेनी, एक बात बताओ।
0: पूछो।
1: तुम्हें सबसे ज्यादा कौन अच्छा लगता है, गिटार या मैं?
0: बताऊं? दोनों।
1: मेरा मतलब है कि तुम्हें तुम्हें सबसे अधिक सुख किसमें मिलता है?
0: तुम्हें निहारते हुए गिटार बजाने में।
2: कलाकार भी
0: हैं? कलाकार तो नहीं, लेकिन कला प्रेमी रोगी हूँ। आप
1: डॉक्टर लॉरेंस है ना?
2: जी हाँ, मैं डॉक्टर लॉरेंस हूँ। तुम बेनी हो ना?
0: हाँ डॉक्टर, तुम लॉरेंस हो ना?
2: हाँ, मैं लॉरेंस हूँ भाई।
0: माय गुडनेस, तुमसे अचानक मिलकर मुझे कितनी खुशी हो रही है बता नहीं सकता।
2: और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है।
0: मैं तो तुम्हें पहचान नहीं सका।
2: और मैं ही तुम्हें कहाँ पहचान पाया बेनी।
0: कुछ भी हो, तुम यहाँ अस्पताल में मेरे डॉक्टर के रूप में, मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैंने सुना कि अमेरिका से एक फेमस डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर लॉरेंस, तो सोचा कि जरूर कोई कॉम्पिटेंट डॉक्टर होंगे।
2: तो क्या मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ?
0: मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे वही पुराने दोस्त लॉरेंस हो। सुनो, हमें एक दूसरे से मिले कितने साल हुए होंगे?
2: यही कोई 14 या 15 साल।
0: और तुम मुझे देखते ही पहचान गए, खास तौर पर इस हालत में।
2: Exactly.
0: गजब की याददाश्त है तुम्हारी। अरे हाँ, मैंने परिचय तो करवाया ही नहीं। लॉरेंस, मेरी पत्नी डेज़ी।
2: नमस्ते। नमस्ते, तो मैं देखते ही समझ गया था
1: आप आ गए हैं, तो लगता है
2: जैसे। सब वो बातें रहने दीजिए अब। बेनी, पहले बताओ तुम्हें तकलीफ क्या है?
0: चेस्ट में पेन है।
2: हाँ,
0: दिल की तरफ भी पेन है।
2: वैसे
0: सांस लेने में अक्सर बड़ा कष्ट होता है।
1: ये ठीक से नहीं बताते। बस यही कह देते इन्हें कोई तकलीफ नहीं, इनकी आदत।
2: हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, स्कूल में हम 3 साल एक साथ पढ़े हैं। डेजी
1: जी,
2: मैं इन्हें ठीक करने में कोई कसर नहीं रखूंगा, जो भी जरूरी होगा जरूर करूंगा।
1: थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, आप इनकी बीमारी के बारे में क्या सोचते हैं?
0: डेजी, मेरे सारे रोगों की लिस्ट तुम ही इन्हें दे दो। लॉरेंस, मैंने अपने को डेजी के सुपुर्द कर दिया है।
2: बेनी, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारा कोई तो है जो तुम्हारी हर बात की तरफ ध्यान देता है।
0: हाँ, हूँ सौभाग्यशाली, लेकिन इस 24 घंटे की देखभाल से मेरा दम घुट रहा है।
2: खुद सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इस पर देखभाल से भी दम घुटने लगे तो। हाँ। खैर, जो भी हो भाई, बेनी तुम्हारा कंप्लीट चेकअप करना होगा। अभी तो मैं वार्ड में जा रहा हूं, बाद में आऊंगा। सही हो गया ना?
0: बाय।
1: भगवान की बड़ी कृपा है जो डॉक्टर लॉरेंस को यहाँ भेज दिया।
0: ये फ्लास्क क्यों ले रखा है?
1: अरे बाबा, मैं तो पानी गर्म करने को रखाई थी, शायद गर्म हो गया होगा। मैं अभी जाकर ले।

0: सो रहे हैं क्या?
1: अरे गिरिजा, तुम?
0: आप यहाँ?
1: हाँ, मैं एक बीमार की हैसियत से आया हूँ। सीने में और दिल में दर्द है।
0: दिल में दर्द? जिसके दिल ही नहीं उसके दिल में दर्द?
1: जरा शिष्टता से बात करो।
0: जो शिष्टता का मतलब ही नहीं समझता वो कह रहा है शिष्टता से बात करो।
1: जरा आहिस्ता बोलो।
0: मुझे पहचान लिया आपने?
1: हाँ, पहचाना ही नहीं, इस दौरान बीच बीच में तुम्हें याद भी किया है।
0: अब भी मन में विष भरा है, दूषित विचारों का विष।
1: तुम ऐसा सोचती हो?
0: सोचती नहीं बल्कि अनुभव से कहती हूँ। मुझे देख पाएंगे इसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्यों?
1: हाँ, ये कल्पना नहीं की थी कि तुम्हें नर्स की ड्रेस में देखूंगा।
0: हाँ, आपने तो मुझे किसी हीन वेश में देखने की कल्पना की होगी। इस कदर गिर तो नहीं गई हूँ?
1: ये तो बहुत ही अच्छी बात है गिरिजा।
0: मैं किसी का आशीर्वाद नहीं चाहती।
1: क्या?
0: आपके पास खड़ा रहना तक मुझे अच्छा नहीं लग रहा।
1: मैं तुम्हारा पेशेंट हूँ गिरिजा।
0: ये तो आज की बात है, उन दिनों तो आप एक चेहरर थे। चेहरर?
1: मेरी समझ में नहीं आ रहा है आखिर बात क्या है।
0: आपको ये कहते हुए शर्म नहीं आती?
1: तमीज से बात करो। मैंने ऐसा किया क्या है जो तुम ये सब कह रही हो?
0: अच्छा, 4 साल पहले उस दिन जो कुछ हुआ था आपको याद नहीं? मेरे पिताजी बीमार पड़े थे, उनके प्राण बचाने का कोई उपाय नहीं था। मैं नौकरी की तलाश में आपकी संस्था में गई तो आपके दुष्ट मैनेजर ने मुझे अपनी वासना का शिकार बनाने की कोशिश की। मैंने बाघिन की तरह उसका सामना किया, मेरे कपड़े फट गए लेकिन वो भाग गया। उसके बाद कमरे में घुस आए आप, लेकिन मैं आपके चंगुल से भी भाग निकली।
1: देखो, मेरी पत्नी सुन रही होगी, प्लीज प्लीज चुप हो जाओ।
0: हो तो मुझे आपकी पत्नी से डरना होगा।
1: प्लीज प्लीज मुझे माफ करो, इस समय कुछ ना कहो।
2: उस दिन मैंने गिरजा और बेनी की बात सुन ली थी लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। उस रात बेनी कुछ अस्वस्थ रही। दूसरे दिन डॉक्टर लॉरेंस ने बेनी का कंप्लीट चेकअप किया। 2 तरह के एक्सरे लिए, ईसीजी लिए, ब्लड और यूरिन टेस्ट हुए। रिजल्ट आने के बाद ही वो कुछ बता सकेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। उन दिनों जब भी मुझे फुर्सत मिलती मैं पास के चर्च में जाकर बेनी की जल्दी ठीक हो जाने के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन मैं चर्च से लौटी तो सुना बेनी और गिरजा बातें कर रहे थे।
0: मुझे कुछ नहीं कहना है।
1: लेकिन मुझे तो कहना है, कल जहां बात रुक गई थी मैं वहीं से शुरू करता हूं।
0: मैं कुछ सुनना नहीं चाहता।
1: तुम्हें सुनना पड़ेगा। सुनो, तुम जब आई थी मैं ऑफिस में नहीं था। तुम्हारे साथ जो ज्यादती हुई वो मुझे मालूम है। तुम्हें समझा बुझा कर शांत करने और तुमसे माफी मांगने के लिए ही मैं दौड़ा दौड़ा आया था, लेकिन तुम न जाने क्या समझी और मेरी बात सुने बिना चली गई। मैंने आवाज दी मगर तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं। तुम कौन हो ये मैं तुम्हारी एप्लीकेशन पढ़कर ही जान गया था।
0: आप चाहते हैं मैं इन सब बातों पर विश्वास करूं?
1: नहीं, मेरी ओर से कोई ऐसा आग्रह नहीं है। मैंने तुम्हें सच बता दिया है, बस मेरे लिए इतना ही काफी है।
0: आप इतने ही सज्जन और भले मानस होते तो मुझे बुलाकर नौकरी ही नहीं दिला देते।
1: हाँ, लेकिन उस बीच कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं हुई कि मुझे इसका अवसर ही नहीं मिला। उसी दिन मैनेजर को नौकरी से हटा दिया गया, बाद में मैंने वो ऑफिस ही बंद कर दिया। आज ना वो संस्था है ना वो ऑफिस।
0: अच्छा?
1: हाँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पिता ऑपरेशन के बाद भी कई दिन अस्पताल में रहे थे या नहीं?
0: हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ?
1: कितने रुपए खर्च हुए?
0: करीब 600, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति पर तरस खाकर अस्पताल वालों ने वो रकम माफ कर दी थी।
1: माफ नहीं की थी गिरिजा, सारी रकम मैंने चुकाई थी। तुम्हें बिना सूचना दिए चेक भेज दिया था। चाहो तो अब भी पता लगा सकते हो, डिस्चार्ज होकर बाहर जाते वक्त तुम्हारे पिता के हाथ रुपए भी मैंने रखवा दिए थे।
0: क्या?
1: हाँ, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था। तुम्हारी वेदना देखकर मेरा मन दुखी हो उठा,

0: मुझे लगा कि तुम्हारी इन मुसीबतों के लिए मैं भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूं, इसलिए मैंने ये सब किया। फिर एक दिन सुना तुम और तुम्हारे पिता दोनों ही कहीं चले गए। उसके बाद कल तुम्हें देखा।
1: मैं ये सब नहीं जान पाई, गलती हो गई, मुझे माफ करें।
0: माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं गिरिजा, मैंने जो कुछ भी किया वो अपना कर्तव्य समझकर किया। चेहरा कुरूप होने पर भी मेरा मन कुरूप नहीं है।
2: गिरिजा चली गई, लेकिन उनकी बातें सुनकर मेरे मन में बेनी के प्रति कितनी श्रद्धा, कितना आदर, कितना प्यार और उमड़ आया, कह नहीं सकती। दूसरे दिन डॉक्टर लॉरेंस जांच की रिपोर्ट लेकर आए। क्या हुआ डॉक्टर? टेस्ट में क्या निकला? कोई खास बात?
3: वो बेनी कहाँ है?
2: चेरिन के पास गए हैं, अभी आते होंगे। डॉक्टर, सारी रिपोर्ट्स आ गई ना?
3: हाँ डेजी, सारी रिपोर्ट्स आ गई।
2: कोई खास बात बताइए ना डॉक्टर।
3: डेजी, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। बेनी के हार्ट के एक वॉल्व में गड़बड़ है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर वॉल्व बंद हो गया तो उसकी सांस रुक जाएगी और ऐसी इमरजेंसी किसी वक्त उठ सकती है। जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना होगा इसी हफ्ते में। हाँ डेजी प्लीज, बेनी से कुछ नहीं कहना, मेजर ऑपरेशन है, लेकिन मैं अपनी पूरी जान लड़ा दूंगा।
2: डॉक्टर, डॉक्टर किसी तरह मेरे बेनी को बचा लीजिए डॉक्टर, उनके बिना।
3: अरे भाई, अभी तो ऑपरेशन हुआ भी नहीं और तुमने चिंता करनी शुरू कर दी।
2: मुझे बहुत डर लग रहा है डॉक्टर।
3: डेजी, इस तरह अधीर होने से कैसे काम चलेगा? तुम्हें तो बेनी को आत्मविश्वास और सहारा देना है। अब तुम इस तरह हिम्मत हारोगे तो कैसे होगा? तुम्हें तो मुझे सब बात सच सच बतानी ही थी।
2: नहीं, मुझ में ये सुनने का साहस नहीं है डॉक्टर।
3: डेजी धीरज रखो, डेजी धीरज रखो, बेनी इस समय आ गए तो ये सब देखकर दुखी हो जाएंगे। अरे लो, बेनी आ रहे हैं।
4: आइए आइए, कहाँ पे जाना?
5: ओ डॉक्टर
4: भाई, जब भी डॉक्टर पेशेंट को देखने आता है पेशेंट बेड पर नहीं मिलता। इस पैकेट में क्या?
0: बता दूंगा, पहले ये बताओ मेरी रिपोर्ट्स देखकर तुमने क्या डायग्नोस किया?
4: भाई रिपोर्ट सब ठीक है, घबराने कोई बात नहीं है। हाँ, हो सकता है एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़े।
0: कोई गड़बड़ है डॉक्टर?
4: अरे भाई गड़बड़ कैसी, डोंट वरी, मैं तो हूँ, आई विल डू माई बेस्ट।
0: लॉरेंस, ये बात इस डेजी से कहते हो, इसी को ज्यादा डर लग रहा है। डेजी, अब तुम्हारी परेशानी दूर हुई ना?
4: और हाँ बेनी, एक बात और, इस तरह कमरा छोड़कर बाहर जाना ठीक नहीं है, आई डोंट लाइक इट। अच्छा तो मैं चलता हूं अब, सी यू अगेन, बाय।
2: तुम तो चेरियन से मिलने गए थे बेनी, ये पैकेट कहां से उठा लाए?
0: तुम्हारे लिए एक चीज है।
2: अच्छा, देखो तो।
0: लो, देख लो।
2: साड़ी, ये अब काहे को? और यहां
0: मेरी ओर से प्रेजेंट।
2: प्रेजेंट?
0: हाँ, तुम्हें याद है आज तुम्हारा जन्मदिन है, भूल गई? लो, मेरी डेजी के लिए जन्मदिन का प्रेजेंट है। ए? तुम उदास नजरों से मुझे घूर क्यों रही हो? लो ये रख लो।
2: इतना स्नेह जताकर तुम क्यों मेरा दम घोट रहे हो? बेनी, हमें एक दूसरे के लिए इतना अधीर नहीं होना चाहिए।
0: हाँ, ऐसा मुझे भी लग रहा है, तुम्हारे साथ मेरा विवाह नहीं होना चाहिए था, तुम्हें इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए था। खैर, साड़ी पसंद आई?
2: तुम्हें अस्पताल में साड़ी नहीं लानी चाहिए थी।
0: अब अगर मैं और मौका ना पाऊं तो?

0: 아이, 치, 좀 통통거린 나 삼아줘. 도망가 레스 이러이나 또 별 잘게 하감. 프레젠트 그러네 레기? 나이 나이 나이. 로맛. 데코 아바가 어 자다 로기? 또 마 로 자운가. 볼로 로 자? 나이 나이 나. 알자. 또 별 하스도. 데코. 예예예. 에스에스.
1: 아니, क्या हुआ आपको?
0: इधर
1: ले जाइए, ले जाइए ना। बेनी, बेनी, बेनी, डॉक्टर, डॉक्टर!
2: कुछ ही मिनटों के अंदर डॉक्टर लॉरेंस दौड़ कर आ गए। दूसरे ही दिन बेनी का मेजर ऑपरेशन हुआ। भगवान की कृपा से ऑपरेशन सफल रहा। गिरजा की निष्ठापूर्ण सेवा ने मुझे अचरज में डाल दिया। जब ब्लड का स्टॉक खत्म हो गया तो उस नाजुक परिस्थिति में गिरजा ने अपना खून दिया। बेनी धीरे धीरे बोलने चालने लगा तो मेरा मन खुशी से खिल उठा, लेकिन मेरा सुख क्षण भंगुर था। सहसा सब खत्म हो गया। चौथे दिन मेरा बेनी स्वर्ग से डर गया।
3: ओह नो।
2: सदा के लिए मुझसे बिछड़ गया।
3: आखिर ये हुआ कैसे?
2: ऑपरेशन के बाद एक दिन बेनी के हृदय में दर्द उठा, सांस लेने में बड़ा कष्ट होने लगा। फौरन डॉक्टर के पास आदमी दौड़ाया, लेकिन दुर्भाग्य से डॉक्टर लॉरेंस घर पर नहीं मिले। डॉक्टर आशीष दौड़े आए, लेकिन उस वक्त तक बेनी के प्राण फकीर उड़ चुके थे। टूटे हुए पेड़ की तरह मैं जमीन पर गिर पड़ी और फिर मुझे किसी बात की सुध नहीं रही। बाद मुझे होश आया, मैं बीमार पड़ गई। जिस कमरे को मेरे पति खाली कर गए थे मैं उसी में भर्ती हो गई। 2 महीने बीत गए। एक दिन नर्स गिरजा मेरे पास आई।
4: डेजी, ये सब क्या है? छोटे बच्चों की तरह?
5: ये दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता गिरजा।
4: दुख तो मुझे भी है डेजी, मैं भी उनको नहीं भूल सकती। उन्होंने मुझ पर बहुत उपकार किया था।
5: मैं अब क्यों जीवित हूँ गिरजा? चिराग बुझ गया, रोशनी खत्म हो गई। मेरे सामने अब अंधेरा ही अंधेरा है।
4: ना डेजी, इस अंधेरे से तुम्हें बाहर निकलना ही होगा। उठो, हाथ मुंह धो लो, हमेशा रोना धोना अच्छा नहीं। चलो देखो, देखो इससे बेनी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी।
5: गिरजा
4: डेजी, अच्छा अब मैं चलती हूँ, ड्यूटी खत्म होने पर आऊंगी, तब हम देर तक बैठ कर बातें करेंगे।
2: इस तरह कुछ महीने और बीत गए। डॉक्टर लॉरेंस मेरी कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहते थे। बेनी के प्रति वे बहुत स्नेह प्रदर्शित करते थे। और एक दिन सब लोगों को आश्चर्य में डालकर हम, मैं और लॉरेंस विवाह सूत्र में बंध गए।
3: अच्छा?
2: लेकिन इस सब के बावजूद भी बेनी मेरे अंदर जीवित रहे। उनका प्रिय गिटार मैंने संभाल कर रख लिया था। एक दिन की बात है,

0: आप सुन रहे थे नाटक अग्निचक्र का पहला भाग। ये था मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। ये थी केंद्रीय नाटक एकांश की प्रस्तुति। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
4: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
5: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
4: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: थी धन्य जवानी।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं अभिनेत्री साधना सिंह, यानी नदिया के पार की गुंजा।
2: जोगी जी प्रेम भरो लगा हमको, कोई इसकी दवा यदि हो तो कहो।
1: इनसे बातचीत कर रही है विधि जैन।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हमेशा आपके लिए कोई ऐसे व्यक्तित्व को लेकर आती है जो आपसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ है, हमारे श्रोता जिन्हें बहुत पसंद करते हैं। और आज एक ऐसी अभिनेत्री हमारे समक्ष हैं जिनको देखकर न जाने कितने दिलों ने ये सोचा होगा कि काश हम भी ऐसे ही होते, या हमारे परिवार की बेटियां, बहुएं सभी ऐसी ही होती। हर कोई ये विचार कर रहा था, वो मिट्टी की खुशबू, वो जिंदगी, वो

0: वो अभिनेत्री जो उस समय भी उतनी ही खूबसूरत थी और आज भी वही रूप, वही रंग और वही यौवन हमें दिखाई दे रहा है
1: बाप
0: आज
1: रे।
0: हमारे सामने है। अच्छा श्रोताओ, चलो एक प्रश्न पूछती हूँ। एक डायलॉग बड़ा खूबसूरत सा था, चंदन काहे कहा मच्छी लड़की नहीं है, ये किस फिल्म का डायलॉग था जरा विचार कीजिए। हाँ वही फिल्म जिसमें हमने होली की धुन पर भी नाचा है और गांव की एक प्यारी सी लड़की की चुहलबाजी, मस्ती और बहुत सारी शैतानी को भी देखा है, और वही मस्तीखोर बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी अभिनेत्री हमारे बीच में है और नाम है साधना सिंह जी। मैं मंच से इस प्यारे से विविध भारती से आपका इतने प्यार से स्वागत करती हूँ।
1: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आज पूरा विविध भारती परिवार इतना प्रसन्नचित है आपको पाकर, क्योंकि उन्हें उनकी गुंजा सुनने को मिल रही है।
1: हाँ बिल्कुल।
0: मैंने जब जिक्र गुंजा का कर दिया है तो गुंजा से ही शुरू करते हैं। गुंजा जो है वो बहुत बदमाश भी है और कहीं मिर्ची पीस के खिला देती है कहीं पानी गिरा के चली जाती है,
1: हाँ
0: कभी बाबा की डांट भी खाती है तो माँ के सामने झिझक के निकल भी जाती है, और वही गुंजा जो है वो एक समय पे आके उदास भी हो जाती है अपने परिवार के लिए, बहन के लिए, अपने खुद के लिए। तो आप उन दोनों में से, हालांकि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप पहली वाली गुंजा होनी चाहिए, पर फिर भी मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि मेरे सामने जो गुंजा बैठी है वो कौन सी वाली गुंजा है।
1: एक्चुअली तो फर्स्ट हाफ में जो दिखा है चुलबुली बदमाश
0: जी
1: प्रैंक करने वाली
0: जी
1: हूँ मैं वही, लेकिन उसके साथ ही ये आता है साथ में जो
0: जी
1: सेंसिटिविटी है, जो उसका अलग भाव, जो
0: समझदारी है
1: सैडनेस है
0: जी।
1: या किसी के लिए फील करना है,
0: हाँ
1: वो अपने आप इसके साथ बायो प्रोडक्ट की तरह आता है।
0: हाँ
1: तो मैं एक्चुअली देखा जाए तो जो गुंजा है वही मैं हूं।
0: दिल की सच्ची अच्छी बच्ची
1: हाँ, जो भी है बदमाशी भी करती हूँ और आज तक करती हूँ। पहले मेरे बच्चे थोड़ा एम्बेरेस्ड हो जाते थे, क्या मम्मा रुको, अब वो भी इंजॉय करते हैं क्योंकि उनको पता ही है औरत रुकने वाली है नहीं। तो मैं आज भी वैसे ही मस्ती करती हूँ, घर में भी,
0: हाँ
1: बाहर भी, फ्रेंड्स के साथ भी। और जब बोलते हैं गुंजा, गुंजा के कैरेक्टर में इतनी ढल गई मैं कि मुझे पता ही नहीं चला ये मेरे अस्तित्व में कैसे शामिल हो गई।
0: अच्छा
1: और कुछ चीजें थी जो मेरी थी,
0: जी।
1: और मेरे दादा जो ये थे डायरेक्टर गोविंद मुनीस जी, वो मुझसे सुनते थे, अच्छा बताओ तुमने और क्या बदमाशी की, तो वो सब बताती थी। जैसे कलर लगाया उसको, सचिन को लगाया ना, वो मेरा
0: जी।
1: एक्चुअली रियल इंसिडेंट था जहाँ पे मैंने अपनी फ्रेंड के भाई को, सोया हुआ था और सुबह उठ नहीं रहा था होली में, तो उसको पूरा लगाया था ऐसे मैंने, तो दादा ने डाल दिया वो, और जो विर्ज खिलाई अभी भी करती हूँ मैं वैसे काम
0: यानी इस साधना जी जो हैं वो ये बदमाशियां कर चुकी थी और अभी भी कर रही
1: कर रही
0: हैं,
1: हैं,
0: और गुंजा ने
1: करती
0: उन्होंने
1: रहूंगी
0: सच बात है, वो गुंजा का जो किरदार रहा है आपका, जो आपने किया है, उस समय बहुत सारी अच्छी फिल्में आ रही थी, यानी ऐसी ही फिल्में आ रही थी जो बहुत सेंसिटिव थी, लोगों के दिलों को छू रही थी, और उन फिल्मों के बीच में सन 1982 में नदिया के पार अपना एक अलग मुकाम बनाया। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि नदिया के पार करते समय या उसके पहले क्या आपने उसके बारे में पढ़ा था, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी थी, या बस नेचुरली उतर गई थी मैदान में?
1: हाँ नहीं, उतर ही गई थी क्योंकि कहीं मैंने वो एक्टिंग सीखी नहीं
0: अच्छा
1: और कोई स्पेशल कोर्स नहीं कराया दादा ने मेरे साथ।
0: जी
1: उन्होंने बस एक ही चीज बोली, तुम जैसी हो वैसी रहना, ठीक
0: अच्छा
1: है। और लेकिन बावजूद उसके मुझे लगता था कि नहीं, एक्टिंग कर रही हूँ मैं, कहाँ करूँ एक्टिंग, कहाँ करूँ, मुझे समझ नहीं आया शुरू में। तो जब शूटिंग खत्म हो गई मैं कहा, दादा एक्टिंग ही नहीं कराई
0: अच्छा
1: आपने, तो बोलते बस तुम देखना पर्दे पे, इसी को एक्टिंग बोलते हैं। तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था क्योंकि दिमाग में था ही नहीं कि एक्ट्रेस बनना है,
0: जी
1: लेकिन चलिए जो बने। लेकिन उन्होंने देखा मुझे, 14-15 दिन
0: जी
1: ऑब्जर्व किया,
0: जी
1: तब जाके उनको लगा यही मेरी गुंजा है।
0: अरे वाह,
1: हाँ
0: तो साधना में उन्होंने गुंजा ढूंढ ली। जब आप छोटी थी तो आप क्या चाहती थी? आप अभिनेत्री, आपने अभी बोला कि आपको पता नहीं था कि आप
1: हाँ
0: अभिनेत्री बनेंगी,
1: हाँ
0: तो साधना जी क्या बनना चाहती थी?
1: मुझे पैशन तो सिंगिंग का ही था,
0: अच्छा
1: तो लोग भी मुझे एज ए सिंगर ही जानते थे, कानपुर में मैं थी
0: जी
1: तो उनके हिसाब से मैं सिंगर ही थी। और टीचर्स भी बहुत प्यार करती थी क्योंकि जैसे ही उनका ब्रेक होता है ना,
0: हाँ
1: लंच
0: हाँ
1: ब्रेक
0: हाँ

0: करा, तो बोलती थी बुलाओ साधना को, और सब खा रही और मुझे बोल रही वो वाला गाना सुनाओ, अभी वो वाला सुनाओ, फरमाइशी चलता था गीत। तो इस वजह से मेरी बड़ी गलतियां माफ कर दी जाती थी स्कूल में भी, कि ठीक है जो भी है गाना तो गाती है ना। तो या कुछ क्योस होता था तो बोलते साधना को बोलो माइक पे आए जल्दी।
1: अच्छा
0: हाँ, तो ये था रुतबा था मेरा अपना।
1: तो अच्छी बात है, लेकिन आपने एक जिक्र किया कि आपके सामने माइक रखा जाता था और कहा जाता था कि हाँ। साधना गाओ, लेकिन अभी आप अपनी पसंद का कोई गीत बता दीजिए जो हम हमारे श्रोताओं को सुना दे। कौन सा ऐसा गीत है जो पहला गीत आप सुनना चाहती है आपके साक्षात्कार के साथ?
0: देखिए मैं आपको बताऊं, मैं 3 साल की थी, 3 साढ़े 3 साल की, जब मैंने अचानक एक गाना गाया। उस समय तो रेडियो होते थे और मेरी मम्मी ने पूरे मोहल्ले को बुला लिया, मेरी बेटी देखो गाना गा रही है, मेरी बेटी गाना गा रही है। वो गाना था तोरा मन दर्पण कहलाए,
1: क्या है ना।
0: तो शुरुआत मेरी उससे हुई और फिर बस गाने लगी और मतलब एज ए सिंगर छाने लगी। उस समय आवाज अलग थी मेरी, मतलब आप 50,000 लोग खड़े कर दीजिए उन तक पहुंच सकती थी,
1: उतनी बुलंद
0: आवाज। हाँ, बुलंद आवाज थी
1: जी। तो आपका जब पसंदीदा गीत है और 3 साल की उम्र में जब छोटी सी साधना ने पहला गीत गाया है, तो वो गीत हम आपको विविध भारती परिवार की तरफ से उपहार स्वरूप देना चाहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू।

0: अब साधना जी, आपने बताया कि 3 साल की उम्र में आप गा रही थीं, आप हालांकि आप आज भी बहुत खूबसूरत हैं, तब तो बला की खूबसूरत रही होंगी, तो लोगों का प्यार करना बनता है, उसमें कोई दो मत नहीं है। और मैं शायद गलत नहीं हूँ कि आपने मंच में नृत्य, अभिनय, बहुत सारे काम स्कूल में जो होते हैं वो भी शायद किए हों।
1: मैंने नृत्य कभी नहीं किया।
0: अच्छा,
1: वो मेरी बहन करती थी।
0: अच्छा,
1: तो मेरे माइंड में आ गया कि वो डांस कर रही है तो मैं गाने में ठीक हूँ।
0: अच्छा,
1: लेकिन वो कहीं ना कहीं अटक गया मेरी बॉडी में या कुछ, तो वो कथक करती थी बहुत जबरदस्त। बिरजू महाराज जी की बहुत फेवरेट ये थी डिसाइपल, और बिजली की तरह नाचती थी वो, तो कहीं ना कहीं कथक मेरे अंदर कुछ ना कुछ भाव उसके रह गए।
0: अच्छा,
1: अब अफसोस की बात यह कि उनको अर्थराइटिस हो गया, तो फिर एक डांसर के लिए अर्थराइटिस हो जाना
0: बहुत दुखद घटना है।
1: मतलब टीचर्स भी बोलती थी तुम तो स्कूल में गाना गाती थी, और हम लोग का एनुअल फंक्शन में हमेशा मना कर देती थी कि मैं डांस नहीं करूंगी, लेकिन वो था तो है अंदर।
0: नहीं, आप बहुत अच्छा नृत्यकी हैं उस जोगीरा में, और हमने
1: देखा जोगीरा में मार खा के की हूं।
0: वो किस्सा भी जरा बता रहे।
1: वो ये था, बद्री जी थे
0: जी
1: हमारे डांस डायरेक्टर
0: जी,
1: तो गाना तो बड़े मजेदार था। हाँ, और शीला जो है वो पूरी ट्रेन डांसर थी।
0: अच्छा,
1: तो मैं तो नहीं थी। तो उसमें एक स्टेप है ना, थोड़ा मुश्किल स्टेप है, ऐसे करके ताली एकदम और घूम के आना था। मुझसे हो नहीं रहा था कि माइंड अटक गया था। मैंने कहा मैं नहीं करूंगी ये। तो बद्री जी से मैं कहती थी कुछ चेंज नहीं कर सकते इसमें, कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो बोलते हैं 3-4 दिन उन्होंने देखा ये ऐसे बदतमीजी करती जा रही है। तो एक बार आएगा, आज तुमको डांस आएगा देखना, लेके डंडा मारा पैर में। एकदम ठीक कर दिया मैंने।
0: अच्छा, एक डंडे में डांस हो गया।
1: तो कई लोग ऐसे भी होते ना कि लातों के भूत, क्या कहते
0: लाठी के भूत,
1: लाठी के भूत। मारा पैर में बड़ी जोरों से लगी, मैंने कहा मैं कर लूंगी।
0: बद्री जी को धन्यवाद कि उन्होंने इतना खूबसूरत स्टेप हम तक पहुंचाया।
1: और क्योंकि शीला बहुत अच्छा कर रही थी।
0: हाँ,
1: तो मैं देखती रहती थी, बड़ा मटक कटक के डांस किया उसने। फिर मैंने कोशिश की तो हो गया।
0: बहुत खूब किरदार को निभाया और बहुत खूब नृत्य किया आपने। हमें नहीं पता था कि आपको उसमें डंडा पड़ा है, पर मैं उस डंडे को भी प्रणाम करती हूँ जिस डंडे ने इतना खूबसूरत नृत्य करवाया। अभी नदिया के पार फिल्म में आप आई और बहुत सारी जगह बहुत सारे अलग अलग भाव आपने दिखाए हैं। कहीं आप उसके प्रेम में भी हैं और अगले ही पल आप चंदन को परेशान भी कर रही हैं। तो ये जो भाव बदलने की जो क्रिया थी, आपने अभिनय सीखा नहीं, आप किसी रंगमंच की अभिनेत्री नहीं है, वो सब कैसे, इतना छोटा छोटा अंतर, हम जब नदिया के पार देखते हैं तो हमें वो अंतर दिखाई देता है कि पल में शोला पल में माशा वाला, कि आप एक सेकंड पहले उसी चंदन को देख के आपके अंदर से प्रेम के भाव आ रहे हैं और अगले ही क्षण वो प्रेम के भाव बदल गए। वो किरदार किया कैसे आप?
1: वो इसीलिए हो पाया कि मैंने कोई मेथड एक्टिंग नहीं सीखी थी। अगर वो सीखी होती तो मैं बन जाती किसी भी चीज में।
0: अच्छा,
1: वो बह गया, बह रहा था जैसे। तो मुझे कुछ ऐसा खास ऐसा बोलना नहीं था, बहुत बड़ी स्पीच नहीं देनी थी। छोटे छोटे मोमेंट्स अगर आप देखो तो जैसे मैं बोलती थी वैसे ही बोलती हूँ। तो कुछ चेंज नहीं करना पड़ा। मुझे लगता है उसने मुझे सबसे ज्यादा हेल्प किया कि दादा बोलते थे जो मर्जी आए करो।
0: अच्छा,
1: हाँ, ये है, ये फ्रेम है, ये सचिन ने भी हेल्प की समझने के लिए कि हिलना नहीं पड़ता, पता चला तुमको बोलते हैं राइट तो चली जाती हो एकदम बाहर। कैमरे की तो यही सचिन। और दूसरा वो उसके जो डीओपी, हाँ, उनको बड़ी खुन्नस थी मेरे से, तो वो बोलते सीधे नहीं, इतना सब बोलो तो 10 गुना आगे चली जाती है, इसको सिखाओ।
0: अच्छा,
1: तो 2-3 चीजें ये सीखी कि लाइटिंग लेना है, अच्छा थोड़ा अगर इधर बोला इतना ही जाना है।
0: हाँ,
1: ऐसे चल फ्रेम की बारी चली जाती है। तो वो नेचुरली था अंदर तो आ गया
0: जी।
1: मैंने कुछ उसमें पुट ऑन करने की मतलब कोशिश ही नहीं की।
0: अभी बहुत सारे बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आपको तो खैर अभी बहुत बरस हो गए इस अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय की दुनिया में, आप उन नए बच्चों को क्या कहना चाहती हैं इस विषय में?
1: मुझे लगता है कि पहली बात एक्टिंग ऐसी चीज है जो सिखाई नहीं जा सकती, कि आप पैसे लेके आ रहे हैं अपने घर से बॉम्बे में सीखेंगे एक्टिंग, वो नहीं, जर्म्स अंदर होने चाहिए। तो वो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे ज़्यादा हो गया, कम हो गया, पर जो चीज़ है ही नहीं आपके अंदर और सिर्फ शक्ल के उससे कि नहीं मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ या सुंदर लग रहा हूँ, चले आते हैं एकदम मतलब पोटली उठा के माँ बाप का पैसा लेके, तो मुझे नहीं लगता कि वो पहले खुद को जज करें, समझें अपने आप को। हो सकता है बहुत अच्छे एक्टर हो जाएं, लेकिन ये सोच के आना कि नहीं मैं अब जा रहा हूँ हीरो बनने या हीरोइन बनने, वो गलत, बहुत गलत है। और माँ बाप साथ में नहीं होते फिर आप गलत राहों पे चलने लगते हैं
0: जी। तो थोड़ा सा खुद को परख के आए ऐसा आपका कहना है। और सुंदरता बस जरूरी नहीं है अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय भी जरूरी है। ये तो बहुत अच्छी बात हमें आपसे पता पड़ी। इसके साथ ही एक और बड़ी खूबसूरत सी अदायगी मुझे ये लगी कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं फिल्मों में काम कर रही हूँ, मैं टीवी सीरियल्स में काम कर रही हूँ, तो मैं फिल्मों में कर रही हूँ तो मैं टीवी में क्यों करूँ। एक ये ईगो भी सामान्यतः है लोगों में होता है कि हमने किया है, तो इसके लिए आपने अपने मन को तैयार किया या
1: नहीं? कुछ तैयार नहीं किया, मुझे पता था मीडिया है ना,
0: हाँ
1: वो भी एक्टिंग ही चाहता है
0: जी,
1: है ना, हमको वहाँ भी लाइनें याद करनी होंगी
0: जी।
1: लेकिन वो पीयर प्रेशर एक होता है, वो कौन ले पाता

0: है कौन नहीं ले पाता। नहीं तो एक्टिंग तो कहीं हम अगर सड़क पे खड़े होकर प्ले करते हैं तो थोड़ा लाउड करते हैं क्योंकि हमको पता है, वो अपनी समझ है
1: जी,
0: है ना, कि यहाँ पे बहुत सेंसिटिव कुछ आवाज नहीं आ रही, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलने लगूं
1: जी।
0: तो अल्टीमेटली मैंने पाया कि एक्टिंग नहीं करना ही एक्टिंग है।
1: अच्छा, एक्टिंग नहीं करना ही एक्टिंग है।
0: हाँ, तो मैं तो इतनी बड़ी अपने आप को समझती नहीं हूँ कि मैं किसी को बोल पाऊँ। ये आपने पूछा तो मैं बता रही हूँ।
1: हाँ, कि जी जी, हमारे समक्ष बैठी हैं साधना सिंह जी, और अभी हम इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं। तो साधना जी, हम तो रेडियो वाले हैं, हम गाना सुनाते हैं,
0: हाँ,
1: तो
0: हाँ,
1: मौका है, दस्तूर भी है कि आपकी
0: सुनाई।
1: पसंद सुन ली जाए।
0: अच्छा, ऐसा।
1: जी, तो कोई गीत बता दीजिए जो।
0: मोस्टली मुझे रोमांटिक और ब्रीजी सॉन्ग या स्लो सॉन्ग्स अच्छे लगते
1: जी
0: हैं। तो कुछ दिल ने कहा, और ऐसी भी बातें होती हैं।
1: वो उसका संगीत कितना खूबसूरत
0: खूबसूरत
1: है।
0: और
1: जी जी
0: बहुत
1: जी
0: मीठा संगीत है।
1: तो हमारे श्रोताओं को सुनाते हैं खूबसूरत सा नगमा।
2: कुछ दिल

और गीत के पार वापस हम सब प्रस्तुत हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में। ये खूबसूरत सा कार्यक्रम चल रहा है और इसमें हम बात कर रहे हैं एक बेहतरीन प्यारी सी

0: अभिनेत्री के साथ में, वो अभिनेत्री जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए हैं और जो भी जीवन में आया है उसे मुस्कुराते हुए सब करती गई हैं, मस्ती के साथ सब करती गई हैं, और उसी उसी में आगे बढ़ते बढ़ते इनके पास में कई और सारी फिल्में आई हैं, जिनमें एक आज के यूथ की पसंदीदा फिल्मों में से एक बड़ी प्यारी सी फिल्म है सुपर 30, ये आपने की और इसमें भी आपका किरदार रहा। तो हम चाहते हैं कि अगर इसके बारे में आप कुछ किरदार के बारे में बताएं तो।
1: ये समय ना बहुत टफ था मेरे लिए,
0: अच्छा।
1: क्योंकि कमिटमेंट हो चुकी थी और उसी वक्त मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब थी, तो हॉस्पिटलाइज थे। तो मैं जब भी आती थी बॉम्बे
0: हाँ
1: तो सीधा हॉस्पिटल जाती थी,
0: जी,
1: तो बड़ा गंदा सा पैच था।
0: अच्छा।
1: उस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी, लेकिन ये है कि आप जब कैरेक्टर आर्टिस्ट बन जाते हो तो आपके कई सीन्स जब कटने होते हैं ना, तो साइड जो एक्टर है उनके ही कटते हैं, हीरो हीरोइन के नहीं कटेंगे। तो बहरहाल जैसा भी था, तो आई वॉज सेटिस्फाइड जो थी। और अब चीजें चेंज हो चुकी हैं तो
0: हाँ
1: ह्यूमन
0: हाँ
1: टच नहीं रह गया है,
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: वो मैंने, और बाकी रोल था। और

0: जो स्टार हैं वो तो अपने अपने वैंस में चले जाते हैं आजकल। हमारे टाइम पे हम लोग को बिठाया जाता था कि दूसरा क्या कर रहा है उसको भी देखो।
1: तो उस समय आप लोग दोनों उसमें बैठे रहते थे, यानी अपना करने के बाद फिर आप वहीं होते थे, सेट पे ही रहते थे?
0: सेट पे ही रहती थी, मतलब पहले ऐसे ही होता था।
1: अच्छा,
0: बैठ के साथ में खा रहे हैं, साथ में गप भी कर रहे हैं, कुछ सीन की बात भी कर रहे हैं
1: जी।
0: या अभी कुछ सीन हो रहा है तो इसके बाद मेरा है तो मुझे क्या सुर पकड़ना है क्या नहीं, बहुत सी चीजें। लेकिन आजकल शॉट देते ही लोग वैनिटी, मेरी वैनिटी तो खाली रहती थी क्योंकि सेट पे ही आदत
1: आदतन अनुसार आप लड़कियों से घिरी रहती थी।
0: हाँ, तो टाइम निकल जाता है। बट रोल अच्छा था, फिल्म अच्छी थी
1: जी।
0: तो एक लाइन बोलती हूँ ना, हमें नहीं चाहिए शॉल, हम बहुत हॉट है। तो वो एक छोटा सा था जो कि लोगों को बहुत पसंद आया वहां पे। हाँ,
1: नहीं वैसे आप बहुत हॉट है, शॉल की जरूरत नहीं। तो अभी उसके बाद आपने एक चंदा किरदार को भी निभाया ससुराल फिल्म में, उसके बाद बहुत सारे किरदार किए आपने नदिया के पार के बाद जी।
0: नदिया के बाद बहुत ज्यादा काम नहीं किया मैंने
1: जी,
0: काफी कुछ घर की भी प्रॉब्लम्स हो गई थी और यहाँ मैं सिस्टर के पास रह रही थी, बहुत सारी चीजें हुई उस दौरान। लेकिन ये है कि एक शंकरावर्णम फिल्म आई थी
1: जी,
0: विश्वनाथ जी साउथ के थे, उन्होंने ये फिल्म बनाई थी। तो वहाँ के जो सबसे बड़े जो कर्ता धर्ता थे आबिद रिजवी, मुझे बिल्कुल बेटी की तरह। हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि मुझे बोले चलो तुमको एक तमिल फिल्म दिखाते हैं। मैंने कहा मैं क्यों जाऊं, तमिल मुझे समझ नहीं, वो वही पढ़ती रह जाऊंगी मैं सब टाइटल। लेकिन वो ले गए
1: जी।
0: और वो फर्स्ट फ्रेम शुरू हुआ फिल्म का और मैं ऐसे देखती रह गई। मतलब जब फिल्म खत्म हुई तो मैं इतनी भरी हुई थी, ओवरवेल्म्ड एकदम। ऐसी भी फिल्में होती हैं क्या, काश इस तरह की कोई फिल्म मैं कर पाती। तो विद इन टू मंथ्स मुझे फोन आता है कि ऐसा ऐसा हम लोग हिंदी वर्जन बनाना चाह रहे हैं।
1: वही तो सेम फिल्म?
0: हाँ सेम फिल्म।
1: ओह,
0: लेकिन आपको जो गुरु है उनकी बेटी का रोल। मैंने कहा कोई भी रोल है मैं करूंगी। जुड़ना ऐसी फिल्म
1: जी,
0: से
1: जी।
0: तो विश्वनाथ जी तो बहुत उनको पूजा जाता है वहां पे
1: जी,
0: साउथ में सरगम ये सब उन्होंने बनाई। तो उनके साथ काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने बोला तुम्हारी आंखें अच्छी हैं बहुत, लेकिन
1: बोलती आंखें।
0: हाँ, तो इनको इनहेंस कैसे कर सकते हो एक्टिंग के लिए
1: जी,
0: कि एक बार पलक झपकाओ तो उसका क्या मीनिंग होता है, दो बार झपकाओ तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो वो सारी चीजें वो बताते थे ना, तो ही जस्ट अभी पास्ड अवे, उनका मंदिर वगैरह बनाया। तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। नदिया के पार के बाद ससुराल थी ना शायद।
1: हाँ, जी जी, उसके बाद ही।
0: हाँ, तो मस्ती में की बस। और वहीं पे मेरे हस्बैंड मिल गए मुझे, हस्बैंड जो आज हैं
1: जी,
0: उनकी फिल्म

0: जो मैं नहीं करना चाह रही थी।
1: अच्छा।
0: लेकिन मेरे डायरेक्टर हैं
2: जी,
0: मुझे लगा उनको काम मिलना चाहिए, तो उस वजह से मैंने कहा कि अगर दादा कर रहे हैं तो मैं कर रही हूँ। तो वो फिल्म की उसके बाद ना इतना सिनेरियो इतना गंदा हो गया था और कोई अच्छी फिल्म नहीं बन रही थी, तो सिर्फ बुआ बन के, दादी बन के, चाची बन के खड़े रहना, मैंने कहा मैं नहीं करूंगी।
1: हाँ।
0: तो वो टाइम मैंने अपनी शादी, फिर बच्चों को देखना, ये सब
1: जी जी।
0: और फिर उसके बाद मुझे जब मैं फिल्म में आई तो पिछले 5 साल

0: नहीं करूंगी।
1: हाँ।
0: तो वो टाइम मैंने अपनी शादी, फिर बच्चों को देखना ये सब,
1: जी जी
0: और फिर उसके बाद मुझे जब मैं फिल्म में आई तो ये पिछले 5 सालों की जुगनी,
1: जी जुगनी
0: जुगनी बहुत अच्छी फिल्म
1: है,
0: देखे
1: अच्छी
0: हैं।
1: फिल्म जी।
0: तो ये नए लोगों के साथ मैंने काम करना शुरू किया जब,
1: हाँ।
0: तो बहुत एनर्जी और बहुत प्यार और बहुत रिस्पेक्ट है, तो मैंने कहा नहीं ये तो सिनेरियो ठीक है अभी। तो उसमें अच्छा रोल दिया उसने मुझे लड़की ने, और उसका नाम है शेफाली भूषण
1: जी।
0: अभी भी उनकी मराठी एक फिल्म बहुत हिट हुई है स्थल।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो उनके साथ काम करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों के साथ काम करके। दे वेरी ड्रिवन, सब लोग शीशा दिखा रहे हैं, आपको मेकअप मैन की जरूरत नहीं है, है ना, सब मिलके काम कर रहे हैं,
1: मिलके काम कर रहे हैं, पारिवारिक तरीके से काम कर रहे हैं।
0: फिर मैंने अनुराग कश्यप, वो मुझे ढूंढ रहा था कब से, तो उसको लगा कि शायद मैं अमेरिका चली गई हूँ शादी आदि करके, तो कुछ देख रहा था, उसने कहा रुको रुको साधना जी कहाँ है आजकल, तो उन्होंने बताया यही है। तो उन्होंने मुझे बुलाया, आपको काम करना पड़ेगा मेरे साथ। तो वो फिल्म की फिर उसमें मजा आया मुझे बहुत।
1: अनुराग कश्यप जी के साथ में आपको एज ए डायरेक्टर, वो जब साथ में है, तो आपको क्या अलग लगा पहले का?
0: मुझे ये लगा कि वो कंफर्ट मैंने फील किया जो नदिया के पार में था।
1: अच्छा।
0: हाँ, क्योंकि ये भी बोलते हैं, हाँ ऐसा जैसा आपको ठीक लगे, ये बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये नहीं जकड़े हुए नहीं थे,
1: हाँ।
0: कि ऐसा ही करना है। और कई कई जगह तो आए पैर वैर छुए, बोले हम नहीं सोचते थे कि आप इस तरह की लैंग्वेज बोलेंगी।
1: जी। हम लड़कियों को बचपन से कहा जाता है कि एक राजकुमार आएगा सफेद घोड़े पे आपको लेके जाएगा।
0: पति का नाम राजकुमार
1: ही नहीं, राजकुमार आ गए। वो सफेद घोड़े पे आए थे या एम्बेसडर में आए थे?
0: अरे वो उन्होंने बदला लिया मुझसे शादी करके।
1: अच्छा। हम जानना चाहते हैं वो किस्सा।
0: वो किस्सा मैंने बताया, मैं किस्सा यही था कि मुझे अंदर से ये नहीं था कि मुझे फिल्म करनी है, तो मैंने कहा नहीं करूंगी। तो ये बिहार विहार छोड़ के आए थे कि फादर ने बोला इस लड़की को लेके ही फिल्म बनानी है, तो फादर ने बोला, तो आए उन्होंने सब जमाया सब काम, हाँ। और मिलने आए तो उनको लगा मैं बहुत अकड़ू टाइप की हूँ। और मुझे मालूम नहीं क्या ऐसा किया होगा मैंने
1: जी।
0: तो एक बार मिले, उसके बाद दूसरी बार मिले मैं पहचानने से इनकार कर दिया मैंने, इनकार मतलब जानबूझ के नहीं, मेरी दाढ़ी रखी होगी शायद उसलिए। फिर तीसरी बार मिले जब साइन करा चुके थे, चौथी बार मिले अरुण गोयल के दोस्त थे, तो अरुण ने कहा ये राजू वो देखे जा रहे हैं मेरी तरफ, तो मैंने कहा कि अच्छा, तो बोले अरे साइनिंग अमाउंट लेके भी नहीं पहचान रही हो। मैंने कहा ओ गॉड, क्योंकि आप कभी चश्मा पहन के आ जाते हैं कभी दाढ़ी रख के आ जाते, इनको इतना गुस्सा है, बोले शादी करके बताता हूँ इसको कैसे नाम नहीं याद रहेगा।
1: नाम याद कराने के लिए शादी कर ली।
0: शादी कर ली, बताइए अब। हालांकि बहुत दंगे फसाद हुए, 5 साल तक हम लोग की चल रहा था अफेयर,
1: हाँ।
0: और मेरे फादर इन लॉ बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे।
1: अच्छा।
0: फिर मेरी
1: वही लड़की हीरोइन चाहिए, हाँ। थी, लेकिन उसके साथ शादी नहीं करानी।
0: होता है ना दिमाग में, शादी फिल्म लाइन की लड़की है, ऊपर
1: हाँ।
0: से तुम उसको घर ले आओगे तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। लेकिन 5 साल के बाद जब वो माने तो बहुत अच्छे से माने। फिर
1: मैं जानना चाहती हूँ एक कोई गीत जो आप अपने सफेद घोड़े पे आए हुए चश्मे वाले दाढ़ी वाले हैंडसम से राजकुमार के लिए दें।
0: ये रात भीगी भीगी।

0: अब हम लोग उत्तर प्रदेश की फिल्म में जो आपने किए हैं यूपी की भोजपुरी फिल्म है उनके बारे में चर्चा करेंगे।
1: भोजपुरी फिल्म तो एक ही शायद मैंने की
0: वो वाली की है ना गंगा मैया, तो है
1: ये तो मेरे फादर इन लॉ की फिल्म थी, पायनियर थे वो
0: जी।
1: और ये फिल्म उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी के कहने पे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे
0: जी।
1: सब इनकी एक दोस्ती थी, बोला भोजपुरी बड़ी खूबसूरत लगती है सुनने में, क्यों ना एक फिल्म बनाई जाए। तो ये चले आए मेरे फादर इन लॉ बक्सा उठा के, और वहीं जहाँ दादर उतरे सामने ही वहाँ पे एक होटल है जहाँ पे सब स्टार वगैरह आते थे, वहाँ वो मिले नासिर साहब से, नासिर हुसैन जो जिन्होंने फिल्म, और उन्होंने स्टोरी सुनाई और उनको साइन भी कर लिया। कुमकुम जी मदर इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट में फंसी हुई थी, उनको संभाल के निकाला और फिल्म बनाई गंगा मैया तो ही प्यारी चढ़ाई वो
0: जी,
1: जो कि ब्लॉकबस्टर आज भी ब्लॉकबस्टर है। तो उसको मेरे फादर लॉ को ट्रिब्यूट देने के लिए एक और फिल्म बनाई मेरे हस्बैंड ने, जबकि वो चले गए इस दुनिया से
0: जी,
1: गंगा जैसन पावन प्रीतिया हमार।
0: अच्छा,
1: तो उसमें मैंने काम किया
0: जी,
1: क्योंकि उस वक्त शायद कोई और रेडी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा घर में बैठी है चलो इसको
0: इतना लाइक तो नहीं लिया होगा।
1: बहुत अच्छी फिल्म बनी जी, लेकिन जी,
0: बहुत प्यारी
1: है वो,
0: बहुत अच्छी फिल्म जी। एक प्रश्न और मन में आ रहा है, पंजाबी सिकड़ी लड़की सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की भाषा बोलने लगती है, मतलब सीधे ओ चंदन लाइक जो वहां की भाषा है उस भाषा में आ जाती, ये जो भाषा का बदलाव है इसको करने में तो तकलीफ हुई होगी?
1: बिल्कुल भी नहीं, मैं बनारस में की पैदाइश हूँ।
0: अच्छा
1: हमें अपनी जो बाइयां आती थी उन सबसे तो
0: मतलब वो चाट और लस्सी खाते
1: पीते हाँ
0: जी,
1: क्योंकि आज तक हम लोग बहन भाई हिंदी में बात करते हैं। अच्छा। सिर्फ मम्मी डैडी से पंजाबी सीखी मैंने।
0: अच्छा,
1: कि मुझे आनी चाहिए क्योंकि बनारस में ये मतलब आपस में मेरे भाई लोग दोनों पगड़ी बांध के और भोजपुरी में बात करते थे तो वो विजुअली बड़ा अजीब सा लगता था कि अरे
0: सरदार खड़े हैं और
1: तो हमारे पंजाबी एक्सेंट है ही नहीं।
0: अच्छा,
1: हाँ हम लोग जो बनारसी भाषा है और इलाहाबादी
0: जी,
1: हाँ ये काफी फर्क है
0: जी।
1: तो हमने सिर्फ जैसे उनको बोलिए अगर राजबाबू तो बहुत गुस्सा हो जाते थे कि ये भोजपुरी फिल्म नहीं है। हाँ। अगर लगान दिखा रहे हो आप, बैकड्रॉप है आपका गांव वाला, मतलब कि भोजपुरी फिल्म हो गई क्या?
0: अच्छा,
1: ऐसा था।
0: आपने जैसे बहुत सारी फिल्मों में काम किया और अभी हमें टीवी सीरियल्स के बारे में ही बात करनी है, तो उसके पहले मैं चाहती हूँ जो फिल्मों की हम बात कर रहे थे उसमें नदिया के पार बड़ी खूबसूरत सी फिल्म है, और उसका जो सबसे ज्यादा पसंदीदा गीत साधना जी को गुंजा को कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है वो गीत हम सुनाना चाहेंगे?
1: देखिए कौन दिशा में तो सब गाते हैं
0: जी,
1: बट मेरे सामने पहली रिकॉर्डिंग हुई थी गुंजारे चंदन चंदन, तो एक वो इतनी रोमांटिक थी ना धुन उसकी और दोनों का जो एक प्यार था उस फिल्म में कैसे दिखाया गया था और थोड़ा अलग था चंदन चंदन ऐसा
0: बहुत,
1: तो मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है।
0: रिकॉर्डिंग के समय आप थे क्या इसकी?
1: हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग में थे मैं।
0: रविंद्र जैन वहां पे उसका डायरेक्शन कर रहे होंगे, गाया जा रहा होगा। कैसा कैसा एम्बियंस था, कैसा लग रहा था सुनते
1: समय? बहुत अच्छा लग रहा था मुझे क्योंकि वो गाना है ही अच्छा, अगर आप
0: जी बहुत खूबसूरत गीत है
1: और मैं करने वाली हूँ तो वो भी एक्साइटमेंट था, और हर रिकॉर्डिंग में थी मैं लेकिन ये कुछ अलग इसने असर किया मुझे
0: जी,
1: और आज तक मैं बहुत बहुत ज्यादा इसको पसंद करती हूँ।
0: तो जब आप इसे पसंद करती हैं तो ये गीत आपके लिए हम सब की तरफ से बहुत प्यार से।

0: आपकी पसंद का गीत तो हमने सुना दिया, लेकिन जब सुनाया है तो हमारे यहाँ कहते हैं ना रिटर्न गिफ्ट मिलती है,
1: हाँ
0: तो एक रिटर्न गिफ्ट लेना चाहेंगे कि ये गीत जब रिकॉर्ड हो रहा था तो उस समय आपको कैसा लग रहा था, यानी क्या देखा आपने उस समय जब आप पहली बार स्टूडियो गई
1: हाँ
0: होंगी शायद?
1: हाँ बस माहौल देखा, माहौल कमाल का होता है, क्योंकि और लगता है सुनते ही रहो आप, चलते रहे ये म्यूजिक, क्योंकि कैसे बैठ के डिस्कस करना, और हेमलता जी थी,
0: जी
1: और कैसे वो लाइव गाना देखना, और सारे इंस्ट्रूमेंट होते थे साथ में
0: एक साथ
1: एक साथ,
0: बहुत बड़े कमरे में,
1: बहुत बड़ा कमरा तो नहीं था, फेमस में हुआ था,
0: अच्छा फेमस स्टूडियो
1: बट
0: में।
1: जितना था सब भरा हुआ था, और उसकी जो ऊर्जा होती है ना वो आपको अलग महसूस कराती है, एकदम लग रहा था मैं हवा में उड़ रही हूँ, अब ये गाना मेरे ऊपर पिक्चराइज होगा, तो ये बड़ी कमाल की चीज है।
0: वहां पे रविंद्र जैन जी भी संगीतकार की तरह
1: ओहो
0: विराजमान होंगे।
1: भैया मैं तो प्रणाम करती हूँ, ऐसा आदमी मैं सच्ची में सोच नहीं सकती हूँ कि दादा को एक गाना नहीं पसंद आ रहा था,
0: हाँ,
1: उन्होंने ऑन द स्पॉट 30 गाने सुना है,
0: 30 गाने, 30 धुनें,
1: गाने में, और सुना रहती है पसंद है नहीं है अच्छा, और ये और वर्ड्स उसी टाइम लगा रहे थे, ये नहीं कि लिखे हुए गाने पढ़ रहे थे, वो
0: जी
1: बनाते थे उसी टाइम स्पॉट पे, अच्छा ये वाला ठीक लग रहा है, अच्छा छोड़ी छोड़ी नहीं लग रहा ना, ये अच्छा लग रहा है, साधना तुमको भी, मुझे भी उतनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी यू नो,
0: जी
1: तो मुझे तो लगता था ये आदमी इतना गुणी, इतना गुणी, माई गॉड, उसका म्यूजिक भी बना लेते थे
0: शब्द भी
1: और
0: लिख
1: शब्द भी लिख देते थे
0: लेते
1: 1 सेकंड में,
0: 30 गाने एक समय
1: हाँ
0: पे
1: 32
0: बनाकर
1: होंगे 30
0: सुनाना,
1: होंगे मुझे इतना याद नहीं, लेकिन चलते जा रहा था इन लोग का, दादा कह
0: लगातार
1: रहे हैं नहीं अब एक और सुना दीजिए, तो अच्छा अच्छा ये वर्ड्स इधर डाल शुरू कर दिया, तो
0: और
1: उनसे
0: कहीं लिखा नहीं जा रहा क्योंकि देख नहीं सकते तो लिखते नहीं है
1: हाँ, उसके बाद
0: अद्भुत।
1: फिर हम लोग के बहुत सारे टूर हुए
0: हाँ
1: जिसमें राज बाबू राजकुमार बड़जात्या जी, उनकी वाइफ सुधा भाभी, और रविंद्र जैन जी और उनकी वाइफ,

0: नहीं, अब एक और सुना दीजिए। तो अच्छा अच्छा ये वर्ड्स इधर डाल शुरू कर दिया तो उनसे,
1: और कहीं लिखा नहीं जा रहा क्योंकि देख नहीं सकते तो लिखते नहीं है।
0: उसके बाद फिर हम लोग के बहुत सारे टूर हुए जिसमें राज बाबू, राजकुमार बड़जात्या जी, उनकी वाइफ सुधा भाभी और रविंद्र जैन जी और उनकी वाइफ और मैं और सचिन, हम लोगों ने बहुत शोज किए। तब उन्होंने बोला कि तुम बिल्कुल गायब हो यहाँ से, तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम गाना गाती, मैं तुमसे गवाता।
1: ये रविंद्र जी
0: हाँ,
1: ने
0: क्योंकि उनके साथ जितने टूर होते थे सबको लगता था मैंने ही गाया फिल्म में। तो बहुत प्यार देते थे और बहुत बहुत बहुत इज्जत और बहुत प्यार
1: जी। दादू, और जब टूर करने जाते थे तब क्या एक्सपीरियंस होता था स्टेज पे, जो उनके लाइव शोज होते होंगे वो?
0: हाँ,
1: आनंद ही अलग आता।
0: हाँ, वो तो शेरनी थी मैं तब बस चलो कहाँ चलना है, बोलना है क्या बोलना है।
1: अच्छा,
0: तो आई थिंक वो अक्खड़पन में सब कुछ सीख गई।
1: हाँ,
0: अल्लड़पन कहते ना,
1: ये कह सकते हैं आपके माता पिता की परवरिश का असर था कि आपको उतनी स्वतंत्रता दी गई, मानसिक स्वतंत्रता दी गई बचपन से।
0: ये बात है, मैं दोनों मेरे पेरेंट्स बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत उनको ये था कि जो भी करना है करो, बस उसके बाद का जो जो भी रिजल्ट है वो भी तैयार रहो, उसके लिए भी तैयार रहो।
1: अच्छा, खेलो कूदो, चोट लगे तो तैयार रहना, लगेगी तो संभाल लेना। बहुत बढ़िया बात है, इतना आनंद आ रहा है आपसे बात करते हुए, इतनी रोचक जानकारियां मिल रही हैं। और उसके साथ में एक बात और, जो आपने सीरियल्स में काम किया है, जो टीवी के पर्दे पर काम किया है, उस तक पहुंचने का कुछ ऐसा जरिया था या आप चले गए ऐसे ही घूमते?
0: नहीं नहीं, बस एक दिन फोन आ गया मुझे, तो मैंने अपने ससुर को बोला कि ऐसा सुनने में आया था कि शायद वो परमिशन नहीं देंगे अब, क्योंकि इतने बड़े खानदान में लड़की आ गई, अब शूटिंग भी करेगी।
1: हाँ,
0: तो ये चारों तरफ से ना मुझे बता दिया गया था।
1: अच्छा,
0: नॉट फ्रॉम माय हस्बैंड, वो इंडल्ज ही नहीं किए इसमें। लेकिन जब ऐसा हुआ और मुझे लगा कॉमेडी मिल रहा है मुझे, तो मुझे करना है, तो मैंने फोन कर लिया डायरेक्ट अपने फादर इन लॉ को, और बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे, तो मैंने कहा कि बाबा ऐसा ऐसा मुझे रोल आ रहा है, मैं कर लूं? तो उन्होंने बोला कि हाँ कर लो अगर अच्छा है तो।
1: अरे वाह,
0: लेकिन अच्छे अच्छे रोल करना जो भी।
1: हाँ,
0: तो इन लोग को किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि बाबा ने बोल दिया, बाबा ने बोल दिया,
1: मैं बोल दिया।
0: तो मैंने कहा ऐसे हवा मत बना के रखो, तो
1: यानी आपको मायका भी सुंदर मिला, ससुराल भी अच्छा मिला, दोनों जगह।
0: सास ससुर तो बहुत अच्छे थे
1: जी,
0: तो जहाँ भी हैं बस खुश रहे
1: जी। बिल्कुल साधना जी, थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रही थी आपके बेटे का जो आपकी बदमाशियों से परेशान है, पर हम उसे कहना चाहेंगे कि भाई परेशान मत हो, यही बदमाशियों ने हमारे हम जाने कितने करोड़ों के चेहरों में कितनी बार मुस्कुराहट लाई है। तो आपके दो बच्चे हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, वो भी अभिनय के जगत में है?
0: नहीं नहीं, मेरा बेटा तो बहुत दूर है।
1: अच्छा,
0: उसको फेमस नहीं होना है। वो बिल्कुल ही अलग सोचता है
1: जी।
0: और मेरी बेटी ने की है फिल्में, तमिल में की है
1: जी,
0: उसको लॉन्च किया था सतीश कौशिक ने
1: जी,
0: अनुपम जी ने,
1: बहुत बढ़िया।
0: लेकिन बस वो तकदीर नहीं थी कि जब रिलीज हुई पिक्चर जिस थिएटर में लगी, स्वाइन फ्लू की वजह से सारे थिएटर बंद हो गए, तो वो पिक्चर भी ऐसे ही ढह गई।
1: हाँ, तो उस समय वो चल,
0: फिर वो उसको मिला उधर काम, फिर एक टाइम के बाद चीजें हो जाती है ना कि उतना अच्छा किरदार नहीं मिल रहा है, आपने हीरोइन किया है तो वो अपनी लाइफ में अपना देख रही है, शोज करती है या टीवी वगैरह जो भी है, ऑडिशन वगैरह वो वैसे ही देती है जैसे और लोग देते हैं,
1: मतलब तो, उसमें साधना जी का हस्तक्षेप नहीं होता?
0: नहीं, मैं करती भी नहीं, क्योंकि
1: मेहनत करो अपनी,
0: अपनी मेहनत करो,
1: ये बहुत अच्छी बात है।
0: क्योंकि मैंने अपने लिए कभी किसी को बोला नहीं, तो बच्चे के लिए क्या बोलूंगी
1: जी। लेकिन आप जो चुलबुला किरदार है आपका, और जैसी आप हैं, और मैं इतने समय से आपको जान रही हूं, तो मैं समझ रही हूं कि आपके साथ बैठ के अगर 2 घंटे बैठ के बातें की जाए तो शायद मेरे ठहाके रुकेंगे नहीं, तो वो जो किरदार है, तो एक बार अगर आपको ऐसा सोचने का मौका मिले कि कुछ ऐसी फिल्म करनी है तो क्या आप करेंगी?
0: बिल्कुल करूंगी, मुझे कॉमेडी करना है, मेरा वो साइड अब एक्सप्लोर हुआ ही नहीं।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो साजिद के साथ फिल्म की मैंने ना ये सुपर 30
1: जी,
0: तो उसको मैंने एक मैसेज भेजा है

0: मुझे ना रोने धोने वाली माँ के लिए बुलाना नहीं तुम लोग मुझे जब बुलाना कॉमेडी कोई, अच्छा तो बोले 100%।
1: हाँ
0: अब देखते हैं क्या होता है
1: जी बिल्कुल होगा, आपने कह दिया, सोच लिया।
0: हाँ।
1: और विविध भारती के परिसर में कई चीजें जो सोच ली जाती हैं वो पूरी हो जाती हैं। हाँ। ऐसा हम मान के चलते हैं। बिल्कुल, ये जगह बड़ी बड़े पवित्र लोग यहाँ पर आए हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पर अभी आप तस्वीरें देखते हुए आ रहे थे तो बड़े बड़े किरदार आए हैं, तो ऊर्जा बड़ी अद्भुत है यहाँ की।
0: हाँ, लेकिन एक चीज बता रही हूँ मैं
1: जी
0: कि ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ सिर्फ मतलब बेड ऑफ रोजेस बोलते ना, बहुत बहुत तकलीफें आई और बहुत ऊंच नीच भी हुई और ट्रॉमाज हुए लाइफ के, बहुत सारी चीजें हुई हैं। बस मुझे भगवान ने ऐसा बनाया कि मैं थोड़े टाइम के बाद अपने आप हैप्पीनेस की तरफ चली जाती हूँ,
1: ऊर्जा सकारात्मक।
0: हाँ, वो मैं नहीं रख सकती इतना, क्योंकि मुझे लगता है क्राइम है खुद को दुख देना, दे के रहना या अपने पे तरस खा के रहना, क्योंकि आप सबको सब होता है मुझे और औरतों की तरह, ऐसा नहीं है।
1: हाँ।
0: लेकिन मैं सबको बताती भी नहीं हूँ जो उस दौर में हैं, या मुझे फोन करके अपना दुखड़ा नहीं सुनाना है। मुझे लगता है कि एक ऐसा फेज भी आया लाइफ में कि मुझे लगा मैं जीऊँ या मर जाऊँ।
1: अरे
0: हाँ, मतलब इतनी सीवियरिटी वाली चीजें हैं कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे जीना मतलब नहीं है इस टाइम, नेक्स्ट स्टेप ये होगा बेटर कि मेरी सांस ही ना आए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या मुझे लोग ऐसा देखेंगे, क्या मुझे जानते हैं मेरी हंसी के लिए, मेरी खुशी के लिए, तो मैं कुछ तो अच्छा करके जाऊं और फिर मैं बाउंस बैक मैंने किया था।
1: क्या बात है।
0: और तो फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा ये तरीका अच्छा है कि मैं खुश रहूं, खुश दिखूं, खुश बोलूं और एटमॉस्फेयर अपने आप ठीक होगा, तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा।
1: बहुत अच्छी बातें हमको सुनने मिल रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है साधना जी। और इस अच्छाई के बीच में अगर वो शुरुआत वाली अच्छाई आप पूरी कर दें, हमारा एक गाना जो है तो क्योंकि रविंद्र जैन जी जब कह गए कि तुमसे ही गवा लेते, तो हम भी चाहते हैं विविध भारती में आई हैं तो कुछ गाने हम
0: मैं
1: भी सुन लें।
0: कोशिश करती हूँ। चलिए मैं आपको आज ये भी बताती हूँ कि मैं रफी साहब की बहुत बड़ी फैन हूँ। मतलब मेरे लिए भगवान भी हैं, सब कुछ है
1: जी।
0: मुझे लगता है मैंने रोमांस, दर्द, दुख जो भी है उनकी आवाज से सीखा है
1: जी।
0: उनका गाना गा देती हूँ
1: जी।

पुकारता चला हूँ मैं गली गली पहाड़ की, बस एक इच्छा जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली पहाड़ की, बस एक इच्छा जुल्फ की,

0: और अब इतनी देर से हम बात कर रहे हैं और शायद मुझे लगता है कि अभी अगर 2 घंटे और बात की जाए तो साधना जी की कहानी पूरी नहीं होगी, पर हम चाहते हैं कि आप हमारे श्रोताओं के लिए और हमारे जो नए नए बच्चे अभिनय के क्षेत्र में आ रहे हैं और बाकी हम जो महिलाएं, इन सब के लिए कोई संदेश अगर आप देना चाहें तो।
1: तो बच्चे तो आजकल के बच्चे हैं कि क्या बच्चे, आई डोंट नो कि उनके लिए कुछ नहीं बोलना चाहूंगी मैं।
0: जी
1: जो बोलना चाह रहे हैं वो रोज आता है कि अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए। और मुझे लगता है कि जिंदगी में जैसे हेल्थ हेल्थ ऐसी चीज है जिसपे औरतों का बहुत कम
0: ध्यान
1: ये
0: होता
1: ख्याल
0: है।
1: होता है, क्योंकि उसको लगता है बेटे को भी बादाम खिला दूं, उसको भी खिला दूं, उसको भी खिला, बचेगा तो देखती हूँ अपने लिए,
0: और बचता कभी नहीं।
1: बचता भी नहीं है और कभी क्रेप भी नहीं करती है माए।
0: जी
1: लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए तो ही आप सबको समेट पाएंगी, ऐसी सिचुएशन को फेस कर पाएंगी जो आती है कभी कभी। कर्मा है ना, वो तो छोड़ेगा नहीं। और अपनी सेहत पे ध्यान दें। 50 में औरतें सोचती हैं हम लोग तो जिंदगी खत्म हो गई,
0: जी
1: तो वो जिंदगी शुरू होती है उस वक्त, क्योंकि आप
0: हाँ
1: सारी जिम्मेदारियों से थोड़ा मुक्त हो जाते हैं। और उस उम्र में औरत सुंदर भी सबसे ज्यादा लगती है, लेकिन
0: हाँ
1: उसको एहसास नहीं है।
0: हाँ
1: तो अपने आप को देखें, अच्छी चीजें देखें, पहने। पहनने से मुझे याद आया, मैंने ब्रांड भी शुरू किया है,
0: अच्छा
1: हाँ, एक कच्चे धागे करके। और
0: अच्छा
1: साड़ियां, वीव्स वगैरह, मैं चाहती हूँ सब खुश अच्छे से सज धज के रहें। औरतों का काम है, ये
0: जी
1: ड्यूटी है उनका, मतलब राइट बनता है कि सिर्फ खाना ही नहीं बनाए, अपने आप को भी बनाए। और अच्छी फिल्में देखें तो हम लोग अच्छी फिल्में करेंगे। मेरी एक फिल्म आ रही है कैसी है पहेली,
0: जी
1: वो जरूर आप लोग देखिएगा। उसमें माँ बेटे का है स्टोरी, माँ बेटे की। बहुत
0: अच्छा
1: सारे उन फेस्टिवल में जा चुकी है
0: अरे वाह
1: और न्यूयॉर्क में तो स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। तो
0: क्या बात
1: मैं
0: है।
1: चाहती हूँ कि ये सब देखें,
0: फिल्म है कैसी है पहेली,
1: कैसी है पहेली।
0: जरूर से हम
1: हाँ
0: सभी विविध भारती परिवार जरूर इस फिल्म को देखेंगे, इतना हमें विश्वास है।
1: हाँ
0: और आगे आपके पास में बहुत सारी फिल्में आएं, वो चुलबुली वाली साधना सिंह हम जरूर देखना चाहते हैं, हमारा बड़ा मन है, क्योंकि हम हमारी उस वाली गुंजा को बड़ा मिस कर रहे हैं जो बड़ी बदमाशियां करती थी। सो हम वो देखना चाहते हैं उस किरदार में आपको। आप विविध भारती तक आई साधना जी, इतना सारा समय दिया, इतने प्रेम से समय दिया,
1: अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगता है, विविध भारती से कहीं ना कहीं आत्मा जुड़ी हुई है।
0: तो हमारे साथ आप बने रहिए, हमारा साथ देते रहिए, नए नए किस्से जब कभी आए तो हमारे पास तक जरूर आते रहिए साधना जी। अच्छा
1: अच्छा
0: लगता है
1: लगा,
0: विविध भारती में जब आप
1: बिल्कुल,
0: आते हैं, आप लोगों की ऊर्जा आती है, तो आप यहाँ तक आए उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, प्रणाम।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में अभी आपने सुनी अभिनेत्री साधना सिंह से विधि जैन की ये बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में शाम के 5 बजने वाले हैं और आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, ये अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। म्यांमा के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक कर रहे हैं। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाना है। श्री DK कुमार शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से चुने जाने की संभावना है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। महीने भर चलने वाली ये प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि अगर ईरान के साथ समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका की सेना उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेग्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमरीका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद है। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राष्ट्रीय संचालन समिति NSC ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम ITI क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण निवेश योजना SIPO को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत स्वीकृत होने वाली पहली SIP है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के तहत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। ये मंजूरी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित तीसरी NSC बैठक के दौरान दी गई। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित लोहम का दौरा किया। लोहम देश के प्रमुख उद्यमों में से एक है जो लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है। इस दौरान श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में आज भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी ने दक्षिण कोरिया के सियो सेंग जाय और किम वॉन हो को 21-19, 21-18 से हराया। वहीं ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की मिक्स डबल्स जोड़ी प्रतियोगिता से बाहर हो गई। सेमीफाइनल में आज भारतीय जोड़ी को जापान की साइका होबारा और युइची सिमोगामी ने हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। सबसे पहले 1942 अ लव स्टोरी फिल्म का गीत आप सुनेंगे कुमार सानू की आवाज में, जावेद अख्तर के बोल और संगीत, आर टी बर्मन का।

0: थाना पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: फिल्म संगीत के अंतर्गत राजेश रोशन का संगीतबद्ध किया गया गीत आइए अब सुनते हैं उदित नारायण की आवाज में, बोल जावेद अख्तर की, और फिल्म का नाम है दस्तक।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। इस समय आप हैं विविध भारती चंडीगढ़ के संग एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। एक अच्छा रोल मॉडल कैसे बने? क्या आपने कभी ऐसा बॉस के साथ काम किया है जो बहुत ज्यादा दबाव में होने के बावजूद शांत और सकारात्मक रहता हो? शायद आपने ऐसे सहकर्मी के आदर्श माने हो जो हमेशा दूसरों के लिए कुछ ज्यादा ही करता हो। अब विचार करें कि दूसरे आपके व्यवहार को किस तरह देखते हैं। क्या आपको लगता है कि आप अपने आसपास के लोगों के लिए एक अच्छे रोल मॉडल हैं? आपको शायद इसका एहसास न हो, लेकिन आपके कार्य, दृष्टिकोण, नजरिया और नैतिकता संभव आपके टीम के सदस्यों को प्रभावित कर रहे हैं और उनके द्वारा प्रतिबिंबित हो रहे हैं। आज के इस लम्हे प्रोग्राम में हम एक अच्छे रोल मॉडल बनने के लाभों पर चर्चा करेंगे तथा ये भी कि आप एक अच्छे रोल मॉडल बनने के लिए क्या कर सकते हैं। पहले तो ये क्वेश्चन है कि एक रोल मॉडल क्या है, होता कौन है? मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार लोग दूसरों के व्यवहार को देखकर और उनकी नकल करके विकास करते हैं। विशेष रूप से बंडूरे ने पाया कि व्यवहार नीचे की ओर बहता है। दूसरे शब्दों में, एक समूह अपने नेताओं से संकेत लेता है। इसीलिए यदि आप ईमानदारी और खुलेपन जैसे मजबूत गुणों का प्रदर्शन करते हैं तो आप अपने टीम के सदस्यों को भी इसी तरह से व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। लेकिन जो लीडर बुरे व्यवहार का अभ्यास करते हैं या उसे पुरस्कृत करते हैं, वे ऐसे संस्कृति विकसित करने की संभावना रखते जिससे व्यक्ति टीम के हितों से पहले अपने हितों का प्राथमिकता देता है। अपनी टीम के लिए आदर्श बने मेरे दोस्तों। अच्छे रोल मॉडल का अपने आसपास के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उनका व्यापक सम्मान किया जाता है। संगठन ऐसे नेताओं को चाहते हैं जो दूसरों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करते हैं। इसीलिए अच्छे रोल मॉडल को पदोन्नति के लिए सबसे पहले विचार किया जाता है। उन्हें संगठन में गठबंधन बनाना भी आसान लगता है क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत ब्रांड मजबूत होती है। यदि आप एक अच्छे रोल मॉडल बनने के लिए कदम उठाते हैं, आप संभवतः एक अधिक प्रभावी टीम और व्यवसाय बना पाएंगे और आप अपने करियर को भी बढ़ावा देंगे। अच्छे रोल मॉडल आमतौर पर कुछ ऐसे व्यक्तित्व लक्षण या गुण प्रदर्शित करते हैं जैसे आत्म जागरूकता, सकारात्मकता, विनम्रता, सहानुभूति, व्यवसायिकता और ईमानदारी। आइए इनके बारे में अधिक विस्तार से जाने आज के लम्हे प्रोग्राम में आपके आरजे चेतन से। दोस्तों, आत्म जागरूकता, क्या आप जानते हैं कि आप कार्यस्थल पर क्या भूमिका निभा रहे हैं? आप अपनी आत्म जागरूकता बढ़ाकर इसका पता लगा सकते हैं। यह आपके व्यवहार और दूसरों पर आपके प्रभाव पर ईमानदारी और उत्पादकता से विचार करने की क्षमता है। एक बार जब आप खुद को और अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं तो आप आत्मनियंत्रता और आत्मनियम भी विकसित कर सकते हैं और इस तरह से अपनी भावनाओं और भलाइयों का प्रबंधित करके आप जो करते हैं और जिस तरह से करते हैं उसे अपने मूल्य के साथ संरेखित करने की क्षमता रखेंगे तो आप खुद के प्रति अधिक सच्चे होंगे और दूसरों को अधिक सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। बदले में आपके संभवतः सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी। नकारात्मक लोग उन लोगों को नीचा गिरा देते हैं जिन्हें उनके साथ काम करना होता है। इसके विपरीत सकारात्मक दृष्टिकोण एक ऊर्जावान काम करने वाली टीम भावना विकसित करने में मदद कर सकता है। कोई भी व्यक्ति हर समय खुश नहीं रह सकता, लेकिन आप मुश्किल परिस्थितियों में

अवसरों की तलाश कर सकते हैं। इसीलिए इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि आपकी टीम किसी भी स्थिति में क्या कर सकती है, न कि इस बात पर कि वो क्या नहीं कर सकती है, और उन सफलताओं पर निर्माण करने में उनकी मदद करें। अच्छे रोल मॉडल विनम्रता का अभ्यास करता है। जब उन्हें यकीन नहीं होता कि क्या करना है तो वे ईमानदार होता है, सवाल पूछने और सीखने में खुश होता है, वह अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने में सहज होता है, वह जहां भी श्रेय देना चाहिए देता है और वे रैंक या अनुभव के पीछे नहीं छिपता। सहानुभूति ने अपने लोगों की भावनात्मक जागृति को समझना शामिल है। आप ध्यानपूर्वक सुनने का उपयोग करके सहानुभूति विकसित कर सकते हैं, ताकि आप वास्तव में सुन सके और समझ सके कि लोग आपको क्या बता रहे हैं। जितना अधिक आप इस तरह से टीम के सदस्यों की पहचान करने और उनसे जुड़ने में सक्षम होंगे, उतना ही अधिक विश्वास आप बन पाएंगे और वे संबंध उतना ही मजबूत होगा। व्यावसायिकता का प्रदर्शन करने का मतलब है अपने कार्यों और अपने काम को एक उत्कृष्ट मानक पर रखना। इसमें सिर्फ काम पूरा करना ही शामिल नहीं है, ये ईमानदारी और दूसरों के प्रति सम्मान जैसे गहरे व्यक्तिगत गुणों को दर्शाता है। आप अपनी व्यक्तित्व को कुछ सरल कार्यों से प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे समय पर बैठक में पहुंचना, उचित ढंग से कपड़े पहनना और बातचीत करना, तथा विश्वसनीय और कर्तव्यनिष्ठ होना। ईमानदारी का मतलब है सही कारणों से सही काम करना। भले ही इसका मतलब सबसे आसान विकल्प न अपनाना हो, अगर आप ईमानदार और प्रामाणिकता और नैतिक नेतृत्व के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हैं, तो आपकी टीम के सदस्य संभवतः अच्छे टीम वर्क की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता का साथ प्रतिक्रिया देंगे। ईमानदारी के साथ जीना एक अच्छे रोल मॉडल बनने की आधारशील है, क्योंकि ये उन गुणों में से एक है जो व्यक्ति और संगठन अपने नेताओं में सबसे ज्यादा तलाशता है। इस महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारा प्रोग्राम लम्हे सुनते रहिए आपके आरजे चेतन से। आपके पास एक अच्छा रोल मॉडल बनने के लिए जरूरी गुण हो सकते हैं, लेकिन आप इन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रभाव के लिए व्यवहार में कैसे लाएंगे? अपनी टीम के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करना। किसी भी रोल मॉडल के लिए मजबूत संचार कौशल महत्वपूर्ण है। वे आपको उच्च गुणवत्ता वाले कनेक्शन को बढ़ावा देना और विश्वास और सम्मान के आधार पर संबंध बनाने में मदद करेंगे। अपने संगठन के मूल्य का समर्थन करना। अच्छे रोल मॉडल अपने नियुक्त के काम करने के वंचित तरीकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना और अपने टीम के सदस्यों के व्यवहार को उसके अनुसार निर्देशित करते हैं। उदाहरण के लिए, आप कंपनी के कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रम के लिए स्वयं सेवक बन सकते हैं। ये किसी सहकर्मी के समावेश और जुड़ाव का समर्थन कर सकते हैं। उन्हें प्रासंगिक कर्मचारी संसाधन समूह में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करके, यदि वे मौजूद हैं, आप किसी भी बुरे व्यवहार से तुरंत और प्रभावी ढंग से निपटना भी सुनिश्चित करेंगे। सहयोगात्मक रूप से काम करना। अच्छे टीम खिलाड़ी अपने अहंकार को किनारे रखते हैं और समूह की भलाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक रोल मॉडल के रूप में ये एक ऐसे रवैया है जैसे आप निश्चित रूप में अपनाएंगे। एक कौशल मैट्रिक्स बनाइए और अपनी और अपने लोगों की ताकत, कमजोरियां और पसंदीदा कार्यशैली का आंकलन करें। फिर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सबसे उपयुक्त टीम की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां सौंपें। आप सभी अधिक सफल होंगे। नवाचार का समर्थन करना। जब नए कौशल हासिल करने और नए तकनीकों को अपनाने की बात आती है तो नेतृत्व करें जो आपके व्यवसाय में मदद करेंगे। एक रोल मॉडल के रूप में यह महत्वपूर्ण है कि आप वक्र से आगे रहें। पहल और रचनात्मक दिखाने वाले लोगों को प्रोत्साहित करें। टीम के सदस्यों को स्वनिर्देशित और सामाजिक सीखने के लिए समय दें और आकांक्षाओं को व्यवहारिक कार्रवाई में बदलने के लिए उपकरणों का उपयोग करें। With this very good information, this is Chetan signing off for today in Lamhe program. I'll get back to you in our next segment. Till then, have a great time. Bye, my dear friends. दोस्तों, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039।
आई रिपीट 09

0: फ्रेंड्स,
1: दोस्तों आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है spice.lamhe.vanilla, spice.lamhe.vanilla। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड एंड प्रोड्यूस्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर। आइए अब सुनते हैं साप्ताहिक कार्यक्रम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग में साइक्लिस्ट रिपन कुमार से सुनीता भगत की बातचीत।
1: सुहाना सफर आकाशवाणी के संग।
2: कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारी ओर से नमस्कार, और श्रोताओं का इस कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ सुनीता भगत, और मेरे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने साबित किया कि 50 की उम्र में जहां लोग कुछ ठहर सा जाते हैं, वहीं से इन्होंने एक नया इतिहास लिखना शुरू किया। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो भाई, इंसान जब मन में कुछ ठान लेता है ना, अपने सपने को पूरा करने का मन बना लेता है, तब हिम्मत हौसला सब उसके साथ हो जाते हैं, वो अपने सपनों को पूरा भी कर लेता है। तो आज हम इस कार्यक्रम में स्वागत कर रहे हैं रिपन कुमार जी का। रिपन कुमार जी के बारे में बहुत कुछ जानेंगे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो हम इनका स्वागत करते हैं। रिपन कुमार जी, नमस्कार।
3: नमस्कार मैम,
2: कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: एक व्यवसायी, और फिर आज आपकी जो प्रसिद्धि है, आपकी ख्याति है, जिसके लिए आप जाने जाते हैं, वो आप एक पेशेवर साइक्लिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। तो ये किस तरह से ये कहानी बनी, कुछ बताएं इसके बारे में।
3: मैं बैडमिंटन भी खेलता था, तो बीच में मैंने वॉक शुरू की थी। हमारे 37 में ग्रुप था गुड मॉर्निंग क्लब करके, तो मैंने उनके साथ वॉक करता था। तो वही 10,000 स्टेप मैंने देखा कि बंदे मेरे जो साथी है वो कम होते गए डेली, वो 7:15 बजे मैंने देखे आ रहे हैं सारे साइकिल उठा के।
2: अच्छा।
3: घर से वो क्या करते हैं, साइकिल उठा के सीधा पहले 42 वाली लेके जाते थे और फिर बाद में सैर करने आते थे। तो मुझे था कि मैं भी साइकिलिंग करके देखूं, पर मैं सबको मना करता था साइकिलिंग के लिए। मैं टू व्हीलर चलाने से भी इवन सबको मना करता था कि टू व्हीलर भी नहीं चलाना चाहिए, रिस्की है बड़ा आजकल। तो बट मैंने अपने ब्रदर इन लॉ से, उसने कोविड में एक साइकिल लिया था, तो मैंने उससे अपना, उससे पहले सारे ये कहने लगे कि पहले तू सैडल पे बैठना देख ले, अगर तू सैडल पे बैठ जाएगा तो ही साइकिल नया लेना, अदरवाइज तू पहले देख ले साइकिल चला पाएगा। तो मैंने उसको बोला भी मुझे साइकिल दे अपना, तो मैंने उसकी सर्विस वगैरह करवाई और मैं डेली लेक जाना शुरू कर दिया। मैंने लेक जाता था, 8 किलोमीटर जाना, 8 किलोमीटर आना।
2: अच्छा।
3: तो 16 किलोमीटर मेरी डेली हो जाती थी।
2: अच्छा, यहाँ पर मैं आपको रोकूंगी। आपने ये जो साइकिल चलाने का निर्णय लिया, क्या सिर्फ इसीलिए लिया कि आपके दोस्त जो हैं वो साइकिल चलाकर आते थे?
3: मेरा वेट अराउंड 100 kg था उस टाइम।
2: अच्छा, आप नॉर्मल वॉक के लिए नहीं जाते थे, क्योंकि आपका वजन बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए आपने सैर करना शुरू किया, और फिर देखा देखी आपने साइकिल चलाने का सोचा।
3: तो फिर बस लेक पे ग्रुप मिला, ग्रुप के साथ अटैच हुआ, तो साइकिल गिरी ग्रुप था, तो उनके साथ मैं साइकिलिंग स्टार्ट की। मैंने वही 30 किलोमीटर डेली, 32 इतना पहले चलाना शुरू किया।
2: और कितना वजन कम किया आपने?
3: मैंने अराउंड 22 kg कम कर लिया हुआ।
2: 22 किलो आपने कम किया साइकिल चला के, और कितने दिनों में?
3: मैम 3 साल हो गए मुझे साइकिलिंग करते, तो बीच में कम होता गया धीरे धीरे।
2: वैसे इस समय आपको देखकर, अब श्रोताओं को तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं देख पा रही हूँ स्टूडियो में कि आप कहीं से भी हमें नहीं लग रहे कि 100 किलो के थे। आप बहुत फिट लग रहे हैं, बहुत स्वस्थ लग रहे हैं, और ये बड़ी
3: अच्छी बात है। मैं कुछ भी खाता हूँ, मैं कोई डाइट कंट्रोल नहीं करता।
2: अच्छा।
3: मैं सब कुछ पिज्जा वगैरह जो भी, पर मैं साइकिलिंग डेली 100 चला लेता हूँ अभी।
2: अच्छा, तो जब आपका वजन कम हो गया,
3: हाँ जी,
2: तो फिर भी आपने साइकिल चलाना
3: नहीं छोड़ा?
2: नहीं छोड़ा।
3: तो मेरा जुनून तो बढ़ता ही गया ना साइकिलिंग का।
2: तो फिर पेशेवर साइकिलिंग की तरफ कब मुड़े?

0: मैम पे मैंने 2023 में मैंने डेली 100 शुरू कर दिया था। 2023 में ही मैंने 126 दिन लगातार 100 किलोमीटर चलाई है, चाहे तूफान हो चाहे बारिश हो कुछ भी हो। तो बीच में मैंने राइड शुरू की, क्लब है तो मैंने उनके साथ एक हमारी होती है BRM होती है, BRM राइड्स होती हैं, 200 किलोमीटर 300 400 600 ये जी। करते हैं तो हमारी एक SR सुपर इंडोर बनता है बंदा,
1: प्रतियोगिता राइड। हाँ
0: वो मतलब की राइड्स हैं, उसमें टाइम पीरियड होता है कि 600 किलोमीटर की राइड में हमें 40 घंटे मिलते हैं, 400 में 27 आवर्स मिलते हैं और 300 में 20 और 200 में 13.5 घंटे उस पीरियड में हमें वो पूरी करनी होती है और चेक पॉइंट क्लियर करने होते हैं, चेक पॉइंट्स बने होते हैं। पटियाला से मैंने काफी राइड्स की हैं, पटियाला से भी की हैं, दिल्ली से भी की हैं।
1: बस यही पूछने वाली थी मैं आपसे, फिर आप अपने शहर से कब निकले?
0: 24 में यहाँ से फिर निकल गया था, 2024 में मैंने लॉन्ग राइड शुरू कर दी थी।
1: और पहला सफर याद है?
0: पहला
1: कहां
0: मैंने
1: से कहां
0: तक 600 किलोमीटर का मैंने किया था,
1: चंडीगढ़ से
0: नहीं पटियाला से।
1: पटियाला से कहां?
0: पटियाला से हम गए थे बठिंडा, मलोट गए थे, मलोट से वापस पटियाला आके फिर इधर अपना जलंधर की तरफ।
1: तो ये सफर आपने यूं ही अपनी मर्जी से शुरू किया या कोई प्रतियोगिता?
0: नहीं प्रतियोगिता कह लो, मतलब की राइड होती है ये ओडक्स में, तो इसमें टाइम पीरियड मिलता है, इसमें कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं होता, तो इसमें टाइम पीरियड में अपनी राइड फिनिश करनी होती है।
1: अच्छा,
0: वो मैंने पहले सबसे पहली राइड मैंने 600 किलोमीटर की थी, तो मैंने 20 मिनट पहले ही खत्म की थी 40 घंटे से।
1: जी जी,
0: तो मेरी 20 मिनट पहले वो खत्म हुई थी। तो मैंने ऐसी राइड्स में अराउंड 49 राइड्स में कर चुका हूँ अभी तक। मेरी जो राइड्स हैं BRM राइड्स में 600 400 300 200 इवन के 1000 वाली भी मैंने तीन राइड्स लगाई हैं 2024 में।
1: अच्छा, तो रिपन जी हमें ये पता चला आपसे जब हम बात कर रहे थे इस प्रोग्राम से पहले कि आपने सिर्फ 40 दिनों में 8094 किलोमीटर की दूरी तय की है।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: तो ये दूरी कहाँ से कहाँ तक तय की आपने?
0: मैम बीच में पटियाला भी गया हूँ, बीच में बठिंडा भी गया हूँ, बट मैं लोकल ही रहा हूँ ज्यादा इस भारतमाला पे ज्यादा। तो मेरे साथ एक मेरी राइडर भी थी रजनी सिंह नाम है उनका।
1: अच्छा,
0: तो उन्होंने भी मेरे साथ ही चलाई है। तो हम सुबह निकलते थे कोई 3:30-4 बजे डेली और हम 2:30 बजे तक हमारी 200 किलोमीटर हो जाती थी।
1: ये कोई कैंपेन था?
0: कैंपेन था, कैन किड एक संस्था है जो कैंसर के बच्चों का इलाज कराती है। तो ऑल ओवर इंडिया था ये कंपटीशन, इसमें कोई अराउंड 2000 राइडर था जो साइकिल चला रहा था। उसमें था कि हमें हम 1 किलोमीटर चलाएंगे तो 1 किलोमीटर का बच्चों को 50 रुपीज जाएगा
1: जी।
0: तो उसमें हमने 12 लाख किलोमीटर
1: यानी फंड जुटाने के लिए आपने साइकिलिंग की।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: अपने साथियों के साथ।
0: हाँ जी हाँ जी, मैं लास्ट ईयर भी कर रहा हूँ, 3 साल से कर रहा हूँ।
1: तो यानी साइकिल चलाने का ये जो आपका सफर था ये आपकी फिटनेस के साथ भी जुड़ा रहा और साथ ही साथ एक किस्म की समाज सेवा भी आप कर रहे थे। तो आज भी आप ऐसे कैंपेन से जुड़े रहते हैं?
0: हाँ जी मैम, अभी किया मैंने ये चैलेंज, अभी ये फरवरी से था, मार्च में 4 फरवरी से 15 मार्च।
1: अच्छा जी,
0: अभी हुआ है।
1: तो अगर अब हम आपसे ये जानना चाहें कि देश के किन किन हिस्सों में आप साइकिल चला चुके हैं, हमारे श्रोता जरूर ये जानना चाहते होंगे।
0: मैं कश्मीर से कन्याकुमारी भी जा चुका हूँ।
1: अच्छा जी।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: कितने दिन का टूर था?
0: 16 दिन का था वो।
1: अच्छा, तो शुरू आपने किया यहाँ चंडीगढ़ से?
0: कश्मीर से मैम।
1: कश्मीर से शुरू किया?
0: शुरू किया था और कन्याकुमारी खत्म किया था।
1: तो ये जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर था आपका, बहुत सारी यादें जुड़ी होंगी आपकी इस सफर के साथ।
0: हाँ जी।
1: तो उस समय क्या महसूस हो रहा था आपको, किन किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा?
0: एक तो मेरी ड्रीम राइड थी
1: जी कह सकते हैं, क्योंकि कश्मीर से आपने शुरू किया और
0: इसके लिए मैंने इस राइड को करने के लिए मैंने 1200 किलोमीटर की राइड रजिस्टर कर चुकी करी हुई थी।
1: अच्छा,
0: पेमेंट भी की हुई थी मैंने, तो मैंने उसको छोड़ा राइड को। पटियाला से राइड थी वो 1200 किलोमीटर की, इसको जब मैं सिलेक्ट हुआ इस राइड में तो मुझे इनविटेशन आया, मेल आई मुझे कि आप सिलेक्ट हो गए हो, तो मैं ट्राई सिटी में से अकेला ही था।
1: अच्छा,
0: जाने वाला।
1: ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
0: तो मुझे था कि मैंने ये राइड तो फिनिश करनी करनी है किसी भी हालत में।
1: कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आप यहाँ से अकेले?
0: यहाँ से मैं अकेला था, वहाँ से अराउंड 150 राइडर्स थे हमारे साथ
1: जी।
0: तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150th बर्थडे पे तो ये राइड हुई थी जो गवर्नमेंट से स्पॉन्सर्ड राइड थी ये।
1: अच्छा,
0: तो वहाँ हमारा आने जाने का तो नहीं था, खाने पीने का सारा, रहने का सारा
1: सरकार की तरफ से था। तो कैसा रहा वो सफर?
0: बहुत अच्छा रहा मैम, बहुत बढ़िया रहा मेरा वो।
1: तो वो सब कुछ सरलता से ही चलता गया?
0: हाँ जी, मेरा कोई साइकिल भी खराब नहीं हुआ बीच में, ना पंचर हुआ साइकिल। तो
1: किस तरह की चुनौतियां उस सफर में थी?
0: मैं थोड़ा मौसम चेंज था बीच में, जैसे कश्मीर से चले तो ठंड थी, तो नीचे जम्मू आए तो थोड़ा सा कम ठंडा था।
1: वो तो आप जिस भी राज्य में गए होंगे तो वहाँ पे मौसम बदलता ही गया होगा,
0: बंगलोर वगैरह ज्यादा गर्मी थी। तो
1: राइड मौसम के हिसाब से,
0: मौसम के हिसाब से बारिश तो हुई नहीं हमारे, लास्ट वाले दिन बारिश हुई है कन्याकुमारी पहुँच के।
1: अच्छा,
0: और वो भी उस टाइम मेरी राइड फिनिश हो चुकी थी, उसके बाद बारिश हुई है।
1: तो ये जो सफर था

0: इतने दिनों का, तो वहाँ पे एक प्रतियोगिता ही थी, ये भी एक किस्म की, तो
1: हाँ
0: वहाँ
1: जी,
0: पे कुछ
1: इसमें कोई
0: रैंक थे या कुछ स्तर
1: रैंक
0: थे,
1: तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, रैंक राइड
0: कुछ
1: फिनिश करने
0: इनाम
1: के लिए
0: वगैरह थे? तो
1: कोई प्राइज नहीं था, मेडल था बस, ऐसा कुछ नहीं था, कोई प्राइज नहीं था, मेडल
0: आपने कौन सा
1: सर्टिफिकेट
0: मेडल
1: था।
0: जीता या कि
1: मैंने
0: सबको
1: मेडल मेरे
0: मेडल
1: को
0: दिए?
1: मिला, मैं डेली फर्स्ट सेकंड थर्ड पे फिनिश करता था राइड,
0: अच्छा जी।
1: मतलब कि मेरा मेरा ये टारगेट था कि मैं दिन दिन में फिनिश कर लूँ ताकि रात को ना चलानी पड़े।
0: तो रिपन जी, एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, आप एक बिजनेसमैन हैं और एक जो व्यापारी होता है उसके पास तो बिल्कुल भी समय नहीं
1: हाँ
0: होता
1: जी
0: है,
1: हाँ जी
0: तो व्यापार करना और फिर ये इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना, इस चीज में जुट जाना, है ना, पेशेवर तरीके से
1: मतलब
0: किसी चीज में
1: इसमें
0: जा,
1: जो मेरा
0: तो ये जो
1: साथ,
0: आपका, मैं कहूँ, समय जो है इसको किस तरह से बांटते हैं हम, टाइम मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, किस तरह से करते हैं आप ये सब?
1: जैसे मैं K2K में गया तो उसमें तो मेरी वाइफ ने मुझे पूरा साथ दिया, तो मैंने उसको पूछा था कि मैं देख सिलेक्शन हो जाएगी तो चला जाऊं मैं, तो
0: जी
1: पहले तो उसने बोला कि चलो होने दो, सिलेक्शन होने दो फिर देखते हैं, जैसे सिलेक्शन होगी तो सिलेक्शन हुई तो उसने पहले तो मना किया, बट वो भी मेरे मतलब कि एक्चुअली क्या है कि इस फील्ड में मैं अपनी वाइफ की वजह से हूँ, ना कि
0: अच्छा
1: मैं पहले फार्मा का काम नहीं करता था, मैं पहले इंश्योरेंस सेक्टर में था,
0: जी।
1: तो जब मेरी मैरिज हुई है तो हम, उसने अपनी जॉब छोड़ के फिर हमने फार्मा का बिजनेस का डिसीजन लिया कि हम फार्मा का अपना काम करते हैं, तो उसकी वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ, मतलब कि मैं तो स्टेप नहीं हूँ पीछे
0: जी,
1: उसकी।
0: बहुत अच्छी बात है, आप अपनी पत्नी को श्रेय दे रहे हैं इस बात का, तो खुशी हुई हमें ये सुनकर। तो अब हमें ये बताएं, पेशेवर साइक्लिस्ट जो आप हैं, तो ऐसा आपकी जिंदगी में कौन सा वो पल था, कौन सा क्षण था जो आपको लगा कि इस सफर में वो सबसे बड़ी चीज थी आपके लिए, सबसे बड़ा समय था वो?
1: मेरा कश्मीर से टू कन्याकुमारी जो मेरा कंप्लीट हुआ है, वही मेरा सबसे बड़ा ड्रीम था कि मैंने ये पूरी करनी है, वो जब पूरा हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो मेरा ड्रीम पूरा हो गया।
0: और अपने श्रोताओं को हम ये भी बता दें कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो है हमारे
1: हाँ
0: देश
1: जी,
0: की, ये
1: इंडिया
0: जो
1: बुक ऑफ रिकॉर्ड में, हाँ
0: जी
1: जी
0: किताब है जिसमें जिन लोगों के पास बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां होती हैं उनके नाम दर्ज किए जाते हैं, उसमें भी आपका नाम दर्ज है।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: पहले तो हम आपको बधाई देते हैं और
1: धन्यवाद।
0: यकीन कीजिए, हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि आप इस समय हमारे साथ हैं, आपका नाम उसमें दर्ज है। तो वो जो चीज़ थी, उसको किस तरह से लिया आपने? क्या खुशी थी, कुछ बेचैनी थी, या कैसा लगा आपको जब आपको ये पता
1: मैम
0: चला?
1: हम एक्चुअली रिकॉर्ड तो अपने आप बन गया, हम रिकॉर्ड के लिए नहीं चला रहा था मैं राइड, रिकॉर्ड के लिए नहीं, तो जब राइड हुई तो हमने जब साइट पे जाके देखा कि भी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में, कि मुझे किसी ने बताया अभी कि राइडर ने बताया मेरे कि भी ये आपका देखो, आप आपका इस पे रिकॉर्ड
0: आपने
1: बनाया, आपका ये
0: रिकॉर्ड
1: रिकॉर्ड
0: बनाया है
1: बनाया, आप
0: ये?
1: चेक करो इसको, आपका रिकॉर्ड ये दर्ज हो सकता है, आप इसके लिए अप्लाई करो। तो मैंने फिर जब उनको मेल किया इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड को, फिर उनका फिर आगे से उनको सारा वेरिफिकेशन हुई,
0: अच्छा।
1: तो उन्होंने बताया कि हाँ जी आपका हो गया है, आपका मतलब कि रिकॉर्ड ठीक है, ये रिकॉर्ड आपका
0: मतलब
1: बनता
0: पूरे
1: है।
0: देश में इतनी
1: हाँ
0: साइकिल
1: जी,
0: किसी ने नहीं चलाई
1: किसी
0: थी
1: ने नहीं
0: जितनी
1: चलाई थी
0: आपने
1: 40 days
0: चलाई?
1: में। हाँ जी,
0: अच्छा जी,
1: एशिया में, इवन एशिया में,
0: एशिया
1: एशिया का
0: में,
1: रिकॉर्ड भी बना मेरा, अभी
0: ओके।
1: एशिया का भी बन गया हुआ।
0: अच्छा
1: हाँ
0: जी,
1: जी हाँ जी
0: ये तो बहुत अच्छी बात है,
1: हाँ
0: ये तो
1: जी
0: बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपका
1: हाँ
0: कि
1: जी हाँ
0: एशिया में भी सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड जो है वो आप ही के नाम पर
1: हाँ
0: है।
1: जी मैम,
0: चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप मुझे ये बताएं, अभी भी वो जुनून होगा
1: हाँ जी
0: शुरुआत
1: हाँ
0: में,
1: जी हाँ जी हाँ
0: तो
1: जी,
0: आज भी कितने साल हो गया अब आपको पेशेवर साइक्लिस्ट के रूप
1: मैं
0: में?
1: 3 साल हो गए,
0: 3 साल हो
1: तीन
0: गए,
1: साल हो गए
0: तो आज भी आप उसी जुनून के साथ
1: हाँ जी
0: साइकिल
1: मैम, हाँ
0: चलाते
1: जी
0: हैं?
1: हाँ जी मैम, मैं 1,05,000 3 साल में चला चुका हूँ अभी तक, मतलब 1,05,000 मेरे किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, तो मैं डेली 100 चला लेता हूँ,
0: अच्छा।
1: अब मैंने कसम नहीं खाई कि मैं डेली 100 चलाऊंगा, मैं कभी किस दिन कोई घर में ज़रूरत है तो मैं फिर उस टाइम कम भी कर लेता हूँ, पर मैं डेली ही चलाता हूँ, डेली मेरा है ये रूटीन, डेली का है कि
0: आप ये
1: मैं
0: जो साइकिल चला रहे हैं, आप अपने स्वास्थ्य का तो ध्यान रख ही रहे हैं, और जानना हम यहाँ ये चाहते हैं कि इस चीज़ को आप अगर समाज सेवा के साथ जोड़ना चाहें, जैसे हमारे बच्चे हैं या युवा हैं, आजकल आप देख ही रहे हैं
1: हाँ
0: उनकी
1: जी
0: ज़िंदगी किस तरह की हो गई है,
1: हाँ जी
0: मोबाइल फ़ोन से वो बाहर नहीं निकलते हैं
1: हाँ
0: और कैद से होकर रह गए हैं अपने ही, जिसे हम कहें अपने एक शेल में वो कैद हो गए हैं, बाहर निकलना या खेलों में हिस्सा लेना ये थोड़ा सा कम हो गया है।
1: हाँ जी
0: तो आप ये जो काम कर रहे हैं, किस तरह से आप बच्चों को या युवाओं को अपने साथ, क्या कभी आपने जोड़ने की कोशिश की है या
1: हाँ
0: जोड़
1: जी
0: रहे हैं या सोच रहे हैं इसके बारे में कुछ?
1: नहीं हाँ जी मैम, मेरे साथ राइडर्स हैं और जो यंग राइडर्स भी हैं जो मेरे साथ साइकिलिंग करते हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि मतलब कि मेन तो पहले उठने का है, मेन सुबह उठना
0: जी।
1: सबसे मेन तो उठना है, अगर
0: और
1: उठ
0: जो
1: गए और
0: आज की
1: फिर
0: पीढ़ी यही काम नहीं कर
1: हाँ
0: रही
1: उठती
0: है।
1: नहीं है सुबह के, आज की

0: तो उठती नहीं है
1: जी
0: ना
1: बिल्कुल
0: बच्चे कहाँ।
1: बिल्कुल,
0: मैं तो अपनी बेटी को बोलता हूँ वो नहीं उठती सुबह जल्दी।
1: आप देखिए ना, 2-3 बजे जब सोएंगे तो सुबह तो
0: हाँ
1: नींद
0: नहीं,
1: नहीं
0: मेरा तो मैं
1: खुलेगी।
0: 9 बजे सो जाता हूँ मैं तो। मैं सुबह, मैंने 4 बजे उठना है और मैंने 5 बजे साइकिल पे निकल जाना है।
1: देखिए, आप जैसे जो लोग हैं ना, वही प्रेरणा बनते हैं समाज के लिए, और अगर आपके साथ कुछ युवा साइक्लिस्ट इस समय जुड़े हुए हैं तो ये अच्छी बात है।
0: हाँ जी
1: तो वो अपने आप ही आपके साथ आए, या आपने
0: हाँ।
1: कुछ मेहनत की उनको अपने साथ लाने के लिए, कोई
0: नहीं
1: ऐसा
0: मैं
1: प्लान
0: तो
1: किया, कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज किया?
0: नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं किया। मतलब आज साथ में जुड़ते गए क्लब के साथ, जो जैसे हमारा क्लब है जो चंडीगढ़ एंडेवर क्लब है, तो उसमें जो बीच में आते हैं यंगस्टर आते हैं, तो हमने मेरे साथ लंबी लंबी राइड्स करते हैं, वो जाते हैं मेरे साथ।
1: अच्छा, तो रिपन कुमार जी, आपके इस उपलब्धि के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, और पेशेवर जो आप साइकिल चलाने वाले बने हैं, और बहुत सारी चुनौतियों को भी आपने पार किया है। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा, आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, आप व्यापार भी करते हैं और फिर साइकिल भी चलाते हैं। अच्छा, ये बताइए, कुछ और रुचियां हैं आपकी, कुछ और पसंद करते हैं?
0: मैम सिंगिंग मेरा है, थोड़ा सिंगिंग की तरफ
1: अच्छा, गाते हैं आप?
0: गा लेता हूँ मैं, पता मेरा
1: गाना गाते हैं
0: गाना
1: आप,
0: गा
1: यानी
0: लेता हूँ।
1: संगीत में रुचि है
0: हाँ जी हाँ
1: आपकी,
0: जी
1: जब समय मिलता है संगीत
0: हाँ
1: सुनते
0: जी
1: भी हैं
0: हाँ
1: और
0: जी
1: गाते भी
0: गा भी
1: हैं।
0: लेता हूँ। हाँ जी हाँ जी
1: अच्छा, अगर आप गा लेते हैं तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो फिर सुनाए ना कुछ हमारे श्रोताओं को,
0: हाँ जी मैम। तो
1: कोई भी आपका पसंदीदा गीत, कुछ लाइनें, कुछ
0: हाँ जी
1: पंक्तियां।
0: मैम, ये अपना नमक हराम का है सॉन्ग,
1: नमक हराम, राजेश
0: हाँ
1: खन्ना और
0: राजेश
1: अमिताभ
0: खन्ना।
1: बच्चन की
0: हाँ हाँ
1: फिल्म थी
0: हाँ
1: जो,
0: हाँ
1: जी, बहुत बढ़िया फिल्म थी, गाने भी
0: मुकेश जी का
1: बहुत
0: गाना है,
1: अच्छे थे।
0: मुकेश जी का। तो मैं वैसे रफ़ी जी के गाने ज़्यादा सुनता हूँ, तो मैम मैं 2 लाइनें सुना देता
1: जी
0: हूँ।
1: जरूर।
0: दिए

0: जैसे तीर चलते हैं, हाँ हाँ हाँ दिए जलते हैं।
1: अरे वाह वाह, बहुत ही सुंदर आपने गाया। और आपको ये बता दूं, ये गीत मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा, किशोर कुमार जी ने ये गीत गाया था।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: बहुत ही बढ़िया गीत है। तो यही सुनवा दें आपको या कुछ और सुनना चाहेंगे?
0: यही
1: सुन लेते
0: यही
1: हैं।
0: सुनवा दो।
1: अगली बातचीत करने से पहले ये गाना सुन लेते हैं।

0: अच्छा जी, तो श्रोताओं आपका कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। आपने रिपन कुमार जी की फरमाइश पर ये गीत सुना, बहुत ही प्यारा सा। और रिपन जी, अब मुझे ये बताएं, फिट इंडिया मूवमेंट जो एक भारत सरकार का कैंपेन था, उसमें आपने पार्टिसिपेट किया था, तो आपने हमें बताया कि 150 जो साइकिल चालक थे उन्हें चुना गया, और उनमें आप अपने शहर के एकमात्र प्रतिनिधि थे। तो इस दौरान आपने कितने किलोमीटर की दूरी तय की थी?
1: मैं तकरीबन 4000 किलोमीटर।
0: 4000 किलोमीटर?
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: और कहाँ से कहाँ तक था वो?
1: मैम, कश्मीर से कन्याकुमारी।
0: अच्छा, अब बात हम आपसे ये करना चाहते हैं कि ये जो आप पेशेवर साइकिल चालक हैं, इसे आप आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, ये तो बात तय है।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: इसे आप अपने समाज सेवा के साथ जोड़ने का कुछ प्लान कर रहे हैं? अच्छा,
1: वीकडेज में।
0: आपने कभी सोचा है कि मैं इस चीज को आगे बढ़ाऊं, कुछ बच्चों को और प्रेरित करूं, कुछ युवाओं को प्रेरित करूं, घर से निकालूं, उनको कहूं कि आप बाहर निकलिए, साइकिल चलाइए, सेहत के लिए बहुत जरूरी है? कभी इस बारे में सोचा, किसी एनजीओ के साथ मिलकर या कुछ इस तरह का कुछ आपने प्लान किया हो?
1: हाँ जी, मैं आगे कुछ सोच रहा हूँ कि आगे कुछ प्लान करूँ।
0: अब जैसे हमारे बच्चे हैं या युवा
1: हाँ
0: साथी हैं,
1: उनको तो प्रेरित करता ही रहता हूँ मैं, सबको, बच्चों को भी, कि चलानी चाहिए साइकिल।
0: अच्छा, घर में जो आपके सदस्य होंगे,
1: हाँ जी,
0: तो आपसे कुछ प्रेरणा लेते हैं?
1: हाँ,
0: वो भी निकलते
1: बेटी
0: हैं
1: मेरी
0: सुबह
1: घर
0: सुबह?
1: पे चलाती है, ट्रेनर पे चला लेती है।
0: अच्छा।
1: ट्रेनर मैंने घर पे रखा हुआ है, उस पे करती। मैं तो उसको बोलता हूँ कि तू मेरे साथ चल साइकिलिंग पे, तो साइकिल तो मेरे पास और भी है साथ में साइकिल।
0: आपके गली मोहल्ले के जो लोग हैं आपसे प्रेरणा पाते
1: हाँ जी,
0: होंगे?
1: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी।
0: तो आपके साथ चल पड़ते हैं वो या?
1: हाँ, जो मेरे एक लोकल हैं, चलते कई बार करते हैं मेरे साथ, लेक तक राइड करते हैं वो, लेक तक जाते हैं। मैं
0: अच्छा।
1: मतलब कि जैसे डेली 100 करता हूँ, तो मैं 50 किलोमीटर तो ग्रुप के साथ ही करता हूँ, तो उसके बाद फिर मैं बाकी जो 50 किलोमीटर है या जो भी है, मैं बाद में अकेला करता हूँ फिर वो।
0: अच्छा, ये तो हमने की घर या मोहल्ले स्तर की बातचीत। हमने आपसे पहले जाना कि कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए भी आपने साइकिलिंग की है,
1: हाँ जी मैम,
0: उसके बारे में कुछ बताएं।
1: मैम 3 साल से मैं कर रहा हूँ, जब से मैं जुड़ा हूँ तब से मैं कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए, कैन किड संस्था है जो छोटे बच्चों का कैंसर का इलाज करती है, तो इधर कुराली में है वो,
0: अच्छा
1: चंडीगढ़
0: जी।
1: में। तो उनका हर साल ही ऐसा कंपटीशन होता है कि थ्रू आउट इंडिया के होता है, पूरा पैन इंडिया होता है वो, तो उसमें अराउंड 2000 राइडर होते हैं। तो उसमें क्या है कि हम जब साइकिल चलाते हैं तो उनको 1 किलोमीटर का 50 रुपीज उनको डोनेशन आती है।
0: अच्छा,
1: तो ऐसे मैं 3 साल से ही चला रहा हूँ, तो मेरा होता है कि जितना मैं ज़्यादा से ज़्यादा चला लूँ, जितना मेरी तरफ से सहयोग हो जाएगा उनको, बच्चों को।
0: देखिए, आपके साइकिल का जो पेडल है, हम कह सकते हैं कि उसकी जो रफ्तार है, वो इन बच्चों की जिंदगी के लिए एक वरदान साबित हो रही है,
1: हाँ जी,
0: है
1: हाँ
0: ना?
1: जी,
0: आप फंड जुटाते हैं
1: हाँ
0: उनके
1: जी,
0: लिए,
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: तो ये बहुत अच्छी बात है, और हमें उम्मीद है कि आप आगे भी ऐसा करते ही रहेंगे। और हमारे जो युवा विशेषकर ये कार्यक्रम सुन रहे हैं या बच्चे सुन रहे हैं, उन्हें एक प्रेरणा जरूर मिलेगी कि जिंदगी में आप जो भी करें, साथ साथ कुछ एक ऐसा काम भी करें जिससे आपका स्वास्थ्य जो है वो भी सही रहे, और आप किसी न किसी रूप में अपने समाज की भी सेवा कर पाए। अच्छा रिपन जी, ये जो खास काबिलियत है आपकी, ये जो खास

0: चीज जुड़ी हुई है आपकी जिंदगी के साथ, तो इससे जुड़ी हुई कुछ और घटनाएं हुई हैं आपके साथ? अगर कुछ है तो वो हमें बताएं, साझा करें।
1: मैम अभी मेरी डॉक्यूमेंट्री आनी है तो अभी।
0: अच्छा, अभी मतलब आप डॉक्यूमेंट्री
1: इंडिया
0: फिल्म
1: बुक ऑफ
0: बनी
1: रिकॉर्ड
0: है?
1: में, हाँ जी, मेरे ऊपर उन्होंने बनाई है डॉक्यूमेंट्री।
0: अच्छा,
1: तो अभी वो जब रिलीज होगी तो मैं आपको उसका लिंक जरूर भेजूंगा।
0: जी जरूर जरूर, आप
1: हाँ
0: जरूर भेजिएगा, हमें
1: हाँ
0: खुशी
1: जी
0: होगी वो देखकर।
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: एक फिल्म बन रही है आपके ऊपर,
1: हाँ जी छोटी छोटी
0: शॉर्ट फिल्म?
1: डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म है। हाँ जी हाँ जी
0: हाँ, तो वो भी बनने वाली है?
1: हाँ जी हाँ जी।
0: अच्छा,
1: इससे पहले तो सिर्फ न्यूज़ पे ही, न्यूज़ चैनल पे ही मेरा है
0: हाँ,
1: अपना, पेपर्स में ही मेरे बारे में आया काफ़ी।
0: अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पे आप आ चुके हैं
1: हाँ,
0: और समाचार पत्रों में भी आपके बारे में बहुत
1: समाचार
0: कुछ
1: पत्रों
0: छपता
1: में
0: रहता
1: आया हूँ,
0: है।
1: समाचार पत्रों में आया हूँ।
0: तो कैसा महसूस करते हैं आप जब अपने बारे में पढ़ते हैं या सुनते
1: अच्छा
0: हैं या
1: लगता है,
0: देखते हैं?
1: बहुत अच्छा लगता है, बढ़िया
0: आपको
1: लगता है।
0: आपको उस समय ये एहसास होता होगा कि कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट कर रही
1: हाँ
0: हैं
1: जी
0: आप
1: हाँ जी
0: समाज के
1: हाँ
0: लिए।
1: जी हाँ जी हाँ जी
0: चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है और हमें उम्मीद है कि आगे भी आपकी ये जो लोकप्रियता है ऐसी ही बढ़ती रहेगी और आपकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म का हमें इंतजार रहेगा।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ।
0: रिपन जी, आपके साथ बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। यूं ही प्रेरणा बनते रहिए हमारे समाज के लिए। आप हमारे स्टूडियोज में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: सुहाना सफर आकाशवाणी के संग। इस कार्यक्रम में आज हमारे श्रोताओं ने एक फार्मा व्यवसायी जो आज पेशेवर साइकिल चालक के रूप में जाने जाते हैं, उनके साथ की हुई बातचीत सुनी। कैसे उन्होंने अपनी जीवन शैली को बदला, अपनी सेहत को सुधारने के लिए साइकिलिंग को चुना और फिर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम दर्ज हुआ। तो दोस्तों, जब मन ठान ले तो राहें खुद बन जाती हैं। मुश्किलें चाहे कितनी भी हों, मंजिल नजर आ ही जाती है। हौसला और विश्वास आपके साथ होना तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। बस मन को मनाना है तो कुछ भी हासिल करना मुश्किल नहीं है। इरादे मजबूत होने चाहिए, हालात भी रास्ता देने लगते हैं। तो हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे से दृढ़ निश्चय से ही होती है और यही हमने आज के इस कार्यक्रम से जाना। हमें पूरी उम्मीद है कि आप तक ये बात भली भांति पहुंची होगी और आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। आपको ये कार्यक्रम भी पसंद आया होगा, ऐसी भी हमें उम्मीद है। अब कार्यक्रम का समय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। सुनीता भगत को दीजिए आप अनुमति। चलते चलते आपको बता दूं, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अश्वनी कुमार।
1: सुहाना सफर आकाशवाणी के संग।
2: अभी आप सुन रहे थे

हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर। अब से कुछ ही देर में शाम के 6 बजने वाले हैं और आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: ये आकाशवाणी है। अब आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग को न्यूनतम करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। 30 जून तक चलने वाले अभियान के लिए 1600 से अधिक दल गठित किए गए हैं। इसके अलावा उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने वाले जिलों के लिए 500 दल बनाए गए हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी के निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये उपलब्धि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योग प्रबंधित परिणाम उन्मुख संस्थानों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
1: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहाँ से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीनें जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीनें जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि इनका निर्माण भारत में होना चाहिए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ नाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य

0: मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए, जहां महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने केरलम में मादक पदार्थों के खिलाफ समन्वित अभियान के अंतर्गत 24 किलो से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए हैं। चक्रव्यूह अभियान के अंतर्गत कोच्चि, मलप्पुरम और तिरुवनंतपुरम में मेथक्वालोन, मेथमफेटामाइन और हशीश का तेल सहित कई मादक पदार्थ जब्त किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल पर किया जाएगा। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ से उंग जाए और किम वॉन हो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 MHz ते आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: आओ सुनते हैं तीसरी मंजिल फिल्म दा गीत। मोहम्मद रफी ते आशा भोसले दी आवाजा, बोल हसरत जयपुरी दे।

0: हुण तुसी सुनिया ए गीत असी आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे एफ एम 107.2 मेगाहर्ट्ज ते हुण तो कुछ पलां च तुसी सुनोगे प्रदेशक समाचार पहला 6:10 ते हिंदी विच साडे केंद्र तो ते उस तो बाद 6:20 ते पंजाबी विच आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो
1: नमस्कार यह आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा अतिथि अध्यापकों को नियमित करने के संबंध में दिए गए आदेश के बाद अतिथि अध्यापकों ने सरकार का आभार व्यक्त किया। सरकार ने कहा न्यायालय का फैसला जल्द लागू होगा। पलवल जिले में हथीन पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 बदमाशों को अवैध हथियारों समेत गिरफ्तार किया और जील में किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति पारंगत करने के लिए विशेष प्रशिक्षण का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है। भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। जनरल द्विवेदी ने कहा कि इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के योद्धाओं के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में युवा शक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। शिक्षा मंत्री आज चरखी दादरी के जोजू कला स्थित महिला महाविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मंत्री ने महाविद्यालय की 650 छात्राओं को स्नातक एवं स्नातकोत्तर की डिग्रियां प्रदान की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बेटियां अब देश व प्रदेश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पूरी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बेटियों को पढ़ाना और उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना प्रदेश सरकार का मूल मंत्र है, इसीलिए सरकार ने प्रत्येक 20 किलोमीटर के दायरे में एक राजकीय महिला महाविद्यालय खोलने का संकल्प लिया है, ताकि किसी भी बेटी को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर ना जाना पड़े और उसकी पढ़ाई बाधित ना हो। मंत्री ने कहा कि जोजू कला महिला महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराकर महिला सशक्तिकरण की नई इबारत लिख रहा है। उन्होंने कहा कि जिस गांव की बेटियां कभी सीमित अवसरों तक सिमटी रहती थी, आज वहां बेटियां स्वर्ण पदक प्राप्त कर नई उपलब्धियां हासिल कर रही हैं। उन्होंने छात्राओं से आह्वान किया कि वे केवल नौकरी पाने तक सीमित ना

0: बल्कि लोगों को दिशा देने के लिए समाज का नेतृत्व भी करें। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा अतिथि अध्यापकों को नियमित करने के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी किए जाने के बाद अतिथि अध्यापकों के प्रतिनिधिमंडल ने आज खेल मंत्री गौरव गौतम के निवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एवं खेल मंत्री गौरव गौतम का धन्यवाद व्यक्त किया। खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि ये उन हजारों अध्यापकों के करीब 20 वर्षों के लंबे संघर्ष की जीत है जिन्होंने लगातार अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाई। श्री गौरव गौतम ने कहा कि देश व प्रदेश के विकास को गति प्रदान करने में अध्यापकों की अहम भूमिका है। प्रदेश सरकार शिक्षकों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और न्यायालय के फैसले को जल्द लागू किया जाएगा।
1: जिस प्रकार से आप लोगों का पक्ष हरियाणा सरकार ने माननीय न्यायालय में रखा और उससे सिर्फ हमारे पलवल के नहीं पूरे हरियाणा के गेस्ट टीचरों का फायदा हुआ है और जो न्यायालय का आदेश आया है आपका उसको लाभ मिल चुके, ऐसा हम लोग जल्दी प्रयास करेंगे।
0: चंडीगढ़ जनगणना संचालन निदेशालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत मकान सूचीकरण ब्लॉक कार्य पूर्ण कर लिया है। निदेशालय द्वारा जारी नवीनतम प्रगति रिपोर्ट के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के सभी 2094 मकान सूचीकरण ब्लॉकों को कार्य पूर्ण कर लिया गया है जिससे चंडीगढ़ के सभी 10 जनगणना प्रभारों में 100% कवरेज हुई है। जनगणना संचालन निदेशक डॉ. नवजोत खोसा और प्रधान जनगणना अधिकारी निशांत कुमार यादव ने बताया कि चंडीगढ़ जनगणना संचालन निदेशालय अब जनगणना 2027 के अगले चरण अर्थात जनसंख्या गणना के लिए पूर्णतः तैयार है जो अगले वर्ष फरवरी में प्रस्तावित है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। पलवल जिले में हथीन पुलिस ने आज मुठभेड़ के बाद एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद हुए हैं जिनमें 12.5 बोर का राइफल नुमा हथियार, 315 बोर का कट्टा पिस्तौल व भारी मात्रा में कारतूस शामिल हैं। आरोपियों की उत्तर प्रदेश नंबर की कार भी जब्त की गई है। मुख्यालय में तैनात उप पुलिस अधीक्षक साहिल ढिल्लो ने बताया,
2: आरोपियों ने पुलिस पार्टी को टक्कर मारते हुए गाड़ी को होटल की तरफ भगा लिया। पुलिस ने उनके पीछे अपनी गाड़ी लगाई। पूरे जिले में नाकाबंदी की गई। मुंडकटी थाने के सामने नाका लगाया, वहां पर वाहनों की भीड़ के चलते वो गाड़ी रुक गई। आरोपियों ने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किए। हमारे एक कांस्टेबल देवेंद्र के पैर में गोली भी लग गई। आरोपियों ने गाड़ी को मरोली गाँव की तरफ मोड़ लिया और पुलिस के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करते रहे और उनकी गाड़ियों के टायर के ऊपर गोली मारी गई। गोली लगने की वजह से टायर फट गई और गाड़ी रुक गई। पलवल पुलिस ने फायर किया जिससे एक आरोपी के दोनों पैरों में गोली लग गई और उनको काबू किया गया।
0: उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में पहचान उत्तर प्रदेश के इटावा जिला निवासी अक्रम कृष्ण आलोक माधव गुप्ता के रूप में हुई है। श्री ढिल्लो ने कहा कि फरार आरोपी विपुल द्विवेदी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के विभिन्न थानों में लूट, डकैती, अपहरण, जानलेवा हमलों के अभियोग दर्ज हैं। किसानों को रासायनिक खादों व जहरीले कीटनाशकों से मुक्ति दिलाने और पारंपरिक एवं वैज्ञानिक तरीकों से प्राकृतिक खेती में पारंगत करने के लिए जींद में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान हमेटी में 5 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जो कल समाप्त होगा। इस शिविर में विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रदेश भर से आए प्रगतिशील किसानों को आधुनिक और प्राकृतिक खेती के गुर सिखाए जा रहे हैं। संस्थान के मुख्य प्रशिक्षक डॉक्टर सुभाष ने मीडिया से बातचीत में बताया कि यह प्रशिक्षण रासायनिक खादों और कीटनाशकों के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है। अंधाधुंध प्रयोग ने हमारे भोजन और उत्पादन को जहरीला बना दिया है।
3: इस समय हमारे यहाँ पे प्राकृतिक खेती के ऊपर 5 दिवसीय प्रशिक्षण चला हुआ है। प्राकृतिक खेती जो जहर मुक्त गो आधारित प्रकृति के अनुकूल प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा की जाती है वो करने की जरूरत है, क्योंकि रासायनिक कीटनाशकों ने रासायनिक उर्वरकों ने हमारे भोजन को उत्पादन को जहरीला बना दिया है। हमारी जमीन की उपजाऊ शक्ति कम होती जा रही है, हवा पानी प्रदूषित होता जा रहा है। बहुत सारी प्रजातियां जैसे आप देख रहे हो केंचुआ है, मधुमक्खी है, चिड़िया है, इस विलुप्त होती जा रही है। इन सबको देखते हुए जरूरी हो गया है कि हम रसायन के प्राकृतिक तरीके से खेती को बढ़ावा दें।
0: प्रशिक्षण कर रहे गांव रंधाना के प्रगतिशील किसान दलबीर चहल ने बताया,
4: किसानों की ट्रेनिंग से प्राकृतिक खेती और जैव मुक्त खेती विषय है और करीब हरियाणा के 300 किसानों को चुना गया है जो प्रगतिशील किसान है। हमारे 300 किसान वो किसान है जो अपने स्तर पर 5-6 साल 8-10 साल से कार्य कर रहे हैं और बहुत बड़े स्तर पर किसानों को बड़ी बड़ी सभा करके और खेतों में जाकर धरातल पर कार्य कर रहे हैं। किसान सरकार से मिलकर चलेंगे और मोटिवेट करने का काम करेंगे, किसान जैव मुक्त खेती को अपनाएं।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
6: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत विच जिस सौर क्रांति का आगाज किया सी उसका असर हुण दिखाई देन लगा है। भारत विच एक एक करके 30 लाख तो वध परिवारां दी छत ते सोलर पैनल लग चुके हैं। तुसी वी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़न लई रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in। सूर्य घर।
7: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी अमन देव तो प्रदेशक खबरां सुनो। पहला बुलेटिन दी खास खबरां। पंजाब मंत्रिमंडल ने सरकारी विभागों में ठेके ते काम करने वाले 65,000 तो वध मुलाजमां नूं नियमित करन दा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भड़के आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम विच देश विदेश के लोगों नाल अपने विचार सांझे करनगे। भारतीय चोण कमिशन ने पंजाब विच वोटर सूचियों की विशेष तिब्बर सोध SIR अधीन वोटर सूचियों के प्रकाशन संबंधी समा सारणी विच सोध की है। खरड़ा वोटर सूचियां 31 जुलाई की थां हुण 3 अगस्त नूं प्रकाशित कीतियां जाणगियां। पंजाब पुलिस मुखी गौरव यादव ने अज अमृतसर का दौरा किया, सीनियर अधिकारियों नाल अमन कानून की हालत का जायजा लिया। पंजाब ते हरियाणा के बहुते हिस्सों में अज सवेरे गरज चमक नाल मीह पैण कारण लोगों नूं गर्मी तो कुछ राहत मिली है। हुण खबरां विस्थार नाल। पंजाब मंत्रिमंडल ने सरकारी विभागों में ठेके ते काम करने वाले 65,000 तो वध कर्मचारियों नूं नियमित करन दा फैसला लिया है। मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते अते पेंशन नाल संबंधित बकाए दे हल लई मंत्रिमंडल दे पैनल दा भी पुनर्गठन किया है। भ्रष्टाचार दे मामलों की तेजी नाल सुनवाई लई 7 विशेष अदालतों की स्थापना नूं भी मंजूरी दी गई है। एक प्रैस कानफ्रेंस दौरान फैसलों के वेरवे सांझे करदे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब राज आउटसोर्सड परसनल कंट्रैक्चुअल इंगेजमेंट विच तब्दीली बारे बिल 2026 तहत आउटसोर्सड ग्रुप सी ते ग्रुप डी कर्मचारियों जिन्होंने 5 साल की लगातार सेवा पूरी की है नूं सीधे तौर ते सरकारी कंट्रैक्चुअल रोजगार अधीन लिया जाएगा।
8: ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਆਜੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਗੈਰ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਚ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਟੋਟਲ 65,048 ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੂਗਾ।
7: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 7 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। SAS ਨਗਰ ਵਿੱਚ 3 ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 1-1 ਅਦਾਲਤ ਹੋਏਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ 63 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके 31 मई नूं आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम विच देश विदेश के लोगों नाल अपने विचार सांझे करनगे। यह हर महीने प्रसारित होने वाले रेडियो प्रोग्राम का 134वां एपीसोड होगा। मन की बात प्रोग्राम आकाशवाणी ते दूरदर्शन के समुचे नैटवर्क

0: ਦੋਸਤੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
1: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़।
0: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों तक,
1: घर घर जन जन तक चंडीगढ़ के साथ साथ देश के 5 राज्यों तक पहुंचने वाला चंडीगढ़ का एकमात्र रेडियो चैनल,
0: आपका अपना FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़,
1: जो चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी और उत्तराखंड में बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
0: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान।
2: ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ दुनिया के हर कोने में पहुंचाए आपका ब्रांड।
2: जग घूमे थारे जैसा ना कोई।
0: तो देर क्यों जनाब, अपने कारोबार की एडवर्टाइजमेंट बुक करवाएं।
1: चले आएं आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846, चंडीगढ़ का STD कोड है 0172
0: और हमारा ईमेल आईडी है akashwanichandigarh@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी चंडीगढ़।
3: आकाशवाणी चंडीगढ़ तो इस वेले तुसी सुन रहे हो पंजाबी गीत ते पंजाबी गीतां दी इस लड़ी च। अगला गीत पेश कर रहे हैं प्रीत हरपाल दी आवाज़ च।

0: श्रोते बस कुछ ही पलां दे इंतजार बाद तुसी सुनोगे विविध भारती मुंबई तो अगला प्रोग्राम विशेष जयमाला।
1: आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है अभिनेता पंकज कपूर ने।
1: प्यारे फौजी भाइयों, मेरा यानी पंकज कपूर का आप सभी सुनने वालों को बहुत बहुत नमस्कार। जब मैं छोटा सा था तो जयमाला कार्यक्रम बड़े प्यार से सुना करता था। आज मुझे बेहद खुशी इस बात की हो रही है कि मैं खुद जयमाला प्रोग्राम पेश करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैंने अपनी पसंद के कुछ गीत चुने हैं जो आपको सुनवाऊंगा और साथ ही साथ कुछ दिलचस्प बातें सुनाने की कोशिश भी करूंगा। इससे पहले कि मैं आपको अपनी दिलचस्प बातों से बोर करने की कोशिश करूं, चलिए एक गाना सुन लेते हैं।
2: Oh,

Llevo me

फौजी भाइयों, मुझे बेहद अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आजकल की फिल्मों में शायरी, संगीत, धुनें बहुत ही बेकार किस्म की होती हैं। इसलिए मैं आपको जो भी गाने सुनवाऊंगा वो जरा पुराने किस्म के गाने होंगे। देखिए, ख्यालात तो वैसे मेरे नए हैं लेकिन पसंद थोड़ी पुरानी है। अब अगला गाना सुनिए।

फौजी भाई हो, मेरा ख्याल है कि हर एक बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वह फौज में भर्ती हो। आप यकीन मानिए कि मैं भी एक जमाने में बच्चा था, मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं फौज में भर्ती हो जाऊं, लेकिन कुछ दिक्कतें थीं जो मेरे सामने आ रही थी। मैं आपको बताता हूं अपनी दिक्कतों के बारे में। पहली दिक्कत तो यह थी कि 16 बरस की उम्र में मेरा कद 5 फुट था, 20 बरस की उम्र में मेरा कद 5 फुट 2 इंच था, अब मैं 32 बरस का हूं तो मेरा कद 5 फुट 4.5 इंच हो गया है, अब मैं फौज में भर्ती हो सकता हूं। लेकिन अब उम्र शायद ज्यादा हो गई, तो अगर आपके जहन में कोई ऐसा ख्याल आए कि किस तरह से मैं फौज में भर्ती हो सकता हूं तो मुझे जरूर लिखिएगा। जब तक आप इसके बारे में सोचें तब तक ये गाना सुन लेते हैं।

फौजी भाई, फौज में भर्ती होने का जुनून इतना ज़बरदस्त था मेरे अंदर कि जब मैं छोटा सा था तो एक बड़ा ही मज़ेदार किस्सा है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा अपने बचपन के बारे में। लड़ाई चल रही थी उस ज़माने में, ज़ाहिर है आप जानते हैं कि ब्लैकआउट होता है। ब्लैकआउट की वजह से हम लोग घर के अंदर नहीं सो पाते थे, पंखा नहीं चलता था, तो हम लोग छत पर सोते थे। मैं लुधियाने का रहने वाला हूँ, खुली छतें होती हैं वहाँ पर, तो छत के ऊपर हम सोते थे। उन्हीं दिनों कुछ दिन पहले ही मेरी सालगिरह गुजरी थी, तो सालगिरह पर मेरे पिता ने मुझसे पूछा कि भाई तुम्हें क्या चीज़ पसंद है, तुम अपनी सालगिरह पर क्या लेना चाहोगे। तो जाहिर है कि मेरे अंदर बड़े ज़बरदस्त जज्बात उठे और लड़ाई चल रही थी, और मैंने कहा कि साहब मुझे तो बंदूक चाहिए। साइकिल पर बैठ के मैं उनके साथ मार्केट में गया। खिलौने की दुकान से हमने एक बहुत बड़ी सी बंदूक खरीदी, वो कॉक वाली बंदूक जिसका पटाखा कुछ ठा ऐसे करके बजता है। तो वो बंदूक लेकर हम घर लौटे, और रात के वक्त जब हम छत पे सो रहे थे तो वो बंदूक और वो कॉक का छोटा सा डब्बा मैंने बड़ी हिफाजत से अपने पास रखा, और रात में जब ऊपर आसमान पर जहाज आपस में लड़ाई करने की कोशिश कर रहे थे तो आप यकीन मानिए कि वो कॉक फिट करके बंदूक मेरी उन जहाजों की तरफ ही रहा करती थी। तो इससे कम से कम आपको ये तो यकीन होगा कि वाकई मैं फौज में भर्ती होना चाहता था और देश के लिए कुछ करना चाहता था। खैर, ऐसे किस्से तो मैं आपको सुनाने की कोशिश करता रहूंगा, चलिए तब तक एक गाना और सुन लेते हैं।

0: अपनी कोशिशों के बावजूद फौजी भाइयों, फौज में भर्ती होने की ख्वाहिश तो मेरी पूरी ना हो सकी, लेकिन बचपन से ही एक और चीज से मुझे बेहद प्यार था, एक्टिंग। तो आज एक्टिंग करने में मैं सफल जरूर हूं। कई सालों से एक्टिंग कर रहा हूं। पहले मैंने थिएटर में काम किया, अब भी थिएटर करता हूं, फिल्में भी करता हूं, टेलीविजन भी करता हूं। आप लोगों तक शायद कुछ फिल्में पहुंची होंगी, शायद एक टेलीविजन सीरियल करमचंद के नाम से मैं किया करता हूं, वो पहुंचा होगा, आपने देखा होगा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थिएटर के जमाने का एक छोटा सा किस्सा मैं आपको सुनाना चाहूंगा। एक शेर अफगन नाम का प्ले हम लोग दिल्ली में कर रहे थे, मैं उसमें शेर अफगन का रोल कर रहा था, और भी बहुत से किरदार थे। एक डॉक्टर का किरदार करने वाले साहब थे। शेरोगन का आखिरी एक्ट चल रहा था, क्लाइमैक्स था, बड़े जोरों पे प्ले चल रहा था, ऑडियंस बैठी हुई थी, और ठीक आखिर में ये साहब मेरी एक लंबी स्पीच के बाद इनका एक जुमला था जो ये डॉक्टर साहब जुमला बोलना भूल गए। तो मैं ऑडियंस की तरफ, मैंने पीठ की इनकी तरफ पलटा, और मैंने इनसे कहा बहुत आहिस्ता सी आवाज में कि देखिए आप अपना जुमला भूल गए हैं, जरा बोलिएगा अपना जुमला। तो पलट के मुझसे कहते हैं अरे अब तो मैं बोल चुका हूं, चलिए आप खुद ही चला लीजिए अब आगे। तो फौजी भाइयों, जिस तरह आप सरहद के सामने होते हैं और हमेशा आपके ऊपर खतरा बना रहता है, इसी तरह जरा दूसरी तरह का, लेकिन हमारे लिए भी जब हम ड्रामा कर रहे होते हैं, ऑडियंस के सामने नाटक करना और इस तरह की गलतियां होना उतना ही बड़ा जोखिम होता है। खैर, ये तो थिएटर के दिनों का एक छोटा सा किस्सा था, लेकिन फिल्मों की बात कर रहे हैं तो एक गाना और सुन लें, फिर आगे बातें होंगी, है ना?
1: आया।

0: दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे। शागिर्द फिल्म का यह गीत मुझे बेहद पसंद है। इसका रिदम बहुत ही खूबसूरत है और लता जी ने इसको लाजवाब तरीके से गाया है।
1: विशेष जयमाला कार्यक्रम का बाकी हिस्सा आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स और हवन सामग्री।
3: सुबह जलाओ शाम जलाओ
4: देव दर्शन धूप।
3: सुबह जलाओ शाम जलाओ
4: देव दर्शन धूप।

0: विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं सुप्रसिद्ध अभिनेता पंकज कपूर द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम।
1: लाला जी के गायन के बारे में कुछ भी बात कहना बहुत ही मुश्किल है। शायद सिर्फ इतना कहना काफी होगा कि लता जी के बिना हिंदुस्तानी फिल्म गायन शायद मुमकिन था ही नहीं। लता जी का नाम जब आप लेते हैं तो उनके साथ साथ एक और नाम जुड़ता है, मोहम्मद रफी साहब, जो मुझे बेहद पसंद हैं और बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब गायक रहे हैं। उन्हीं का एक गाना काला बाजार फिल्म से मैं आपको सुनवाना चाहूंगा।

फौजी भाइयों, हिंदुस्तानी फिल्मों का म्यूजिक बहुत ही खूबसूरत होता है, ये बात हम सब हिंदुस्तानी जानते हैं। मेरे लिए ये प्रोग्राम पेश करना और इसमें 9 गाने आपको सुनवाना एक तरह से थोड़ी सी परेशानी भी थी। कौन से वो 9 गाने चुने जाएं जो मैं आपसे कहूं कि मुझे बेहद पसंद है? मुझे तो सैकड़ों गाने पसंद हैं, वो सब मैं आपको कैसे सुनवा सकता हूं? लेकिन इस प्रोग्राम का एक खास वक्त होता है जिसके दरमियान इस प्रोग्राम को ख़त्म करना पड़ता है, जिस वजह से मैं आपको वो सारे गाने तो नहीं सुनवा पाऊंगा जो मुझे बेहद पसंद हैं, लेकिन यही 8-9 गाने जो अक्सर मेरी ज़बान पर रहते हैं, जिनको मैं सालों से सुनता आया हूं और जिनको सुनना आज भी अच्छा लगता है, वो कुछ गाने मैं आपको सुनवा रहा हूं। एक गाना जो अब मैं आपको सुनवाने वाला हूं, वो मेरा ख्याल है आज से 15-20 साल पहले शायद मैंने पहली बार सुना होगा, लेकिन आज भी मैं उसे सुनता हूं तो वो उतना ही ताज़ा लगता है जितना कि पहली बार सुना था तब लगा था।

विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं सुप्रसिद्ध अभिनेता पंकज कपूर द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का बाकी हिस्सा आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। जब, जब, जब,

प्रसिद्ध अभिनेता पंकज कपूर द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का बाकी हिस्सा आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। जब जब किसी

0: देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
2: फौजी साथियों, आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है सुप्रसिद्ध अभिनेता पंकज कपूर ने।
3: एक छोटा सा किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। ये तब का किस्सा है जब थिएटर से मैंने सिनेमा में कदम रखा। सबसे पहली फिल्म मैंने श्याम बेनेगल साहब के साथ की थी। फिल्म का नाम था आरोहण। आरोहण की शूटिंग करने के लिए हम कलकत्ते से तकरीबन 200 किलोमीटर आगे गए। फिल्म में एक सीन था जिसमें गांव में बाढ़ आ गई है और बाढ़ आने की वजह से मैं वहां काम करता हूं और लोगों को मदद करने की कोशिश करता हूं। तो ये सीन फिल्माने के लिए श्याम बेनेगल साहब ने वहां पे एक डैम था उसको खुलवाने के लिए कहा। वो नदी तकरीबन हमेशा सूखी रहती है, लेकिन डैम खुल जाने की वजह से, डैम के वो लोहे के दरवाजे जो होते हैं वो खुल जाने की वजह से तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए कुछ पानी उस सूखी जगह पर आ जाएगा, जिससे हम बाढ़ का इफेक्ट दे सकते थे। तो साहब हमने वो सीन शूट करना शुरू किया, लोहे के दरवाजे खुले, गांव के ही कुछ 200-300 लोग थे जो हमारी मदद कर रहे थे ये सीन शूट करने में। तो सीन ये था कि मैं और ओमपुरी साहब जो उस फिल्म के हीरो थे, हम दोनों इन गांव के लोगों की मदद कर रहे हैं, इन्हें इस बाढ़ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो साहब 1-1.5 घंटे में ये सीन शूट हो गया, 2 कैमरे लगे हुए थे। शूटिंग खत्म होने के बाद मैं और ओमपुरी साहब उसी पानी में तैरते रहे काफी देर तक। अचानक तैरते तैरते हमें लगा कि अब हमें बाहर किनारे की तरफ जाना चाहिए, तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं थी, तो मैंने तैरना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक मुझे इस बात का एहसास हुआ कि पानी का बहाव उल्टा है। मैं किनारे की तरफ तैरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी मुझे पीछे की तरफ खींच रहा था। अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद मैं 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। मैंने पीछे पलट कर देखा तो मुझे वो लोहे के दरवाजे दिखाई दिए जहां से पानी गिर के नीचे आता था। तो मैंने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया। मैं चिल्लाया तो वहां आसपास जो लोग खड़े थे उन्हें लगा कि मैं मजाक कर रहा हूं शायद। एक सेकंड में बिजली की तरह मेरे दिमाग से यह ख्याल गुजरा कि अगर मैं इस वक्त किनारे पर नहीं पहुंचता हूं तो ये पानी मुझे खींचकर उन लोहे के दरवाजों के पास ले जाएगा, मैं उससे टकराऊंगा और डूब जाऊंगा। तो साहब 3-4 बार चिल्लाने के बाद कोई 1-2 लोगों ने मेरी तरफ गौर किया, एक आध शख्स कूदा भी और उन्होंने मुझे वहां से बाहर निकाल लिया। तो फौजी भाइयों, कहने का मतलब यह है कि जिस तरह आपको अपनी जिंदगी में जोखिम उठाना पड़ता है, वैसे ही हमारे काम में भी, एक्टिंग में काम करते हुए बड़े बड़े जोखिम उठाने पड़ते हैं। तो फौजी भाइयों, अपने वादे के मुताबिक मैंने आपको बोर तो किया, लेकिन दूसरे वादे के मुताबिक आपको गीत सुनवाना अभी बाकी है। तो लीजिए ये गीत सुनते हैं।

0: फौजी भाइयों, हर एक अभिनेता की यह ख्वाहिश होती है कि उसकी ऑडियंस उसे प्यार करे, याद रखे और उसके अभिनय से उनका दिल कभी ना भरे।
1: अभी न जाओ छोड़ कर।

0: बाबाजी भाइयों, इस उम्मीद के साथ कि आप मुझे याद रखेंगे, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।
1: फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे सुप्रसिद्ध अभिनेता पंकज कपूर। ये रिकॉर्डिंग आपने सुनी विविध भारती के संग्रहालय से।

0: ਜਾਨੀ ਕਿਤਨੀ। ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੈਮਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਐਫ ਐਮ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ।
1: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़।
0: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों तक,
1: घर घर जन जन तक चंडीगढ़ के साथ साथ देश के 5 राज्यों तक पहुंचने वाला चंडीगढ़ का एकमात्र रेडियो चैनल,
0: आपका अपना FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़,
1: जो चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी और उत्तराखंड में बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
0: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान।
2: ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ दुनिया के हर कोने में पहुंचाए आपका ब्रांड।
2: जग घूमे थारे जैसा ना कोई,
0: तो देर क्यों जनाब, अपने कारोबार की एडवर्टाइजमेंट बुक करवाएं।
1: चले आएं आकाशवाणी चंडीगढ़,

0: सेक्टर 34 डी या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846। चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172
1: और हमारा ईमेल आईडी है akashwanichandigarh@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: आकाशवाणी चंडीगढ़ तो हुन पेश ने मुख प्रदेशक खबरां। फौज मुखी जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय हथियारबंद सेनावां ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लई तैयार ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र बाईपास प्रोजेक्ट लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अते केंद्रीय सड़क आवाजाई अते राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का धन्यवाद किया। हरियाणा के सिख्या मंत्री महिपाल टांडा ने कहा कि 2047 तक भारत नूं विकसित राष्ट्र बनाउण दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे टीचे नूं हासिल करन विच नौजवान महत्वपूर्ण भूमिका निभाउणगे। गैस्ट अध्यापकां नूं रेगुलर करन दे पंजाब अते हरियाणा हाईकोर्ट दे हुक्म तो बाद गैस्ट अध्यापकां ने हरियाणा सरकार दा धन्नवाद कीता। सरकार ने कहा कि हाईकोर्ट दा फैसला जल्दी ही लागू कीता जावेगा। पलवल जिले विच हथिन पुलिस ने मुकाबले तो बाद एक अंतरराज्जी गिरोह दे 4 मैंबरां नूं गैर कानूनी हथियारां समेत गिरफ्तार कीता। हरियाणा के खेतीबाड़ी अते किसान भलाई मंत्री श्याम सिंह राणा ने यमुनानगर की पाल धर्मशाला विच अहिल्याबाई होलकर की 321वीं जन्म वरेगंढ मौके आयोजित प्रोग्राम विच समाज नू अहिल्याबाई होलकर के आदर्शां की पालना करन दा सद्दा दित्ता। पंचकूला के नवनियुक्त मेयर श्याम लाल बांसल ने अज अपना अहुदा संभाल लिया। मेयर ने कहा कि वह पंचकूला नूं जोना विच वंड के शहर दियां समस्यावां दा हल करनगे। अज पंजाब लोक भवन विखे सिक्किम गोवा ते तेलंगाना दा स्थापना दिवस मनाया गया। जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद ने अकादमिक सैशन 2026-27 लई बीटेक कोर्सां नूं छड्ड के सारे अंडर ग्रैजुएट अते पोस्ट ग्रैजुएट कोर्सां विच दाखले लई ऑनलाइन अर्जियां दी आखरी मिति 25 जून तक वधा दित्ती है। ए सन हुण तक दियां मुख प्रदेश खबरां।
1: आवाज जो दिल से दिल तक पहुंची, आवाज जो वक्त के पार पहुंची,
2: यादें जो हर पीढ़ी में जिंदा रहीं। साल था 1936 जब भारत में पहली बार गूंजा
1: ये आकाशवाणी है।
2: तभी से शुरू हुआ एक सुनहरा सफर, सूचना संस्कृति खेल और संगीत का अद्भुत संगम।
1: 90 वर्षों से आकाशवाणी है भारत की आवाज।
2: कभी किसान का साथी तो कभी सैनिक की प्रेरणा,
1: कभी घर की सुबह की शुरुआत तो कभी देर रात का साथी।
2: आज जब डिजिटल दुनिया है, आकाशवाणी अब भी दिलों को छू रहा है अपनी सादगी, अपनी गरिमा और अपनी परंपरा से।
1: आइए मिलकर मनाएं आकाशवाणी के सुनहरे 90 वर्षों का सफर, क्योंकि ये है भारत की आत्मा।
2: 90 वर्षों के आगे भी सफर जारी है, नई आवाजों नई कहानियों के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, आकाशवाणी है।
0: FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। स्रोत अपने वादे मुताबिक असी हाजिर होए हां लेके फेर तो कुछ होर पंजाबी गीत। आगाज कर रहे हां गिप्पी गरेवाल ते दिलजीत दोसांझ दे गाए इस गीते नाल।

0: हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी।
1: दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। हवा महल के अंतर्गत श्रृंखला सुनो कहानी में आज आपको सुनाता हूं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी प्रेम का मूल्य। बृहस्पति छोटे देवताओं का गुरु था। उसने अपने बेटे कच्छ को संसार में भेजा कि शंकराचार्य से अमर जीवन का रहस्य मालूम करे। कच्छ शिक्षा प्राप्त करके स्वर्गलोक को जाने के लिए तैयार था। उस समय वह अपने गुरु की पुत्री देवयानी से विदा लेने के लिए आया। कच्छ ने कहा, देवयानी, मैं विदा लेने आया हूं। तुम्हारे पिता के चरण कमलों में मेरी शिक्षा पूरी हो चुकी है, कृपा कर मुझे स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दो। देवयानी ने कहा, तुम्हारी कामना पूर्ण हुई। जीवन के अमृत्व का वो रहस्य तुम्हें ज्ञात हो चुका है जिसकी देवताओं को सर्वदा इच्छा रही है। किंतु तनिक विचार तो करो, क्या कोई और ऐसी वस्तु शेष नहीं जिसकी तुम इच्छा कर सको? कच्छ ने कहा, कोई नहीं। देवयानी बोली, बिल्कुल नहीं। तनिक अपने हृदय को टटोलो और देखो, संभवतः कोई छोटी बड़ी इच्छा कहीं दबी पड़ी हो। कच्छ ने फिर कहा, मेरे उषाकालीन जीवन का सूर्य अब ठीक प्रकाश पर आ गया है। उसके प्रकाश से तारों का प्रकाश मध्यम पड़ चुका है। मुझे अब वह रहस्य ज्ञात हो गया है जो जीवन का अमृत है। देवयानी ने कहा, तब तो संपूर्ण संसार में तुमसे अधिक कोई भी व्यक्ति प्रसन्न न होगा। खेद है कि आज पहली बार मैं यह अनुभव कर रही हूं कि एक अपरिचित देश में विश्राम करना तुम्हारे लिए कितना कष्टप्रद था। यद्यपि यह सत्य है कि उत्तम से उत्तम वस्तु जो हमारे मस्तिष्क में थी तुमको भेंट कर दी गई है, इसका तनिक भी विचार न करो और हर्ष सहित मुझे जाने की आज्ञा दो। कच्छ ने कहा। देवयानी ने कहा, तुम्हारे लिए इस वन को छोड़ना बहुत सरल है। यह वही वन है जिसने इतने वर्षों तक तुम्हें अपनी छाया में रखा, तुम्हें लोरियां दे देकर थपथपाता रहा। तुम्हें अनुभव नहीं होता कि आज वायु किस प्रकार क्रंदन कर रही है? देखो देखो, वृक्षों की हिलती हुई छाया को देखो, उनके कोमल पल्लवों को निहारो। वे वायु में घूम नहीं रहे बल्कि किसी खोई हुई आशा की भांति भटके भटके फिर रहे हैं। एक तुम हो कि तुम्हारे होष्ठों पर हंसी खेल रही है, प्रसन्नता के साथ तुम विदा हो रहे हो। कच्छ ने कहा, मैं इस वन को किसी प्रकार मातृभूमि से कम नहीं समझता, क्योंकि यहां ही मैं वास्तव में आरंभ से जन्मा हूं। इसके प्रति मेरा स्नेह कभी कम ना होगा। सच कहता हूं देवयानी, कभी कम ना होगा। देवयानी ने कहा, वह देखो देखो, सामने बड़ का वृक्ष है जिसने दिन के घोर ताप में, जबकि तुमने पशुओं को हरियाली में चरने के लिए छोड़ दिया था, तुम पर प्रेम से छाया की थी। कच्छ ने कहा, ए वन के स्वामी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। जब और विद्यार्थी यहां शिक्षा प्राप्ति हेतु आए और शहद की मक्खियों की भनभनाहट और पत्तों की सरसराहट के साथ साथ तेरी छाया में बैठकर अपना पाठ दोहराए, तो मुझे भी स्मरण रखना। देवयानी ने कहा, और हां, तनिक वनमती का भी तो ध्यान करो, जिसके निर्मल और तीव्र प्रवाह का जल प्रेम संगीत की एक लहर के समान है।

बोला, उसको बिल्कुल नहीं भूल सकता, उसकी स्मृति सदा बनी रहेगी। देवयानी बोली, किंतु प्रिय सखा, तुम्हें स्मरण कराना चाहती हूं कि तुम्हारा और भी कोई साथी था जिसने बेहद प्रयत्न किया कि तुम इस निर्धनता के दुख से भरे जीवन के प्रभाव से प्रभावित ना हो। यह दूसरी बात है कि प्रयत्न व्यर्थ हुआ, उसकी स्मृति तो जीवन का एक अंग बन चुकी है देवयानी। देवयानी ने फिर कहा, मुझे वे दिन स्मरण है जब तुम पहली बार यहां आए थे। उस समय तुम्हारी आयु किशोर अवस्था से कुछ ही अधिक थी, तुम्हारे नेत्र मुस्कुरा रहे थे, तुम उस समय उधर वहां वाटिका की बाढ़ के समीप खड़े थे। हाँ, उस समय तुम्हारे शरीर पर श्वेत वस्त्र थे, हाँ? ऐसा दिखाई देता था जैसे उषा ने अपने प्रकाश में स्नान किया है। तुम्हें संभवतः स्मरण होगा, मैंने कहा था यदि मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं तो मेरा सौभाग्य होगा। देवयानी ने कहा, स्मरण क्यों नहीं है? मैंने आश्चर्य से तुमसे पूछा था कि तुम कौन हो, और तुमने अत्यंत नम्रता से उत्तर दिया था कि मैं इंद्र की सभा के प्रसिद्ध गुरु बृहस्पति का सुपुत्र हूं। फिर तुमने बताया कि तुम मेरे पिता से वो रहस्य मालूम करना चाहते हो जिससे मुर्दे जीवित हो सकते हैं। कच्छ ने कहा, मुझे संदेह था कि संभव है तुम्हारे पिता मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार न करें। देवयानी फिर बोली, किंतु जब मैंने तुम्हारी स्वीकृति के लिए समर्थन किया तो वो इस विनती को अस्वीकार न कर सके। उनको अपनी पुत्री से इतना अधिक स्नेह है कि वो उसकी बात टाल ही नहीं सकते। कच्छ बोला, और जब मैं 3 बार विपक्षियों के हाथों मारा गया तो तुम्ही ने अपने पिता को बाध्य किया था कि मुझे दोबारा जीवित करें। मैं इस उपकार को बिल्कुल नहीं विस्मृत कर सकता। देवयानी बोली, उपकार? उपकार? यदि तुम उसको विस्मृत कर दोगे तो मुझे बिल्कुल दुख ना होगा। क्या तुम्हारी स्मृति केवल लाभ पर ही दृष्टि रखती है? यदि यही बात है तो उसका विस्मृत हो जाना ही अच्छा है। कच्छ ने कहा, बहुत सी वस्तुएं हैं जो शब्दों द्वारा प्रकट नहीं हो सकती। हां, मैं जानती हूं, देवयानी बोली, मेरे प्रेम से तुम्हारे हृदय का एक एक अणु छिद चुका है, और यही कारण है कि मैं बिना संकोच के इस सत्य को प्रकट कर रही हूं कि तुम्हारी सुरक्षा और कम बोलना मुझे पसंद नहीं। तुम्हें मुझसे अलग होना अच्छा नहीं, यहीं विश्राम करो। कोई ख्याति ही हर्ष का साधन नहीं है। अब तुम मुझको छोड़कर नहीं जा सकते, तुम्हारा रहस्य मुझ पर खुल चुका है। नहीं नहीं देवयानी, नहीं, ऐसा ना कहो। देवयानी ने कहा, क्या कहा? नहीं, मुझसे क्यों झूठ बोलते हो? प्रेम की दृष्टि छिपी नहीं रहती। प्रतिदिन तुम्हारे सिर के तनिक से हिलने से, तुम्हारे हाथों के कंपन से तुम्हारा हृदय तुम्हारी इच्छा मुझ पर प्रकट करता है। जिस प्रकार सागर अपनी तरंगों द्वारा काम करता है, उसी प्रकार तुम्हारे हृदय ने तुम्हारी भाव भंगिमा द्वारा मुझ तक संदेश पहुंचाया। सहसा मेरी आवाज सुनकर तुम तिलमिला उठते थे। क्या तुम समझते हो कि मुझे तुम्हारी उस दशा का अनुभव नहीं हुआ? मैं तुमको भली भांति जानती हूं, इसीलिए अब तुम सर्वदा मेरे हो। तुम्हारे देवताओं का राजा भी इस संबंध को तोड़ नहीं सकता। कच्छ ने कहा, किंतु देवयानी, तुम ही हो। क्या इतने वर्ष अपने घर और घर वालों से अलग रहकर मैंने इसीलिए परिश्रम किया था? देवयानी बोली, क्यों नहीं, क्या तुम समझते हो

0: के संसार में शिक्षा का मूल्य है और प्रेम का मूल्य ही नहीं। समय नष्ट मत करो, साहस से काम लो, ये प्रतिज्ञा करो। शक्ति, शिक्षा, ख्याति की प्राप्ति के लिए मनुष्य तपस्या और इंद्रियों का दमन करता है। एक स्त्री के सामने इन सब का कोई मूल्य नहीं है। कच ने कहा, तुम जानती हो कि मैंने सच्चे हृदय से देवताओं से प्रतिज्ञा की थी कि मैं जीवन के अमृतत्व का रहस्य प्राप्त करके आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। देवयानी ने कहा, परंतु क्या तुम ये कह सकते हो कि तुम्हारे नेत्रों ने पुस्तकों के अतिरिक्त और किसी वस्तु पर दृष्टि नहीं डाली? क्या तुम ये कह सकते हो कि मुझे पुष्प भेंट करने के लिए तुमने कभी अपनी पुस्तक को नहीं छोड़ा? क्या तुम्हें कभी ऐसे अवसर की खोज नहीं रही कि संध्या काल मेरी पुष्प वाटिका के पुष्पों पर जल छिड़क सको? संध्या समय जब नदी पर अंधकार का वितान तन जाता था तो मानो प्रेम अपने दुखित मन पर मौन छा जाता। तुम घास पर मेरे बराबर बैठकर मुझे अपने स्वर्गिक गीत गाकर क्यों सुनाते थे? क्या यह सब काम उन षड्यंत्रों से भरी हुई चालाकियों का एक भाग नहीं जो तुम्हारे स्वर्ग में क्षम्य है? क्या इन कृत्रिम युक्तियों से तुमने मेरे पिता को अपना न बनाना चाहा था? अब विदाई के समय धन्यवाद के कुछ मूल्यहीन सिक्के उस सेविका की ओर फेंकते हो जो तुम्हारे छल से छली जा चुकी है। कच्छ ने कहा, अभिमानी स्त्री, वास्तविकता को मालूम करने से क्या लाभ? यह मेरा भ्रम था कि मैंने एक विशेष भावना के वश तेरी सेवा की और मुझे उसका दंड मिल गया, किंतु अभी वो समय नहीं आया कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकूं कि मेरा प्रेम सत्य था या नहीं, क्योंकि मुझे अपने जीवन का उद्देश्य दिखाई दे रहा है। अब चाहे तो मेरे हृदय से अग्नि की चिंगारियां निकल निकल कर संपूर्ण वायुमंडल को आच्छादित कर लें, मैं भली भांति जानता हूं कि स्वर्ग अब मेरे लिए स्वर्ग नहीं रहा। देवताओं की सेवा में यह रहस्य तुरंत ही पहुंचाना मेरा कर्तव्य है, जिसको मैंने कठिन परिश्रम के पश्चात प्राप्त किया है। इससे पहले मुझे व्यक्तिगत प्रसन्नता की प्राप्ति का ध्यान तनिक भी न था। क्षमा कर देवयानी, मुझे क्षमा कर, सच्चे हृदय से क्षमा का इच्छुक हूं। इस बात को सत्य जानना कि तुझे आघात पहुंचाकर मैंने अपनी कठिनाइयों को दुगना कर लिया है। देवयानी ने कहा, क्षमा? तुमने मेरे नारी हृदय को पाषाण की भांति कठोर कर दिया है, वो ज्वालामुखी की भांति क्रोध में भबक रहा है। तुम अपने काम पर वापस जा सकते हो, किंतु मेरे लिए शेष क्या रहा? केवल स्मृति का एक कटीला बिछोना और छिपी हुई लज्जा जो सर्वदा मेरे प्रेम का उपहास करेगी। तुम एक पथिक के रूप में यहां आए धूप से बचने के लिए, मेरे वृक्षों की छाया में आश्रय लिया, अपना समय बिताया। तुमने मेरे उद्यान के संपूर्ण पुष्प तोड़कर एक माला गूंथी और जब चलने का समय आया तो तुमने धागा तोड़ दिया, पुष्पों को धूल में मिला दिया। मैं अपने दुखित हृदय से श्राप देती हूं, जो शिक्षा तुमने प्राप्त की है वो सब तुमसे विस्मृत हो जाए। दूसरे व्यक्ति तुम्हारे से यह शिक्षा प्राप्त करेंगे, किंतु जिस प्रकार तारे रात में अंधियारे से संबंध स्थापित नहीं कर पाते बल्कि अलग रहते हैं, उसी प्रकार तुम्हारी यह विद्या भी तुम्हारे जीवन से अलग रहेगी। व्यक्तिगत रूप में तुम्हें इससे कोई लाभ न होगा, यह केवल इसलिए कि तुमने प्रेम का अपमान किया, तुमने नहीं समझा प्रेम का मूल्य। प्रेम का मूल्य, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी ये कहानी अभी आप सुनो कहानी श्रृंखला के अंतर्गत सुन रहे थे। प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई।
1: सुनो कहानी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

0: डंकी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में, इरशाद कामिल के बोल थे, प्रीतम का संगीत था। 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

भीड़ फिल्म का ये सोहर आप सुन रहे थे रोमी की आवाज में। शकील आजमी के बोल थे, अनुराग साइकिया का संगीत था। विविध भारती से ये है कार्यक्रम चित्रलोक।

तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या

0: नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 बीईएसटी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता सुनना न भूलिए शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में।
1: विविध भारती पर यह कार्यक्रम चित्रलोक।

0: सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: स्वानंद किरकिरे का लिखा गीत आप सुन रहे थे। कृष्णा कुमार और श्रेया घोषाल की आवाजों में फिल्म थी वेलकम टू सज्जनपुर।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी

यारियां फिल्म का गाना यो यो हनी सिंह और साथियों की आवाजें, गीत और संगीत यो यो हनी सिंह का। पानी पानी पानी पानी पानी और दिन भी सानी सानी सानी सानी सानी।

शादी के साइड इफेक्ट्स इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे फरहान अख्तर की आवाज में। स्वानंद किरकिरे के बोल थे, प्रीतम का संगीत था। इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है।

विविध भारती मुंबई तो हुणे तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम चित्रलोक। असी आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ ते। हुण तो कुछ ही पलां च असी आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तो समाचार रिले करांगे। 8:45 ते तुसी सुनोगे समाचार संध्या।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया, बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने

0: पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरमैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि सीएलपी नेता का चयन का कार्य एआईसीसी को सौंप देना चाहिए। इसके बाद एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरमैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक सीएलपी मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डीके शिवकुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डीके शिवकुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य जून 3 तारीख को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के सचेतक एग्री एसएस कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ टीवीके द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना डीएमके से इस्तीफा देने के तुरंत बाद टीवीके में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए टीवीके सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वयक की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
3: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
4: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बन

0: मैग्नेट बनाने की मशीनें हैं जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीनें हैं जो कि बहुत ही एक अच्छे बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि ये निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है

0: हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम बॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गए। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहू मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 1,75,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: असी आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे हैं एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ ते। आओ हुण सुनदे हां विविध भारती मुंबई तो अगला प्रोग्राम आपके लिए।
2: जौहर महमूद इन गोवा, ये नाम फिल्म का है। इसी फिल्म का ये गाना है। मुकेश की आवाज, कमर जलालाबादी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: घराना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। शकील बदायूनी के बोल थे, रवि का संगीत था। 2 जून, सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। अनारकली फिल्म का गीत हेमंत कुमार की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत।

का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म थी आपकी कसम। विविध भारती से ये है कार्यक्रम आपके लिए।

0: ज्वेल थे फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते

0: थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
4: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
5: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

रंगोली फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। शैलेंद्र के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था। इसी के साथ आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

23 अगस्त 1968 को दिल्ली में जन्मे के यानी कृष्ण कुमार कुन्नाथ ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले लगभग 3,500 जिंगल्स के लिए आवाज दी। क्रिकेट विश्व कप 1999 के दौरान भारतीय टीम की हौसला अफजाई के लिए जोश ऑफ इंडिया गीत में भी उन्होंने गाया। उन्होंने संगीत में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। केके का कहना था कि गायक का चेहरा दिखने के बजाय उसका सुना जाना ज्यादा जरूरी है।

0: ये गीत काफी लोकप्रिय रहा। हालांकि बॉलीवुड में पहला ब्रेक मिला फिल्म हम दिल दे चुके सनम के गाने तड़प तड़प से। उनके गीतों से युवा अपने आप को रिलेट कर पाते थे क्योंकि उनके गीतों में वो कहीं ना कहीं अपने आप को भी महसूस कर पाते थे और भावनात्मक रूप से भी जुड़ जाते थे, जैसे कि ये गाना उन्हीं के लिए गाया गया हो।
1: तड़प

1999 में उन्होंने अपना एक एल्बम लॉन्च किया पल, जिसका गीत यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है काफी लोकप्रिय रहा और स्कूल कॉलेज के लगभग हर फेयरवेल फंक्शंस का हिस्सा रहता था। इस गाने के बगैर कोई भी फेयरवेल फंक्शन अधूरा ही माना जाता था।

केके के चर्चित गानों की बात करें, शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम का गाना आंखों में तेरी काफी लोकप्रिय हुए, काइट्स का जिंदगी दो पल की, जन्नत का गाना जरा सा, गैंगस्टर का गाना तू ही मेरी शब है।

केके बचपन में डॉक्टर बनना चाहते थे। कॉलेज में दोस्तों के साथ मिलकर परफॉर्म भी करते थे और नेचर लवर भी थे। केके के कुछ अपने उसूल भी थे जिनसे वो समझौता नहीं करते थे। एक बार एक गाने को रिकॉर्ड करते वक्त उन्हें लगा कि गीत के बोल ठीक नहीं है और उनकी इस आपत्ति का सम्मान करते हुए गाने के बोल बदल दिए गए। अच्छे गायक की उनकी अपनी परिभाषा थी। केके मानते थे कि अच्छा सिंगर वही है जो किसी संगीतकार के गाने को अपना बना के गा सके।

0: संगीतकार ललित पंडित ने कृष्ण कुमार कुन्नाथ के लिए अपने हृदय के उद्गार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए।
1: के को पूरे म्यूजिक फ्रेटर्निटी बहुत प्यार करती है, बहुत ही अच्छे कलाकार होने के अलावा बहुत अच्छे दिल के इंसान थे, बहुत दोस्त थे मेरे साथ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने इंडिपेंडेंट म्यूजिक में लाइफ में कभी कभी और शोबिज मुकेश भट्ट जी की फिल्म में गाने गाए हैं, उन्होंने सारे मेरे जतिन ललित के भी गाने गाए हैं। उनकी आवाज में एक यूथ को अट्रैक्ट करने की एक क्षमता थी और गाने में जो

सुर पकड़ने की ताकत थी उनमें बहुत थी। और सबसे बड़ी बात है जो सिंगर में लोग ढूंढते हैं और जो कुदरत की तरफ से आती है, वो एक वॉइस क्वालिटी। उनकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत ही यूथफुल वॉइस क्वालिटी थी। और वॉइस क्वालिटी का ऐसा होता है कि एज से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता, वॉइस पुरानी नहीं होती आपकी, आपकी गायकी आपको मेंटेन करनी पड़ती है, और वो केके में थी।

के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से कॉन्सर्ट्स का हिस्सा बने, जिसके लिए वो खास तौर से जाने जाते थे। युवा दिलों की धड़कन बने और अपने आखिरी पलों में भी अपनी पूरी ऊर्जा के साथ वो युवाओं के साथ ही थे। 53 वर्ष की अवस्था में मंगलवार 31 मई 2022 को कोलकाता में कॉलेज के कॉन्सर्ट के बाद हम सबको हमेशा के लिए अलविदा कह गए। हम

0: श्रोताओं, आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित था पार्श्व गायक के यानी कृष्ण कुमार कुन्नाथ पर। आलेख और स्वर दिलीप का, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले की।
1: आज के फनकार।

0: दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि खूबसूरती ऊपर वाले की देन है। हर एक इंसान के नए नक्श बनाने वाले ने अपने ही तरह से बनाए हैं, जो उस इंसान के व्यक्तित्व की पहचान है। सिर्फ सुंदर तीखे नए नक्श ही असली खूबसूरती नहीं होते, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं।
1: कहां से लाई हो जान।

किसी को पहली बार देखते हैं तो आपकी दो आंखें चार होती हैं सामने वाले की दो आंखों से। आंखों के लिए एक शायर ने क्या खूब कहा है, वो चीज कहते हैं फिरदौस गुमशुदा जिसको, वो चीज कहते हैं फिरदौस गुमशुदा जिसको, कभी कभी तेरी आंखों में पाई जाती है।

आंखें आईना होती हैं दिल का। खैर, आंखों के बाद प्रभावित करती है सुरीली आवाज। आवाज में वो जादू होता है जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकता है, और यही आवाज पहचान होती है इंसान की।

जरूर ढाएगा कोई महशर, जरूर फितना बर्पा करेगा तुम्हारा अटखेलियों से चलना, झुका के गर्दन उठा के आंचल। जी हाँ, बारी है चाल की। जहां उठना बैठना बात करना लोगों के मन को लुभाता है, वहीं चलना भी एक अदा है। ऐसी मतवाली चाल जिसे देखकर कोई

खूबसूरती क्या है? देखा जाए तो हर चीज का नियमानुसार होना। किसी की आंखें छोटी होती हैं या बड़ी बड़ी होती हैं, किसी के होंठ पतले हैं या मोटे, लेकिन अदाएं, जी हाँ, अदाएं तो आपके बस में हैं, क्योंकि यही अदाएं देखकर एक शायर ने

0: अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मर क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: विविध भारती मुंबई तो हुणे तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम छाया गीत। असी आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे FM 107.2 MHz ते।

राजी गिरोह दे चार मैंबरां नूं गैर कानूनी हथियारां समेत गिरफ्तार कीता है। हरियाणा दे खेतीबाड़ी अते किसान भलाई मंत्री श्याम सिंह राणा ने यमुनानगर दी पाल धर्मशाला विच अहिल्याबाई होलकर दी 301वीं जन्म वरेगंढ मौके आयोजित प्रोग्राम विच समाज नूं अहिल्याबाई होलकर दे आदर्शां दी पालना करन दा सद्दा दित्ता। पंचकुला दे नवनियुक्त मेयर श्याम लाल बांसल ने अज अपना अहुदा संभाल लिया। मेयर ने कहा कि ओ पंचकुला नूं जोना विच वंड के शहर दीआं समस्यावां दा हल करन।

0: टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ FM 107.2 MHz ते इस वेले तुसे सुन रहे हो पंजाबी गीतां दा प्रोग्राम सुर सांझ। प्रोग्राम दी अगली पेशकश है दिलजीत दोसांझ ते हनी सिंह दियां आवाज़ां इच।

0: FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़ से सुनिए कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला हर शुक्रवार दिन में 11:15 से 12 बजे तक और हर शनिवार दिन में 11 बजे से 12 बजे तक। अपनी फरमाइश का फिल्मी गीत सुनने के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर हमें अपनी फरमाइश भेजें। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है AIR चंडीगढ़। तो FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़ से सुनना न भूलें हर शुक्रवार दिन में 11:15 से 12 बजे तक और हर शनिवार दिन में 11 बजे से 12 बजे तक म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ तो इस वेले तुसी सुन रहे हो सुरा नाल सजी शाम। प्रोग्राम दा नां है सुरसांझ। प्रोग्राम सुरसांझ दा अगला गीत पेश कर रहे हैं सुखशिंदर छिंदा दी आवाज़

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहाँ विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग